मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 26वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 16 जून सन 2026। इस समय सुबह के 5:58 मिनट 45 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: मीडियम व्यू पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 6 बजने वाले हैं। अब समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री कैनेडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। फ्रांस के एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने के विषय में रात्रि भोज का आयोजन किया। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो की वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे

0: क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों ने समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है, जबकि औपचारिक हस्ताक्षर समारोह शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होगा। समझौते के तहत होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने, समुद्री यातायात को बहाल करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित अन्य मुद्दों पर 60 दिन की वार्ता शुरू करने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक, कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए काबो वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही काबो वर्डे के गोलकीपर वोजिन्हा ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। काबो वर्डे करीब 5 लाख आबादी वाला छोटा सा द्वीपीय देश है। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। उधर दांबुला में एक दिवसीय क्रिकेट की त्रिकोणीय श्रृंखला के रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका ए ने भारत ए को सुपर ओवर में 7 रन से हरा दिया। भारत ए ने विपराज निगम और सूर्यांश शेडगे के अर्धशतकों की मदद से 265 रन बनाए। श्रीलंका ए ने भी 50 ओवर में 265 रन बनाए। सुपर ओवर में श्रीलंका ए ने 16 रन बनाए, जबकि भारत ए 9 रन ही बना सका। अब फाइनल में पहुंचने के लिए भारत ए को बुधवार को अफगानिस्तान ए पर जीत दर्ज करनी होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए विचार मंथन।

पुस्तकों का मूल्य रत्नों से भी अधिक है, क्योंकि रत्न बाहरी चमक दमक दिखाते हैं, जबकि पुस्तकें अंतःकरण को उज्ज्वल करती हैं। महात्मा गांधी। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। पहले सुनिए समूह स्वर में ये देशभक्ति रचना।

0: लखवीर सिंह लखा के गए इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब समाप्त होता है। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है, प्रस्तुत है चिंतन गृह सुख। आलेख डॉक्टर HP स्थापक का है, वाचक है दिनेश नामदेव।
1: नीति निपुण आचार्य विष्णु शर्मा माँ नर्मदा के तट पर आश्रम में शिक्षा दीक्षा पूर्ण होने के उपरांत अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। जीवन जीने की कला पर सार गर्भित व्याख्यान समाप्त हुआ। उसी समय एक जिज्ञासु शिष्य ने आश्रम से विदाई की बेला में पूछा, आचार्य स्वर्ग का सरल मार्ग कौन सा है? आचार्य जी ने कहा, घर परिवार में सुख शांति और आनंद से प्रारंभ होकर सत्संग और सत्कर्म करने से स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त होता है। कर्म, उपासना और ज्ञान, इन तीनों को जीवन में ढालने से ही जीवन जीने की कला भी आ जाती है। घर में सच्चे सुख के लिए व्यक्तियों को काम, क्रोध, लोभ, मोह और माया का परित्याग करना चाहिए। मन की पवित्रता के साथ आचरण की पवित्रता का होना नितांत आवश्यक है। चरित्र ही भगवान है। संसार में विजय प्राप्त करने के लिए मानस के धर्म रथ की आवश्यकता है। संयम नियम की डोर से बंधने की जरूरत है। जिस प्रकार गाड़ियों के लिए ब्रेक, घोड़े के लिए लगाम, हाथी के लिए अंकुश तथा ऊंट को नकेल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार घर के सदस्यों को भी गीता धर्म के 10 लक्षणों से युक्त होने की महती आवश्यकता होती है। शांति और संतोष यदि स्वभाव में आ जाए तो फिर व्यक्ति को कुछ भी नहीं चाहिए। कहा गया है, गोधन गजधन बाजीधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। ये सत्य है कि एकता घर को सुघड़ बनाने का मूल मंत्र है। सदस्यों को स्वावलंबन की शिक्षा घर परिवार से ही मिलती है। प्रेम, करुणा, त्याग, दया, परोपकार और ईमानदारी इत्यादि गुणों का प्रस्फुटन बालकों में बचपन से ही होता है। नैतिक चरित्र के उत्थान में घर परिवार की अहम भूमिका रहती है। आदर्शवादिता, नैतिकता और संयुक्त परिवार से ही भारत की समूचे विश्व में पहचान थी। जनसंख्या विस्फोट के फलस्वरूप सुघड़ परिवारों का विघटन हुआ। अलगाववादी प्रवृत्ति से मनः स्थिति बिगड़ने लगी। नैतिक मूल्यों का ह्रास होने लगा। बड़ों के प्रति आदर भाव में कमी और माता पिता की सेवा शुश्रूषा में हिचक होने लगी। घर परिवार की सुख शांति मानसिक कुंठा में विलीन होने लगी। यदि हम समय रहते नहीं संभले तो हमारे घर परिवार की सुख शांति सदैव के लिए तिरोहित हो जाएगी। इसलिए सुख शांति लौटाने के लिए शुद्धाचरण और नैतिक चरित्र उत्थान की आवश्यकता है। हमारी सनातन संस्कृति और सुसंस्कार हमारे जीवन की आधारशिला है। यदि परिवार के सदस्यों को जीवन मूल्यों से संबंधित सकारात्मक वातावरण दिया जाए तो खोई हुई पुनीत गुणों की विरासत को पाया जा सकता है और नए सृजन का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। आपाधापी के इस युग में हमारा परिवार एकमात्र प्राकृतिक संगठन है जिसमें प्रेम, दया, करुणा, त्याग, सेवा, परोपकार, सहयोग, समन्वय, संभाव और सम्मान जैसे आत्मीय भावों से पोषित गुणों का विकास होता है। ये गुण ही परिवार से विकसित होकर राष्ट्र ही नहीं विश्व धरातल पर वसुधैव कुटुंबकम की भावना जागृत करते हैं। परिवार यदि सुघड़ है तो माता पिता, गुरु और बंधु बांधवों के प्रति गहरे प्रेम का बीजारोपण होता है, जो मनुष्य के 3 ऋण अर्थात पितृऋण, गुरु ऋण और मातृभूमि के ऋणों से मुक्त हो जाता है। ये जीवन की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। सार ये है कि जिस घर परिवार में सुख शांति का जीवन हो, सौहार्दपूर्ण वातावरण और सदाचरण का साम्राज्य हो, उसे ही स्वर्ग की संज्ञा से अभिहित किया जाता है।
0: अभी आप सुन रहे थे चिंतन गृह सुख। आलेख डॉक्टर HP स्थापक का था, वाचक थे दिनेश नामदेव। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस का गायन, स्वर वाणी जयराम और ए हरिहरन का है।

माता कैकेयी की कठोरता तथा कुटिलता की भर्त्सना करके भी भरत के हृदय में सुलगती आग शांत नहीं हुई। उधर क्रोधाग्नि में जलते शत्रुघ्न के सामने मंथरा जो आई तो उन्होंने एक लात जमाकर उसकी कुबड़ फोड़ डाली और झूठी पकड़कर उसे घसीटने लगे थे कि स्वभाव से दयालु भरत ने छुड़ाकर उसके प्राणों की रक्षा की। भरत और शत्रुघ्न माता कौशल्या

के समक्ष उपस्थित हैं। दिवंगत पिता तथा वनवासी राम लक्ष्मण और सीता को देखने के लिए बिलखते भरत को माता कौशल्या धीर गंभीर भाव से सांत्वना दे रही हैं। पिता के वचन की रक्षा के लिए राम ने राजसी वस्त्राभूषण त्याग कर वलकल धारण किया। ऐसा करते उन्हें न तो विषाद हुआ और न ही हर्ष। मन में न आसक्ति थी न क्रोध। सबके संतोष के लिए जब वे वन को चले तो सीता भी उनके पीछे चल पड़ी। अग्रज के वन गमन का समाचार सुनकर लक्ष्मण भी अयोध्या में नहीं रुके।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का गायन, स्वरवाणी जयराम और ए हरि हरन के थे। मीडियम में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है, प्रस्तुत है किसान भाइयों के लिए कृषि सामयिकी। इसमें आज सुनिए जैविक उपचार के बारे में जानकारी।
1: किसान भैयारो, राइजोक्टोनिया, फ्यूजेरियम, पीथियम, फाइटोपथोरा, स्क्लेरोसियम, मैक्रोफोनिया के द्वारा होवे वाली विभिन्न बीमारियों जैसे जड़ सड़न, आद्र गलन, उकटा, बीज सड़न, अंगमारी को नियंत्रित करवे में पर्यावरण अनुकूलित पद्धति है, जिमें परजीवी कवकों जैसे ट्राइकोडर्मा बिरडी, ट्राइकोडर्मा हार्जिनियम, ट्राइकोडर्मा वायरेंस और जीवाणुओं जैसे

स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस बेसिलस सप्ट्रिलिस आरुजिनोसा को उपयोग बीज के उपचार पौधशाला में करखों रोगों को नियंत्रण अपन कर सकत हैं। रोग नियंत्रण के संगे संगे इन जैविक नियंत्रकों को पौधों

0: नियंत्रक जैसे ट्राइकोडर्मा, जमीन और बीज में पनपने वाले रोग कारक कपकों जैसे पीथियम, राइजोक्टोनिया, फ्यूजेरियम स्क्लेरोसियम के पेशी तंतुओं में प्रवेश करके उनको मार देते हैं, जिसे कवक परजीविता कहाउत है। और तृतीय वर्ग में जैव नियंत्रक द्वारा विशेष प्रकार के एंजाइम्स को स्राव करो जाते हैं, जिसे रोग कारक पे विपरीत असर पड़ता है। जे सभी प्रकार की जमीन में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जिनमें कार्बनिक पदार्थ जैसे के सड़ी भई छाल, पत्ते और वनस्पति पाए जाते हैं। कार्बनिक पदार्थ जैसे सड़ी भई गोबर की खाद, नीम, सरसों, अलसी, मूंगफली की खली के संगे उपयोग करे जावे वाले बेहतर परिणाम अपन सभी किसानों के देखवे में मिलत हैं। राइजोबियम और माइकोराइजा की तरह जे सोई अधिकांश फसलों में सहजीवी संबंध रखत हैं, जे पौधों के विकास को गति प्रदान करत हैं और मिट्टी में पाए जावे वाले फास्फोरस को द्रवित करखो पौधों को प्रदान करत हैं। जैव नियंत्रकों को उपयोग में लावे के कछु और भी उपाय हैं भैया, जैसे के अधिकांश रोगजनक बीज के संगे या फिर उके भीतर पाए जाते हैं और इनकी रोकथाम के लाने बीज को उपचारित करवो बड़ो जरूरी मानो जाते हैं। इके लाने ट्राइकोडर्मा बिर्डी या ट्राइकोडर्मा हार्जिनियम या स्यूडोमोनास की 4 से 8 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। अदरक, केला, अरबी जिनकी गांठों और कंद को उपयोग बीज के रूप में करो जात है, उखो उपचारित करके या करवे केला ने 1 किलोग्राम जैव नियंत्रण खो 100 लीटर पानी में घोल बना खो, इनकी 100 किलोग्राम मात्रा खो 30 मिनट तक डुबोए रखें, उके बाद में छायरे में सुखा खो बुआई अपन कर सकत हैं। पौधशाला में उगाए गए पौधों को खेत में लगावे के पहले उनकी जड़ों को जैव नियंत्रक जैसे के ट्राइकोडर्मा या स्यूडोमोनास के घोल में जैसे के 100 ग्राम जैव नियंत्रक को 10 लीटर पानी में थोड़ी देर के लाने डुबो खे रखवे के बाद में फिर अपन खेत में लगा देवे तो उम्दा मानो जात है। भूमि उपचार के लाने पौधशाला में 400 वर्ग मीटर जमीन के लाने 250 ग्राम जैव नियंत्रक खो 20 किलोग्राम अच्छी सड़ी भई खाद में मिश्रण बना खो डाल दो चाहिए। इस प्रकार से खेत में पौधे लगावे या बुआई के पहले 1 किलोग्राम जैव नियंत्रक को 100 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद में मिला खो जमीन में अपन उपयोग कर सकते हैं, तो जे अपने लाने बहुत फायदे की चीज मानी जात है।
1: किसान भाई कृषि सामयिकी में सुन रहे थे जैविक उपचार के बारे में जानकारी। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर। इसमें सुनिएगा काव्य रस के तहत श्री अनिल कुमार मिश्र का कविता पाठ। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा 8:30 पर। लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रसधार होगा 9:00। कलाकार होंगे शहजाद सिंह ठाकुर और डॉक्टर सिया शरण ज्योतिषी। शास्त्रीय संगीत 9:30 पर। वंदे मातरम गौरवगान की 150वीं ये कार्यक्रम सुनिएगा 10:05 पर। फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सारंगा 10:20 पर।

ग्यारह बजे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का कार्यक्रम, एक बजे महिला कार्यक्रम, 1:30 पर लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम और 2 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत। हमारी दूसरी सभा शाम 5 बजे आरंभ होगी न्यूज हेडलाइंस से। 5:02 पर सुनिएगा यशोताओं का कार्यक्रम युवाणी, फिल्म संगीत 5:33 पर, एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुनिएगा

शाम 6 बजे। लोक संगीत 6:30 पर, कलाकार होंगे दीपचंद खातरकर। 6:45 पर सुगम संगीत में सुनिएगा प्रकाश तिवारी के गाए गीत। कृषि जगत किसान भाइयों का ये कार्यक्रम होगा शाम 7:21 पर। इसमें आज सुनिएगा डॉक्टर श्रृंखला मिश्रा से ली गई भेंटवार्ता, जल और मिट्टी संरक्षण। रात 8 बजे सुर्खियों में आकाशवाणी भोपाल से हम रिले करेंगे, आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत रात 8:35 पर। स्पॉटलाइट रात 9:15 पर दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। हमारा फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने रात 9:30 पर, प्रस्तुति रविंद्र दुबे की होगी। शास्त्रीय संगीत रात 10 बजे। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भवन सुनिएगा रात 10:30 पर।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। मीडियम वेव 374.5 मीटर यानी 800 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 6:55 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से संस्कृत में समाचार, 7:00 हिंदी में, 7:05 पर अंग्रेजी समाचार और 7:10 पर हम आपको सुनवाएंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। भारत स्लोवाकिया देशयोः सम्बन्धः समग्र सहभागित्वेन संवर्धितः अस्ति। ब्रातिस्लावा नगरे प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना तस्य स्लोवाकिया समकक्षीयेण रॉबर्ट फिको इत्यनेन सह वार्तालापस्यानन्तरं श्रम प्रवास डिजिटल तंत्रज्ञान रक्षादिषु प्रमुखेषु क्षेत्रेषु सहकारं वर्धयितुं उभौ पक्षौ समग्र एकादश सन्धिपत्रेषु हस्ताक्षरितवन्तौ। पश्चात् संयुक्तवार्ताहरसम्मेलनं सम्बोधयन् श्रीमोदी अवदत् यत् सम्बन्धानाम् उन्नतिः सह विश्वासानां प्राथमिकतानां भविष्यस्य च प्रतीकः अस्ति। कस्यापि भारतीयप्रधानमन्त्रिणः यूरोपीयराष्ट्रस्य प्रथमायां यात्रायां श्रीमोदी अवदत् यत् उभौ देशौ रक्षाक्षेत्रे सन्धिपत्रे हस्ताक्षरं कृतवन्तौ।
1: एआई का भविष्य केवल इनोवेशन से नहीं बल्कि ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमन डिग्निटी पर आधारित होना चाहिए। रक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास और स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
0: स्लोवाकिया देशस्य राष्ट्रपतिना पीटर पेलेग्रेनी इत्यनेन स्लोवाकिया देशस्य सर्वोच्चं प्रशासकीय सम्मानं द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास इति प्रधानमन्त्रिणं श्रीमोदिनं प्रदत्तम्। श्रीमोदी स्लोवाकिया देशस्य राष्ट्रपत्ये सर्वकाराय नागरिकेभ्यश्च विशिष्ट सम्मानाय कृतज्ञतां प्रकटितवान्। द्वयोः राष्ट्रयोः यात्रायाः तृतीये चरणे G7 शिखरसम्मेलने भागग्रहणाय प्रधानमन्त्री श्रीमोदी अद्य फ्रांसदेशस्य एवियन् नगरं सम्प्राप्ष्यति। तस्य आगमनावधौ फ्रांसदेशस्य राष्ट्रपतिना इमैनुअल मैक्रों

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एविया पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने के विषय पर रात्रि भोज का आयोजन किया। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रभाव को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो की वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल

क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग चार महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों ने समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है, जबकि औपचारिक हस्ताक्षर समारोह शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होगा। समझौते के तहत होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने, समुद्री यातायात बहाल करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित अन्य मुद्दों पर 60 दिन की वार्ता शुरू करने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। केंद्र ने नीट यूजी पुनः परीक्षा के लिए सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है। उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने नीट यूजी पुनः परीक्षा के लिए विद्यार्थियों की सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता के संबंध में राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की। गृह सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विद्यार्थियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने की अपील की। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। फीफा विश्व कप में काबो वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही काबो वर्डे के गोलकीपर वोजेहना ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। काबो कार्डो करीब 5 लाख आबादी वाला छोटा सा द्वीपीय देश है। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। दाम्बुला में एक दिवसीय क्रिकेट की त्रिकोणीय श्रृंखला के रोमांचक मैच में श्रीलंका ए ने भारत ए को सुपर ओवर में 7 रन से हरा दिया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए फ्रांस पहुंचेंगे। केंद्रीय गृह सचिव ने नीट UG पुनः परीक्षा से पहले सुरक्षा और तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने संस्कृति विभाग से सभी समाजों की परंपराओं से जुड़े कार्यक्रम करने के दिए निर्देश। और प्रदेश में प्री मानसून सक्रिय, आज ग्वालियर भोपाल समेत 30 जिलों में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। इस पुरस्कार को श्री मोदी ने गर्मजोशी, विश्वास और भारत तथा स्लोवाकिया के लोगों को एकजुट करने वाले प्रेम का प्रमाण बताया। इससे पहले उन्होंने भारत स्लोवाकिया संबंधों को लेकर संबोधित करते हुए कहा कि
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों के दौरे के तीसरे चरण में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो प्रधानमंत्री का औपचारिक स्वागत करेंगे। इसके बाद श्री मोदी शिखर सम्मेलन के कार्यकारी सत्र में भाग लेंगे, जिसका विषय है नई साझेदारी बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनर्निर्माण करना। इस सत्र में G7 देशों के नेताओं से

0: देशों के प्रमुखों और विश्व बैंक तथा अफ्रीकी विकास बैंक के प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। बैठक के दौरान श्री मोदी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इसके बाद में वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस के एवियन शहर का दौरा भी करेंगे। उल्लेखनीय है कि भारत G7 शिखर सम्मेलन में 13वीं बार हिस्सा ले रहा है और प्रधानमंत्री मोदी लगातार 7वीं बार इसमें शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने नीट UG पुनर्परीक्षा से पहले सुरक्षा और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा को लेकर उन्होंने विद्यार्थियों की सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता पर विशेष ध्यान देते हुए इस परीक्षा के लिए राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की। गृह सचिव ने सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए हैं। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम कल घोषित कर दिए हैं। आयोग ने बताया कि 1000 से अधिक रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए चयन किया गया है। उम्मीदवार UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in से प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग ने कहा कि पिछले वर्ष 1087 रिक्तियां थीं और मुख्य परीक्षा के लिए 14000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन किया गया था। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल मंत्रालय में हुई बैठक में संस्कृत विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं और गतिविधियों की समीक्षा की। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 6-7 माह में बड़े त्यौहार, सांस्कृतिक पर्व एवं मेले मनाए जाएंगे। ये सभी त्यौहार हमारी धार्मिक आस्थाओं और प्रकृति के प्रति हमारी कृतज्ञता का प्रतीक हैं। इन सभी अवसरों पर संस्कृति विभाग सभी समाजों को उनकी आस्थाओं और सांस्कृतिक परंपराओं को जोड़कर वृहद आयोजन करे। प्रदेश में वर्ष 2025-26 की कक्षा 5वीं और 8वीं की पुनः परीक्षा आज से शुरू हो रही है। ये 23 जून तक चलेगी। इस परीक्षा में सत्र 2025-26 की मुख्य परीक्षा में अनुत्तीर्ण एवं अनुपस्थित विद्यार्थी शामिल हो सकेंगे। परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा प्रदेश भर में कुल 2795 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। ये परीक्षा सुबह 10 बजे से शुरू होगी। कक्षा 5वीं की पुनः परीक्षा में लगभग 1,17,000 से अधिक और कक्षा 8वीं के लगभग 1,32,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। प्रदेश को एग्रो सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में कल नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम और जर्मन सरकार समर्थित इंडो जर्मन एग्री वोल्टाइक सहयोग परियोजना के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर आदान प्रदान किया गया। इसमें बताया गया कि एग्री वोल्टाइक कृषि एवं सौर ऊर्जा के संयुक्त उपयोग को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया एक संगठन है, जिसका उद्देश्य कृषि भूमि पर खेती के साथ साथ उसी खेत में ही सौर ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करना है, ताकि अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता कम हो, खाद्य सुरक्षा बनी रहे तथा भूमि संबंधी विवादों से भी बचा जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के शीर्षक से एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
2: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2,00,000 करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: छत्तीसगढ़ में आयोजित 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एवं सब जूनियर कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 12 से 14 जून तक आयोजित इस प्रतियोगिता में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए प्रदेश के खिलाड़ियों ने 25 स्वर्ण, 11 रजत और 3 कांस्य पदक के साथ कुल 39 पदक अर्जित किए। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के बेटों और बेटियों ने सभी 4 वर्गों में चैंपियनशिप जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में मानसून इस हफ्ते दस्तक दे सकता है। उससे पहले राज्य के बड़े हिस्से में प्री मानसून की गतिविधियां सक्रिय हैं। मौसम विभाग ने आज के लिए भोपाल, ग्वालियर समेत करीब 30 जिलों में गरज चमक के साथ आंधी और बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ कन्या क्रीड़ा परिसर में बड़ी प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके तहत छात्राओं का चयन 22 जून से 26 जून तक किया जाएगा। नर्मदापुरम के पचमढ़ी वायसन लॉज में आज उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग तथा जिला प्रशासन के द्वारा आम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा पन्ना के पवई विधानसभा क्षेत्र में लाभार्थी संपर्क कार्यक्रम में संवाद करेंगे। मंडला में आज समान नागरिक संहिता के उच्च स्तरीय समिति सदस्य बुधपाल सिंह आरडी कॉलेज में आयोजित जन परामर्श समिति बैठक में शामिल होंगे। डिंडौरी में उत्कृष्ट विद्यालय मैदान करंजिया में जन कल्याणकारी शिविर का आयोजन किया गया। सतना में पल्स पोलियो अभियान के लिए कुल 1809 टीकाकरण बूथ, 7 ट्रांजिट बूथ और 26 मोबाइल टीमें बनाई गई हैं। और आगरमालवा जिले के कानड़ स्थित प्राचीन हनुमान बावड़ी पर बावड़ी उत्सव और संगोष्ठी का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचेंगे फ्रांस। केंद्रीय गृह सचिव ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले सुरक्षा और तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संस्कृति विभाग से सभी समाजों की परंपराओं से जुड़े कार्यक्रम करने का किया आह्वान। और प्रदेश में प्री मानसून सक्रिय, आज ग्वालियर और भोपाल समेत 30 जिलों में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: मीडिया में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 7:21 हुए हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर।

श्रोताओ, स्वागत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर में। आज है 16 जून। आज हम बात करते हैं एक ऐसे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में साथ देने वाले देशबंधु चित्तरंजन दास की। आज उनकी पुण्यतिथि है। चित्तरंजन दास जी, जिनका जन्म 5 नवंबर 1870 को कलकत्ता में हुआ था, एक भारतीय राजनीतिज्ञ और राजनीतिक आंदोलन के नेता थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य, वकील और कवि थे। वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अभिन्न अंग थे और इसके संस्थापक थे। ब्रिटिश शासन के अधीन बंगाल में स्वराज पार्टी स्वशासन, भारत की जनता ने उन्हें देश बंधु की उपाधि से सम्मानित किया, यानी देश का मित्र। चित्तरंजन दास का जन्म बांग्लादेश के वर्तमान शहर विक्रमपुर के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उनके पिता भुवन मोहनदास कलकत्ता उच्च न्यायालय में वकील थे और माता निस्तारणी देवी थी। उनके चाचा दुर्गा मोहनदास एक समाज सुधारक थे, जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों और मुक्ति के लिए प्रबल वकालत की। भुवन मोहन और दुर्गा मोहनदास दोनों ही हिंदू धर्म के ब्रह्म समाज संप्रदाय से जुड़े थे, जिसके सदस्य चित्तरंजन दास भी बने। उनके चाचा और पिता दोनों की प्रगतिशील सोच और सामाजिक सक्रियता ने दास को प्रभावित किया। उन्होंने कलकत्ता में लंदन मिशनरी सोसाइटी के संस्थान में अध्ययन किया। 1890 में कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से स्नातक होने के बाद भारतीय सिविल सेवा परीक्षा देने के लिए इंग्लैंड गए, लेकिन उत्तीर्ण न होने पर उन्होंने वकालत का पेशा चुना। उन्होंने राजनीतिक अपराधों के आरोपी कई भारतीयों का बचाव किया और राष्ट्रवादी पत्रकारिता में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने लंदन के ऑनरेबल सोसाइटी ऑफ द इनर टेम्पल में वकील के रूप में अपना कैरियर शुरू किया। जब दास यूनाइटेड किंगडम में थे, तब भारतीय राष्ट्रवादी नेता दादाभाई नेहरूजी हाउस ऑफ कॉमन्स में सीट के लिए चुनाव लड़ रहे थे। चित्तरंजन दास, जो पहले ही राजनीतिक रूप से सक्रिय थे और भारत से संबंधित मुद्दों पर मुखर थे, उन्होंने नेहरूजी के अभियान में भाग लिया। कुछ वर्षों बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय में बैरिस्टर के रूप में भारत लौट आए। 1908 में अलीपुर बम कांड में भारतीय क्रांतिकारी और दार्शनिक अरविंद घोष का बचाव करने के बाद वे प्रसिद्ध हुए। ये मामला मुजफ्फरपुर, जो वर्तमान में बिहार में एक राज्य, बिहार राज्य में है मुजफ्फरपुर, उसमें हुए बम विस्फोट की पुलिस जांच के परिणाम स्वरूप सामने आया, जो ब्रिटिश अधिकारी डगलस किंग्सफोर्ड की हत्या का एक असफल प्रयास था। दास के प्रयासों से घोष को बरी करने में मदद मिली, जिस मामले में मुख्य आरोपियों में से एक थे, और उन पर क्रांतिकारियों के एक समूह के सह साजिशकर्ता होने का आरोप था। दास ने कई अन्य क्रांतिकारियों का भी बचाव किया, जिन पर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ राजनीतिक अपराधों और राजद्रोह का आरोप लगाया गया था। उनके उल्लेखनीय मामलों में एक ढाका षड्यंत्र मामला था, जो बमों और तलवारों की बरामदी के बाद सामने आया था, जिसके बारे में ब्रिटिश सरकार का मानना था कि वे किसी क्रांतिकारी षड्यंत्र के लिए थे। भारत में ब्रिटिश शासन का कड़ा विरोध करते हुए पश्चिमी तर्ज पर भारत के राजनीतिक या आर्थिक विकास के सभी विचारों को खारिज करते हुए उन्होंने प्राचीन भारतीय गांव के जीवन को आदर्श माना और प्राचीन भारतीय इतिहास में एक स्वर्ण युग देखा। दास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और महात्मा गांधी द्वारा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध शुरू किए गए असहयोग आंदोलन का हिस्सा बने। दास इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे, विशेष रूप से बंगाल में, और 1921 में उन्हें 6 महीने तक राजनीतिक कैदी के रूप में रखा गया। चित्तरंजन दास ब्रिटिश शासन के प्रबल आलोचक और एक कट्टर राष्ट्रवादी थे, जो भारतीयों को सशक्त बनाने में विश्वास रखते थे।
उन्होंने भारतीयों को ब्रिटिश वस्त्रों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उदाहरण के तौर पर अपने विदेशी वस्त्रों को जला दिया।

1922 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने। उसी वर्ष चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना ने न केवल असहयोग आंदोलन को झटका दिया बल्कि गांधी जी को अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने के लिए भी मजबूर कर दिया। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के सदस्यों में मतभेद पैदा हो गए जो दो गुटों में बट गए, परिवर्तन विरोधी और परिवर्तन समर्थक। परिवर्तन समर्थकों का मानना था कि उन्हें प्रांतीय परिषद के चुनाव लड़ने चाहिए और व्यवस्था के भीतर से ही सरकार में परिवर्तन लाने में मदद करनी चाहिए। परिवर्तन विरोधी चुनाव का बहिष्कार करना चाहते थे। इस मतभेद के कारण परिवर्तन समर्थक दास ने कांग्रेस पार्टी से अलग होकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रसिद्ध नेता मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। दास और नेहरू के साथ जुड़ने वाले अन्य कांग्रेस पार्टी सदस्यों में हकीम अजमल खान, बिठल भाई पटेल, नरसिम्हा चिंतामन केलकर, मुकुंद रामराव जयकर शामिल थे। लेकिन स्वराजवादियों और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने महसूस किया कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना आवश्यक है और वे अक्सर मिलकर रणनीति बनाते थे। दास के मार्गदर्शन में कांग्रेस पार्टी ने प्रांतीय परिषद के लिए औपनिवेशिक शासन द्वारा प्रायोजित चुनावों का बहिष्कार करने का अपना इरादा छोड़ दिया। इसके बजाय उसने ऐसे पदों की तलाश में चुनावों में भाग लेने का निर्णय किया जिससे स्वराज पार्टी और कांग्रेस पार्टी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को सरकारी कामकाज में आंतरिक रूप से बाधा डालने की अनुमति मिल सके। 1923 में स्वराज पार्टी के सदस्यों ने नई केंद्रीय विधानसभा में 40 से अधिक सीटें जीती। बंगाल के प्रांतीय परिषद चुनावों में स्वराजवादी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे थे और राज्यपाल ने दास से सरकार बनाने और मुख्यमंत्री बनने का अनुरोध किया, लेकिन दास ने ये कहते हुए पद को अस्वीकार कर दिया कि उनका उद्देश्य मौजूदा सरकार को गिराना था, ना कि उनके साथ सहयोग करना, और स्वराज पार्टी ने विपक्ष की भूमिका निभाई। 1923 के एक अधिनियम के बाद जिसने शहर की सरकार में सुधार किया और शहर की उपेक्षित भारतीय आबादी की स्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया। दास 1924 में कलकत्ता के पहले महापौर बने। चितरंजन दास कहते थे, मैं स्वराज आम जनता के लिए चाहता हूं, ना कि किसी विशेष वर्ग के लिए। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें शत शत नमन करते हुए याद कर रहे हैं।

0: लो, अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: श्रोताओ, अब सुनिए काव्य रस के तहत श्री अनिल कुमार मिश्र का ये कविता पाठ।
2: मेरी पहली रचना है ये। कहो क्या गांव चलोगे, कब से रहा पुकार, कहो क्या गांव चलोगे, कब से रहा पुकार, कहो क्या गांव चलोगे, मिले पुरनिया यार, कहो क्या गांव चलोगे, कब से रहा पुकार, कहो क्या गांव चलोगे। हरे भरे से खेत लहरते, कोयल का गा तोता उड़ते, बड़े भोर से गाय रंभाए, जैसे लगे प्रभाती गाए, जा देखें कूप तड़ागों वाला प्यारा सा, ओ अनुपम संसार, कहो क्या गांव चलोगे, कहो क्या गांव चलोगे, मिले पुरनिया यार, कहो क्या गांव चलोगे। चलते फिरते खेते मेड़े, काट चिकोटी सखियां छेड़े, सहज सरल अल्लड़ता फिरती, सूरत पर मुस्कान विचरती, आंखिन का जल पायल पग में, अधरों पर है नथुनी पहरेदार, कहो क्या गांव चलोगे, कहो क्या गांव चलोगे। और दृश्य है, पनगढ़ तीरे सांसकारे, करते रहते आरे जारे, बूढ़ा बटखुन था में पाले, अंडे बच्चे रखे सुआ के, सुनकर ची ची बार बार जा झांका उनको, दुलराया हर बार, कहो क्या गांव चलोगे, कहो क्या गांव चलोगे। एक दृश्य और है, धूम्र रेख आकाश धारे, माई बैठी चूल्हा बारे, ढगी पुती रहती है परची, अरवा राखे चूना सुरती, विषय कोई भी रहे बहस में, लड़कों से ना काका माने हार, कहो क्या गांव चलोगे, कहो क्या गांव चलोगे, मिले पुरनिया यार, कहो क्या गांव चलोगे। और अंतिम दृश्य है ये गांव का, और गांव के त्यौहार की बात ना होते गीत कुछ अधूरा सा लगेगा, सुनिएगा अंतिम बद। रक्षा बंधन दीप दशहरा, चगन मगन घर भरा भरा, भरी रसोई पकवानों से, हंसी ठिठोली मेहमानों से, होते रंग से सराबोर, अलबेले रिश्ते साली जी जा सार, कहो क्या गांव चलोगे, कहो क्या गांव चलोगे, मिले पुरनिया यार, कहो क्या गांव चलोगे। अगली कविता आप लोग समक्ष हिंदी को लेकर है। प्रवाहित हो रही उर्मे सतत जलधार हिंदी है, प्रवाहित हो रही उर्मे सतत जलधार हिंदी है, सदा ही मोहती सबको वही उद्गार हिंदी है, सदा है मोहती सबको वही उद्गार हिंदी है। इसी की गोद में तुलसी, इसी की गोद में तुलसी, कबीरा जाय सी खेले, गले से ये लगा सबको लुटाती प्यार हिंदी है, गले से ये लगा सबको लुटाती प्यार हिंदी है। सवैया सवैया लाश करता है मगन हर गीत का देखे, सवैया लाश करता है मगन हर गीत का देखे, अचंभित कर रहा दोहा बनी आधार हिंदी है, प्रवाहित हो रही उर्मे सतत जलधार हिंदी है। दिशाएं खिलखिलाती हैं, दिशाएं खिलखिलाती हैं, मनाकर पर्व ये मन का, कहीं भंगड़ा कहीं गरबा कहीं झंकार हिंदी है, प्रवाहित हो रही उर्मे सदा जलधार हिंदी है। और अंतिम पद है इसका, तुम्हारे पास जो दे दो, तुम्हारे पास जो दे दो, हमारे पास जो ले लो, तुम्हारे पास जो दे दो, हमारे पास जो ले लो, खुले हाथों से देने का करे व्यवहार हिंदी है, प्रवाहित हो रही उर्मे सतत जलधार हिंदी है, प्रवाहित हो रही उर्मे सतत जलधार हिंदी है। हास्य भी अपने हिंदी साहित्य का एक प्रमुख रस है। एक हास्य की रचना मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। बेमतलब में टांग अड़ाना अच्छी बात नहीं, बेमतलब में टांग अड़ाना अच्छी बात नहीं, इधर उधर जा गाल बजाना अच्छी बात नहीं, इधर उधर जा गाल बजाना अच्छी बात नहीं। कुछ करने

0: करतूत दिखाते सबको अच्छा लगता, कुछ करनी करतूत दिखाते सबको अच्छा लगता, खाली पीली नुक्स बताना अच्छी बात नहीं, बेमतलब में टांग अड़ाना अच्छी बात नहीं। बहुत मतलबी जीव रहे हो इतना मत गिर जाओ, बहुत मतलबी जीव रहे हो इतना मत गिर जाओ, यार बाप को चून लगाना अच्छी बात नहीं, यार बाप को चून लगाना अच्छी बात नहीं। हिम्मत थी तो ना कर देते लड्डू ही मत खाते, हिम्मत थी तो ना कर देते लड्डू ही मत खाते, शादी करके अब पछताना अच्छी बात नहीं, शादी करके अब पछताना अच्छी बात नहीं। और इस रचना के ये अंतिम पायदान पर, अपने घर पर चाय न पूछी, अपने घर पर चाय न पूछी जाकर दूजे घर में, अपने घर पर चाय न पूछी जाकर दूजे घर में, देख जलेबी लार चुआना अच्छी बात नहीं, बेमतलब में टांग अड़ाना अच्छी बात नहीं, इधर उधर जा गाल बजाना अच्छी बात नहीं। एक रचना आप लोगों के समक्ष एक और प्रस्तुत है। मन में कितने खर दूषण हैं रोज पला करते, मन में कितने खर दूषण हैं रोज पला करते, कब घटते चाहे सौ रावण रोज जला करते, कब घटते चाहे सौ रावण रोज जला करते। परहित का पर्दा है सम्मुख पीछे विध्वंसी, परहित का पर्दा है सम्मुख पीछे विध्वंसी, विश्व मंच से चीख रहे हम रोज भला करते, मन में कितने खर दूषण हैं रोज पला करते। जीवन की आपाधापी में नकली मुस्काना, जीवन की आपाधापी में नकली मुस्काना, रंग स्वार्थ का आनंद पर सब रोज मला करते, मन में कितने खर दूषण हैं रोज पला करते। खड़यंत्रों के रंग महल में तम विलास करता, खड़यंत्रों के रंग महल में तम विलास करता, सच के सारे दीप प्रज्वलित रोज खला करते, सच के सारे दीप प्रज्वलित रोज खला करते। और ये अंतिम बंद है। मस्ती करती और मचलती नदियाँ क्या जाने, मस्ती करती और मचलती नदियाँ क्या जाने, हिम के पर्वत पल पल कितना रोज गला करते, हिम के पर्वत पल पल कितना रोज गला करते, मन में कितने खर दूषण हैं रोज पला करते, कब घटते चाहे सौ रावण रोज जला करते। और अब मैं अंतिम रचना आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूँगा, ये भी गांव पर है। मुझको मेरा गांव दुलारा चिरई चुग्गा तक को प्यारा, मुझको मेरा गांव दुलारा चिरई चुग्गा तक को प्यारा, बतिया ना हो खेतों से जब खुद को मेड़ों तक ले जाता, छू छू कर लहराती बाली क्या बतलाऊं क्या मन भाता। मुक्ता कणसी बूंद तुहिन की, मुक्ता कणसी बूंद तुहिन की, चमके ज्यों आँखों में त्यारा, मुझको मेरा गांव दुलारा चिरई चुग्गा तक को प्यारा। बहे नहीं वो हवा शहर में, बहे नहीं वो हवा शहर में जिसमें हो अपनों की खुशबू, बहे नहीं वो हवा शहर में जिसमें हो अपनों की खुशबू, यहाँ गांव में कह लेते हैं काकी खाना देगी कब तू, यहाँ गांव में कह लेते हैं काकी खाना देगी कब तू, रीति रिवाजों की अमराई महका जाती पुरवा सारा, मुझको मेरा गांव दुलारा, मुझको मेरा गांव दुलारा। और इस गीत का ये अंतिम बंद है। चना चबेना करते करते, चना चबेना करते करते चर्चा वेद पुराणों पर भी, चना चबेना करते करते चर्चा वेद पुराणों पर भी, बड़े पुरनिया नेह लुटाते औरों के मेहमानों पर भी, पीपल नीचे बैठक सजती, पीपल नीचे बैठक सजती, बतरस संग चौपड़ पौबारा, मुझको मेरा गांव दुलारा, मुझको मेरा गांव दुलारा, चिरई चुग्गा तक को प्यारा, मुझको मेरा गांव दुलारा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
1: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे काव्य रस में श्री अनिल कुमार मिश्र का कविता पाठ।

मीडियम व्यापार आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 8 बजने वाले हैं। समाचार प्रभात हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे हैं।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन LNG के साथ हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्दे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। और अब समाचार विस्तार से। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्लोवाकिया यात्रा संपन्न हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी की स्लोवाकिया यात्रा कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
3: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
2: फ्रांस के एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने अपनी नवीनतम समीक्षा में डीजल और विमान ईंधन ATF के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क SAED में वृद्धि की है। डीजल पर निर्यात शुल्क 13.05 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं ATF निर्यात पर शुल्क 9.05 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 12.05 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। ये वृद्धि आज से लागू हो गई है। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तरल प्राकृतिक गैस ने ले जा रहा टैंकर दिशा ने हुरमुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर दिया है। पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद से इस जलमार्ग को पार करने वाला ये पहला भारतीय एलएनजी टैंकर है। इस टैंकर में 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी है और भारतीय शिपिंग निगम के अंतर्गत कंसोर्टियम यास का प्रबंधक है। अमरीका और ईरान के बीच प्रारंभिक युद्ध विराम समझौते की घोषणा के बाद से ये हुरमुज जल डमरू मध्य को पार करने वाले पहले वाणिज्यिक जहाजों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
4: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसी की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
5: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
6: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
5: नो टेरर एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
4: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
7: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण ना केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इल्लीगल ट्रेड्स होता था वो भी बंद हुआ है।
4: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: कमी दक्षिणी कैलिफोर्निया के मुजावे स्थित अमरीकी वायुसेना के अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद B-52 बम वर्षक विमान कल रात दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई। सोशल मीडिया पर अमरीकी सेना ने बताया कि एडवर्स वायुसेना अड्डे पर स्थानीय समय अनुसार सुबह लगभग 11:20 पर विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिलने के बाद आपातकालीन दल मौके पर पहुंच गया। इसके बाद हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया और आने वाले विमानों का मार्ग बदल दिया गया। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा की घोषणा से पश्चिम एशिया में उम्मीद की नई किरण जगी है। क्षेत्र के देशों ने लंबे समय से जारी तनाव को कम करने की इस पहल का स्वागत किया है। औपचारिक रूप से इस समझौते पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर किए जाएंगे। समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलने और वार्ता जारी रहने तक युद्ध विराम बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस घटनाक्रम का असर तेल बाजार पर भी दिखा है। आपूर्ति में सुधार की उम्मीद के बीच तेल की कीमतों में गिरावट आई है। समझौते की घोषणा के बावजूद पूरा विवरण जारी नहीं किया गया है, इसलिए प्रतिबंधों में ढील ईरान के परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज जलडमरू मध्य में नौ वहन नियमों पर दोनों पक्षों के बीच मतभेद अभी भी कायम है। ऐसे में इसराइल लेबनान सीमा की स्थिति इस समझौते की सफलता की अहम कसौटी बन सकती है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: फीफा विश्व कप में केप वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही केप वर्डे के गोलकीपर वोजिन्ना ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहा। ग्रुप एच में सऊदी अरब और उरुग्वे का मैच 1-1 से बराबरी पर छूटा। केंद्र ने नीट यूजी पुनः परीक्षा के लिए सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला किया गया। बैठक में राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की गई। गृह सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विद्यार्थियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने की अपील की। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक, कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने शिकागो स्थित भारतीय दूतावास में स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। श्री क्वात्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करके गर्व का अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने हम सभी के लिए सेवा और समरसता के जीवन का कालजयी संदेश दिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने सिंगापुर के नेशनल यूनिवर्सिटी NUS को अमरावती में वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय शाखा स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया है, ताकि अमरावती को वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद फरहत। अमेरिका ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध को समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने पर सहमति बनने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका ईरान में समझौता, होर्मुज से निकलने लगे जहाज। जनसत्ता की सुर्खी है, स्विट्जरलैंड में 19 को समझौते पर किए जाएंगे हस्ताक्षर। ट्रंप ने नाकेबंदी खत्म करने की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने समझौते का स्वागत किया। अमर उजाला के शब्द हैं, भारत के लिए बड़ी राहत, तेल आपूर्ति सुधरेगी, घटेगी महंगाई। 1000 किलोमीटर मार करने वाली स्वदेशी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। पत्र लिखता है, स्वदेशी माणिक टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल, सभी मानक पूरे किए। वैष्णो देवी के तीर्थ स्थान पर इस बार पिछला रिकॉर्ड टूटने के आसार, श्रद्धालुओं की संख्या 1 करोड़ होने के पार होने की उम्मीद, देशबंधु की खबर है। वीर अर्जुन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हुए महिला किसानों की तस्वीर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, किसानों की किस्मत बदल देगा जेवर हवाई अड्डा। वाणिज्यिक उड़ानें शुरू, पहली उड़ान से लखनऊ पहुंचे जमीन देने वाले किसान। मानसून

0: आपदा सैटेलाइट तस्वीरों में गायब हुए बादल दैनिक भास्कर की खबर है। पत्र लिखता है देश में 4 से 15 जून के बीच 64% कम बारिश दर्ज हुई। लोकसत्य ने अपने संपादकीय पन्ने पर भारत में पिछले कुछ वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में हो रही बढ़ोतरी पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है हर दिन सड़क हादसों में 500 जिंदगी खाक। लेखक ने विश्लेषण दिया है कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस के स्टाफ और लापरवाह वाहन चालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के साथ साथ लोगों द्वारा वाहन चलाने में सावधानी बरतने की जरूरत है। लेटे लेटे मोबाइल चलाना जवानी में दे रहा बुढ़ापे का दर्द। 18 से 45 आयु वर्ग के 5,400 युवाओं पर किए गए सर्वेक्षण में हुआ खुलासा। टेकनेस सिंड्रोम से गर्दन दर्द, अकड़न, कंधों में तनाव, सिर दर्द जैसी समस्याएं हो रही हैं, हिंदुस्तान की खबर है।
1: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के व्यों में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन LNG के साथ होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्डे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। स्लोवाकिया कन्फर्स इट्स हाईएस्ट ऑनर ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर मोदी टू पार्टिसिपेट इन G7 समिट इन एवियन फ्रांस टुडे। To also hold bilateral meetings with Prime Minister of Canada and UK and UAE President. Government hikes export duties on diesel and aviation turbine fuel. Export duty on petrol remains unchanged. Indian ship Disha carrying 62,370 metric tons of LNG cargo safely crosses Strait of Hormuz. 8 people killed after B-52 bomber crashes at US Air Force base in Southern California. And in football, Cape Verde stunned Spain in scoreless draw at FIFA World Cup. Belgium also settled for 1-1 draw with Egypt. President of Slovakia, Peter Pellegrini, has conferred Slovakia's highest state honor, the Order of the White Double Cross First Class, upon Prime Minister Narendra Modi. Secretary West in the Ministry of External Affairs, C.B. George, said that the Prime Minister expressed his heartfelt gratitude to the President, the government and the people of Slovakia for the distinguished honor.
3: As a special gesture, President conferred the highest state decoration of Slovakia, Order of the White Double Cross First Class, upon Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi for his role in an exceptional contribution in building India-Slovakia relationship. Minister dedicated the award to the people of India and Slovakia who have contributed in strengthening this partnership. Prime Minister also met with His Excellency Mr. Richard Rasi, Speaker of the National Council of the Slovak Republic, reaffirming the commitment to strengthen relationship between our two democracies.
2: India and Slovakia elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also inked 11 agreements to boost cooperation in key areas including labour migration, digital technology and defence, following talks between Prime Minister Modi and his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava. Addressing a joint press conference, Mr. Modi said, "Elevation of ties symbolises shared beliefs, priorities and future."
4: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। प्रधानमंत्री जी और मैंने हम

0: हाँ मोहिनी, आज हम और तुम दोनों मिलकर रसराज की रंग भरी सुराई में तूफान उठा दे। इससे इतना रस छलक पड़े कि उस जमाने की प्यास बुझ जाए जिसमें हम और तुम जी रहे हैं।
1: हाँ रचो जितने गीत रचना चाहते हो, जब तक रचते रहोगे मैं उन्हें सुर में गूंज कर नाचती रहूंगी। देखें पहले शब्द थकते हैं या भाव।
2: कारी कारी कारी अंधियारी थी रात, एक दिन की बात, जब सघन गगन से घन न गरज उठी, सावन की घटा घूंघट में छपा कर, चपल चपल बिजली की छटा, किकनार करके सिंगार, किकनार तीखी तलवार, या थी वो कटार करके सिंगार, चली उस पार जहां थे उसके किसन मुरार, चमक झुम झुम रमक झुम झुम चमक झुम झुम।

सनन सनन पवन चले झनन झनन झांझर बोले अमृत घोले दिल न डोले कामिनिया चले होले होले नयन झुके पग न रुके बेला मिलन की न टले अचरा ढले दीपक जले पिया मिलन गोरी चले छुम छुम छुम छमक छमक रुम झुम झुम झमक झमक छुम छुम

गिरे बरसात, उठे घन घोर, घटा करे शोर पपिया। पी है कहाँ मेरा, पी है कहाँ, कहे गोरी के प्राणों का प्राण पपिया। सन में लगन लगी, मन में अगन जगी, बंद किए दोना नैन उघारे, प्यार पुकारे सो प्रीत किनारे, चली है वो सांसों की डोर सहारे।

नदिया पहाड़ कर पार, गोरी नार आई प्रीतम के द्वार, अभिसार करने पहियों में बांध अपने प्रीतम की, साध लगी प्राणों में अमृत सा प्यार।

अब सुनिए लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ में आनंद बख्शी का लिखा गीत। संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिल्म का नाम नाची मयूरी।

श्रोताओ, अब हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले और किशोर कुमार का गाया गीत, फिल्म है बलमा। गीत रचना समीर की, संगीत नदी में श्रवण का।

अब सुनिए सावन कुमार का लिखा ये गीत, संगीत महेश किशोर का है, फिल्म है सनम बेवफा, आवाज लता मंगेशकर और साथियों की।

0: श्रोता, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। 8:58 हुए हैं। अब सुनिए न्यूज हेडलाइंस आकाशवाणी भोपाल से।
1: इसका शेष भाग आप प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों के दौरे के तीसरे चरण में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियन पहुंचेंगे, जिसके बाद श्री मोदी शिखर सम्मेलन के कार्यकारी सत्र में भाग लेंगे। इसका विषय है नई साझेदारी बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनर्निर्माण करना। 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा को लेकर केंद्रीय गृह सचिव ने विद्यार्थियों की सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता के लिए राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल

0: का पालन करने के निर्देश दिए। यूपीएससी ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम कल घोषित कर दिए हैं। 1000 से अधिक रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए चयन किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि आगामी 6-7 महीने में बड़े त्यौहार, सांस्कृतिक पर्व एवं मेले मनाए जाएंगे। इन सभी अवसरों पर संस्कृति विभाग सभी समाजों को उनकी आस्थाओं और सांस्कृतिक परंपराओं को जोड़कर वृहद आयोजन करे। प्रदेश में वर्ष 2025-26 की कक्षा 5वीं एवं 8वीं की पुनः परीक्षा आज से शुरू हो रही है। ये 23 जून तक चलेगी। परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा प्रदेश भर में कुल 2795 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और प्रदेश में इस हफ्ते मानसून दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग ने आज के लिए भोपाल और ग्वालियर समेत करीब 30 जिलों में गरज चमक के साथ आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: मीडिया में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 9 बजे प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रसधार। इस कार्यक्रम में पहले सुनिए शहजाद सिंह ठाकुर के गाए बुंदेली लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे शहजाद सिंह ठाकुर के गाए बुंदेली लोकगीत। अब हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर सिया शरण ज्योतिषी के स्वर में ये बुंदेली लोकगीत। पहले प्रस्तुत है ये दादरा गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सिया शरण ज्योतिषी के स्वर में ये बुंदेली चौकड़िया। इसके साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रसधार अब समाप्त होता है।

मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं शाहिद परवेज का बजाया सितार पर राग यमन।

मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 800 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 10 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी, इसे हम आकाशवाणी भोपाल से रिले कर रहे हैं।

स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द वाइट

रीवा जिले में इन दिनों गर्मी, उमस और बारिश की बूंदों वाले मिले जुले मौसम का असर देखा जा रहा है। कभी धूप की तेज तपन है तो कभी तेज आंधियां अपना असर दिखा रही हैं, लेकिन इन सबके बीच भी तेज गर्मी का असर लगातार बना हुआ है। जिले में 12 जून से जनकल्याण शिविर आयोजित कर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शासन की विभिन्न योजनाओं के पात्र हितग्राहियों के आवेदन पत्र भरवाए जा रहे हैं। 18 जून तक चलने वाले जनकल्याण शिविरों की मॉनिटरिंग के लिए सभी अधिकारी क्षेत्र के विकासखंड मुख्यालयों तथा नगरीय निकायों में आयोजित शिविरों में पहुंचते हैं। अधिकारियों द्वारा शिविरों में विभागीय योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है। शिविरों में स्वनिधि योजना, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, आयुष्मान योजना, संबल योजना, प्रधानमंत्री किसान कल्याण, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, व्यय वंदन योजना, आयुष्मान भारत योजना तथा अन्य योजनाओं के आवेदन पत्र भरवाए जा रहे हैं। आगामी 21 जून को होने वाले योग दिवस को लेकर योग सप्ताह जिले में भी मनाया जा रहा है। केंद्रीय कारागार रीवा में बीते दिनों इसके तहत योग शिविर का आयोजन किया गया। वहीं उप जेल त्योथर में भी योग शिविर का आयोजन किया गया। विश्व रक्तदाता दिवस पर 14 जून को जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त पहल पर आयोजित रक्तदान शिविरों में लोगों ने बढ़ चढ़ कर रक्तदान किया। संजय गांधी अस्पताल में 50 यूनिट तथा ब्रह्म कुमारी संस्थान द्वारा आयोजित शिविर में 7 यूनिट रक्त का संग्रहण किया गया। रक्तदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्हें प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। जिले में इन दिनों खेत बचाओ अभियान में किसानों को संतुलित उर्वरक उपयोग एवं प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए जोर दिया जा रहा है। इस संबंध में जिले के सिरमौर विकासखंड के अंतर्गत बीरखाम गांव में कृषि विभाग एवं आत्मा परियोजना के संयुक्त तत्वावधान में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और लगातार संघर्ष के बल पर युवा अपनी मंजिलों को हासिल कर ही लेते हैं, इसे ही चरितार्थ कर दिखाया है रीवा जिले के ग्राम बुसौली निवासी बाबूलाल रावत ने। बाबूलाल का चयन भारतीय सेना में हुआ है। बाबूलाल रावत शासकीय आईटीआई रीवा के इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के छात्र रहे हैं। बाबूलाल बताते हैं कि इस मुकाम पर पहुंचने के लिए उन्होंने पिछले 4 वर्षों तक लगातार कड़ा संघर्ष और अथक परिश्रम किया है। रीवा जिले में मछली पकड़ने पर आज से 15 अगस्त तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। वर्षा काल में मछलियों के प्रजनन काल को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने जिले के सभी जलाशयों में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध के आदेश दिए हैं। इस अवधि में मछली का शिकार, विनिमय तथा परिवहन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिले भर में पौधरोपण के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में संभागायुक्त सहित अन्य अधिकारियों और स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने पौधे लगाए। कृषि विभाग द्वारा जिले भर में किसानों को पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक किया गया। वन विभाग ने जयंती कुंज में पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता संवर्धन विषय पर एक विशेष संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन भी किया। वहीं माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के रीवा परिसर में मातृशक्तियों द्वारा पौधों का रोपण कर प्रकृति के संरक्षण का संदेश दिया गया। बीते दिनों रीवा के कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम में प्राकृतिक खेती की जागरूकता के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने किसानों से प्राकृतिक खेती करने का आह्वान किया। आगामी सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के तहत पुलिस प्रशिक्षण शाला रीवा में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन बीते दिनों किया गया, जिसमें जिला पुलिस बल, विशेष सशस्त्र बल एवं होमगार्ड के कुल 49 अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना के तहत निर्मित रीवा जिला स्थित गोविंदगढ़ रेलवे स्टेशन टनल में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। रेलवे अधिकारियों से प्राप्त सूचना के आधार पर पूरे टनल में कुल 52 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने हैं। इन कैमरों के माध्यम से टनल के प्रत्येक हिस्से पर नजर रखी जाएगी। कैमरों की लाइव मॉनिटरिंग रीवा स्थित रेलवे सुरक्षा बल द्वारा की जाएगी। बीते दिनों रीवा के मेहरसेन तरणताल में 54वीं राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 4 दिवसीय इस प्रतियोगिता में 114 इवेंट्स में 18 जिलों के 200 खिलाड़ी तथा उनके साथ 50 ऑफिशियल्स भी शामिल हुए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने विजयी खिलाड़ियों को मेडल प्रदान किए। रीवा जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे रीवा जिले की चिट्ठी, आलेख आरती श्रीवास्तव का, वाचक स्वर अभिषेक कटियार का। ये प्रसारण आकाशवाणी भोपाल से किया जा रहा था। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।
1: मीडियम में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 10:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदे मातरम, गौरव गान की डेढ़ सदी।

श्रोताओं, वंदे मातरम। भारत की राष्ट्रीय चेतना, अटूट देशभक्ति और सांस्कृतिक अस्मिता का अमर उद्घोष है, जिसने देश के स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा बदल दी। महान साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा साल 1875 में रचित इस कालजयी गीत के गौरव में ही 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं। बंगाली और संस्कृत भाषा के अद्भुत मेल से बना यह गीत सिर्फ एक रचना नहीं, बल्कि औपनिवेशिक दास्ता की बेड़ियों को काटने वाला एक महामंत्र रहा है। वंदे मातरम के 150 वर्षों के गौरवगान, इसके ऐतिहासिक सफ़र और आज के बदलते भारत में इसकी प्रासंगिकता को दर्शाता है। वंदे मातरम का शाब्दिक अर्थ है, हे माँ, मैं तुझे प्रणाम करता हूँ। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1875 में इसके शुरुआती पदों की रचना की थी, जिसे बाद में उनके प्रसिद्ध राजनीतिक उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया गया। ये उपन्यास 1770 के बंगाल अकाल और ब्रिटिश हुकूमत और जमींदारों के खिलाफ हुए सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। इस गीत के जरिए पहली बार देश की मिट्टी को एक जागृत देवी और मां के रूप में प्रतिस्थापित किया गया, जिसने सोई हुई राष्ट्रीय चेतना को झकझोर कर रख दिया। इस गीत को जन जन तक पहुंचाने और इसे सुर ताल देने का एक ऐतिहासिक श्रेय गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को जाता है, जिन्होंने पहली बार 1896 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे सस्वर गाया था। बंग भंग आंदोलन 1905, लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए बंगाल विभाजन के विरोध में ये गीत ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बना। कलकत्ता की सड़कों पर हजारों राष्ट्रभक्तों ने एक सुर में वंदे मातरम गाकर ब्रिटिश राज की नींव हिला दी। ब्रिटिश सरकार का प्रतिबंध, इस गीत से पैदा होने वाले क्रांतिकारी राष्ट्रवाद से डरकर अंग्रेजों ने इसके सार्वजनिक गायन पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन इस दमन ने हवा का काम किया और वंदे मातरम केवल एक गीत ना रहकर क्रांतिकारियों का सबसे प्रिय नारा बन गया। फांसी के फंदे को चूमते समय अमर शहीदों के होंठों पर यही आखिरी शब्द होते थे। इस गीत के शुरुआती पद भारत भूमि की प्राकृतिक संपन्नता का अद्भुत खाका खींचते हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामला मातरम का सीधा अर्थ है वो मातृभूमि जो हमें शुद्ध जल, मीठे फल, चंदन जैसी शीतल हवा और हरी भरी फसलों से समृद्ध करती है। मैं उस माँ की वंदना करता हूँ। ये गीत देशवासियों को अपनी भौगोलिक और प्राकृतिक संपदा पर गर्व करना सिखाता है।

आज़ादी के बाद 24 जनवरी 1950 को भारत की संविधान सभा ने सर्वसम्मति से वंदे मातरम को भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया। इसे राष्ट्रगान जनगण मन के समकक्ष का दर्जा और सम्मान दिया गया। इसके शुरुआती दो पद जो पूरी तरह राष्ट्रभक्ति और प्रकृति वंदना को समर्पित हैं सामूहिक रूप से गाए जाते हैं।

0: मीडियम में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 10:10 हुए हैं। अब विश्व दर्पण दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन LNG के साथ होर्मुज़ जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्डे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियो पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की स्टामर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
2: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
1: फ्रांस के एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध और अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। G7 शिखर सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय मंच है जो हर साल कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमरीका जैसे G7 सदस्य देशों के नेताओं के लिए आयोजित किया जाता है। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सम्मान दोनों देशों के बीच विश्वास, स्नेह और सहयोग का प्रतीक है और आने वाली पीढ़ियों को इस मित्रता को और मजबूत करने के लिए प्रेरित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्लोवाकिया यात्रा संपन्न हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी की स्लोवाकिया यात्रा कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण रही।
3: प्रधानमंत्री की ब्रातिस्लावा यात्रा के दौरान कई ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए गए जिनसे भारत और स्लोवाकिया के रिश्ते काफी मजबूत हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान कल 11 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। उम्मीद है कि इन समझौतों से रक्षा, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, पर्यटन, क्वांटम कम्युनिकेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी और उच्च शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के

0: बीच बातचीत के दौरान दोनों पक्षों ने आतंकवाद से निपटने में सहयोग को मजबूत करने के लिए संयुक्त कार्य समूह बनाने का भी फैसला किया। प्रधानमंत्री मोदी आज ब्रातिस्लावा से रवाना होंगे और G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस जाएंगे। स्लोवाक रिपब्लिक के ब्रातिस्लावा से स्मिथी एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। तरल प्राकृतिक गैस LNG ले जा रहा टैंकर दिशा ने होर्मुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद से इस जलमार्ग को पार करने वाला ये पहला भारतीय LNG टैंकर है। इस टैंकर में 62,370 मीट्रिक टन LNG है और भारतीय शिपिंग निगम के अंतर्गत कंसोर्टियम इसका प्रबंधक है।
2: अमेरिका और ईरान के बीच प्रारंभिक युद्ध विराम समझौते की घोषणा के बाद से यह होर्मुज जलडमरू मध्य को पार करने वाले पहले वाणिज्यिक जहाजों में से एक है। इस जहाज के 18 जून तक गुजरात के दहेज पत्तन पर पहुंचने की आशा है। अब तक भारतीय ध्वज वाले 10 और विदेशी ध्वज वाले 5 जहाज इस जलमार्ग को सुरक्षित रूप से पार कर चुके हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय पोत परिवहन महानिदेशालय के माध्यम से इस क्षेत्र में कार्यरत भारतीय नाविक और जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विदेश मंत्रालय विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों जहाजरानी कंपनियों और अन्य हितधारकों के साथ लगातार संपर्क में है। 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इसराइल के सैन्य हमले शुरू होने के बाद यह रणनीतिक जलमार्ग प्रभावी रूप से बंद हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप ईरान ने जवाबी कार्रवाई की और क्षेत्रीय जलमार्ग बाधित हो गया। विश्व दर्पण के लिए मैं जया भारती।
1: अमेरिका में दक्षिणी कैलिफोर्निया के मोजावे स्थित अमेरिकी वायुसेना के अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद B-52 बमवर्षक विमान कल रात दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई। अमेरिकी सेना ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि एडवर्स वायुसेना अड्डे पर स्थानीय समय अनुसार सुबह लगभग 11:20 पर विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिलने के बाद आपातकालीन दल मौके पर पहुंच गया। इसके बाद हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया और आने वाले विमानों का मार्ग भी बदल दिया गया। दुर्घटना का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं।
3: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा की घोषणा से पश्चिम एशिया में उम्मीद की नई किरण जगी है। क्षेत्र के देशों ने लंबे समय से जारी तनाव को कम करने की इस पहल का स्वागत किया है। औपचारिक रूप से इस समझौते पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर किए जाएंगे। समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलने और वार्ता जारी रहने तक युद्ध विराम बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस घटनाक्रम का असर तेल बाजार पर भी दिखा है। आपूर्ति में सुधार की उम्मीद के बीच तेल की कीमतों में गिरावट आई है। समझौते की घोषणा के बावजूद पूरा विवरण जारी नहीं किया गया है, इसलिए प्रतिबंधों में ढील ईरान के परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज जलडमरू मध्य में नौ वहन नियमों पर दोनों पक्षों के बीच मतभेद अभी भी कायम है। ऐसे में इसराइल लेबनान सीमा की स्थिति इस समझौते की सफलता की अहम कसौटी बन सकती है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: फीफा विश्व कप में केप वर्डी की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही केप वर्डी के गोलकीपर वो जिन्हा ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहा। ग्रुप एच में सऊदी अरब और उरुग्वे का मैच 1-1 से बराबरी पर छूटा। न्यूजीलैंड और ईरान का मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने शिकागो स्थित भारतीय दूतावास में स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। श्री क्वात्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वे स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करके गर्व का अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने हम सभी के लिए सेवा और समरसता के जीवन का कालजयी संदेश दिया। स्वामी विवेकानंद एक प्रख्यात दार्शनिक और विचारक थे। उन्होंने विश्व में वेदांत और योग की शिक्षाओं का प्रसार किया। स्वामी विवेकानंद को 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सभा में उनके ऐतिहासिक संबोधन के लिए जाना जाता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन LNG के साथ हुर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्डी की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: मीडियम में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 10:20 हुए हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सारंगा। पहले सुनिए मोहम्मद रफी का गाया ये गीत। संगीतकार हैं रवि, गीतकार शकील बदायूनी। फिल्म है 14वीं का चांद। सुनना चाहते हैं अमरावती से कमरुल्ला ठेकेदार नसीम, आयशा, हादिया खान, आसमा, सालिया, शुएब, साइमा, मुस्ताबा, आफिया, राउफ, शाहिद। कोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर। कंवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति शिवानी और मीनू राज श्रीमाली। संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब, अब्दुल हक, जियाउल हक, मोहम्मद उमर। दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैयालाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार।

साहिब बीवी और ग़ुलाम, ये नाम है उस फिल्म का जिसका गीत आप सुनना चाहते हैं। आवाज़ गीता दत्त की है, संगीत हेमंत कुमार का, गीत शकील बदायूनी का। फरमाइश की है ग्राम लोहारी खंडवा से राजेश कुमार धनजी, राहुल धनजी, विशाल कुमार धनजी, शीला धनजी, गायत्री धनजी। खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद्य, रानी वैद्य, महिमा वैद्य, नीतू वैद्य। सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता, भावना और प्राची नेमा। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां। यंग रेडियो लिसनर्स जवाहरगंज, जबलपुर से जिनेंद्र जैन, महेंद्र जैन, सत्येंद्र जैन और अरुण चौरसिया।

हेमंत कुमार की आवाज़ में सुनिए शकील बदायूनी का लिखा गीत। फिल्म है 20 साल बाद। इस गीत को पसंद किया है लेवई से गुलाब दास, मानिकपुरी दतरंगी से भागवत वर्मा, बरगी नगर जबलपुर से रविंद्र गदरे, सुभाष गदरे, दिगंबर गदरे, राजेश गदरे, शिवम शुभांग सृष्टि गदरे, बेमेतरा से सुरेश कुमार सारथी, पूर्णिमा हेमलता, कमलकांत वीरेंद्र, ब्रजकांत सारथी, बनियापारा धमतरी से रामचंद्र माखीजा काफिर, श्रीमती सविता बेबी स्वाति पूरा माखीजा परिवार, बरगी नगर से हमारे श्रोता राम कुमार अनुज, नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन।

लता मंगेशकर की आवाज़ में पेश है फिल्म पाकीज़ा का ये नगमा। बोल मजरू सुल्तानपुरी के हैं, तर्ज बनाई है ग़ुलाम मोहम्मद ने। अनुरोध करने वाले श्रोता हैं देवरी भाटापारा से गनूला रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश मिस्त्री, खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र, सलमती पंचोलिया, बेरडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, चंचल डोमने, अर्जुन गवनेकर, धीरज सब्बा शेरे, इसी गीत के लिए अनुरोध किया है इन श्रोताओं ने। बिलहरी बड़खेरा कटनी से संतोष ठाकुर, राम आधार दुबे, सुमेर पटेल, सुदामा सेन, सुजीत बर्मन, अफजल खान, ग्राम पहरुआ से राम कुमार लोधी, संजय पुरी और उनके परिवार के सदस्य।

लीजिए सुनिए, हजरत जयपुरी का लिखा गीत, संगीतकार हैं रामलाल, आवाज़ लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी की है, फिल्म का नाम जेरा। सुनना चाहते हैं बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश, उषा, अमित कुमार, हैप्पी, गाजीपुर से प्रतीक, रोशनी, प्रांजल, अवधेश, प्रीति, नवनीत राय। नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दतरिंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाब दास, मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, चर डोंगरी पिपरिया से दुर्गा राम साहू। सदर जबलपुर से लखन राही, लक्ष्मी राही, प्रमोद राही और सृष्टि राही।

मुकेश की आवाज़ में सुनिए फिल्म दीवाना का गीत। गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत शंकर जयकिशन का है। सुनना चाहते हैं नर्मदा कॉलोनी मंडला से सिया शरण ज्योतिषी, पुष्पा ज्योतिषी, गोल्डी लक्की रोली श्वेता और परु। पिंडरई मंडला से सुमत कुमार जैन, मीना जैन, कबीर जैन, वरुण जैन, वान्या जैन। चांदनी चौक गंडई पंडारिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू, रविंद्र सेन, खुशी रौनक सेन। कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण गीतू, निहारिका और वंश बत्ता।

आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज़ में सुनिए। साहिर लुधियानवी का लिखा गीत, संगीतकार है रवि, फिल्म है गुमराह। इस गीत के लिए फरमाइश की है प्रणाम सिटी खंडवा से शिवांश कुमार खंडाले, सुभाष खंडाले, मंदा खंडाले, राजेश कुमार खंडाले, अंजलि, संदीप, माधुरी, पिंटू, जयश्री खंडाले, कुंदनगर खरगोन से ध्रुवा सोनावड़े, सुनीता, खुशी, प्रियांश, आशीष, पूनम, कृष्णा, शुभम सोनावड़े। इस गीत के लिए ये पत्र भेजा है मढ़ई जबलपुर से बिंदालाल, विजया, गौतम और उनके परिवार के सदस्यों ने।

घोंसले को सुनिए। फिल्म है पेइंग गेस्ट। शब्द रचना मजरूह सुल्तानपुरी के है, संगीतकार एस डी बर्मन। सुनना चाहते हैं आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा, निवान शर्मा, जतू का किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना आलम, चांदनी नाच, गणेशपुर से हिना कैसर, मोहम्मद वकील, फिरोज आलम, देवरी भाटापारा से गन्नू लाल रजक, के आर साहू, अश्विनी, गणेश मिस्त्री और परिवार के सदस्य।

0: इस गीत के साथ ही फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सारंगा समाप्त होता है। मीडियो में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 10:58 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम। पहले सुनिए न्यूज हेडलाइंस।
1: प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुख और समृद्धि के दरवाजे धैर्य, विवेक और दूरदर्शिता से किए गए कार्यों से ही खुलते हैं। सोशल मीडिया पर संस्कृत का एक उद्धरण साझा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक निर्णय में पूर्ण विवेक आवश्यक है, क्योंकि सोच समझकर उठाया गया कदम सफलता की नींव बनता है। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान और नौवें महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का कार्यकाल इस वर्ष के अंत में समाप्त हो जाएगा। अगले वर्ष 1 जनवरी को नए संयुक्त राष्ट्र महासचिव अपना पदभार ग्रहण करेंगे। इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अगले महासचिव पद के उम्मीदवारों के साथ संवाद का आयोजन किया गया। भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने अमरीका के शिकागो स्थित भारतीय दूतावास में स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। श्री क्वात्रा ने एक पोस्ट में कहा कि स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सभा में ऐतिहासिक संबोधन दिया था। स्वामी विवेकानंद एक प्रख्यात दार्शनिक और विचारक थे। नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए प्रवेश पत्रक डाउनलोड करने की सुविधा शुरू होने के 24 घंटों के भीतर ही 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्रक डाउनलोड कर लिए हैं। एजेंसी ने आश्वासन दिया है कि परीक्षा से पहले सभी उम्मीदवारों को प्रवेश पत्रक मिल जाएंगे और नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण कार्यक्रम में संशोधन किया गया है। अब दावे आपत्ति 25 जून तक लिए जाएंगे और इनका निराकरण 2 जुलाई तक किया जाएगा। फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 27 जुलाई को किया जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। सुबह के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। आज के कार्यक्रम की प्रस्तुति है श्वेता तिजोरिया की।
1: नमस्कार श्रोताओं, कुछ अंदाज, कुछ बात, कुछ ख्याल से बन जाते हैं विचार और यहीं से जन्म लेती है एक धारणा जो आगे चलकर हमारे व्यक्तित्व की पहचान बनती है। ये धारणा आधुनिक नवीन दोनों हो सकती है। खास ये है कि आप अपने विचार किस तरह रखते हैं। श्रोता मित्रों, आज हम जानना चाहेंगे आपके विचार कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में कि आपके दैनिक जीवन में प्लास्टिक का क्या महत्व है, या हम कहें कि बाजार जाते समय, यात्रा करते समय आप प्लास्टिक बैग, पॉलिथीन का प्रयोग करते हैं, क्या ये सुविधाजनक है या फिर इसके कुछ नुकसान भी हैं। हम जानना चाहेंगे आपके विचार। हमारे फ़ोन नंबर 2660902 और भोपाल के बाहर के श्रोता साथी हमें एसटीडी कोड लगाकर यानी 0755 लगाकर हमसे बात कर सकते हैं। तो हमें इंतज़ार है आपके विचार का और आपके फ़ोन का। हेलो।
2: हेलो।
1: हाँ जी, नमस्कार।
2: जी नमस्कार मैम।
1: आपका नाम जानना चाहेंगे हम।
2: जी मैम, मैं सचिन बात कर रहा हूँ, जिला संभल, ग्राम सिरसा से।
1: जी, तो कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज है कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, है ना। और आज हम आपसे जानना चाहेंगे आपके विचार, है ना, आपके विचार जानना चाहेंगे। हाँ, एक दैनिक जीवन में आने वाली एक बात है जिसके बारे में हम जानना चाहेंगे आपके विचार। जैसे आप अपने घर पर हैं या कहीं बाहर यात्रा करते हैं तो प्लास्टिक का कितना उपयोग करते हैं, प्लास्टिक के पॉलिथीन बैग, इन सब चीजों का उपयोग आप करते हैं?
2: जी।
1: करते हैं
2: जी। मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे प्लास्टिक जो होती है वो उसका सिंगल यूज जो प्लास्टिक होती है उसको एक निर्धारित करें कि हमें कितना करना है। उससे पहले तो एक थैला लें आप, तो वो ही बाजार में लेके जाएं, तो उससे थोड़ा पॉलिथीन कम होती है,
1: है ना। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि प्लास्टिक है वो हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है, आप जानते हैं प्लास्टिक का उपयोग, और पॉलिथीन जिसका उपयोग हम कर रहे हैं आज अपने दैनिक जीवन में बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है ना।
2: हाँ,
1: तो क्या ये हमारे लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है आपको पता है?
2: जी मैम, ये बहुत खतरनाक हो सकती है। जैसे कि हम कहीं से भी निकलते हैं तो जैसे देखते हैं कि कुछ पशु खा लेते हैं तो कहीं गंदगी बहुत रहती है, ये उड़ती हैं तो खेतों में बहुत नुकसान कर देती हैं।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं, हाँ यही मैं जानना चाह रही थी आपसे, है ना।
2: हाँ,
1: कि ये पॉलिथीन का उपयोग हमें कम करना ही नहीं चाहिए, इसके बदले हमें कपड़े के थैले, है ना, कपड़े के थैले हो गया उसका उपयोग करें बाजार जाते समय, है ना। तो ये अगर छोटी छोटी चीजों का हम अगर ध्यान रखते हैं तो हम अपने पर्यावरण को बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित रख सकते हैं। क्या सोचते हैं आप?
2: हाँ, तो जी, तो ये तभी होगा जब हम सजग रहेंगे और हम कदम उठाएं एक कदम स्वच्छता की ओर।
1: जी,
2: ये तभी संभव हो पाएगा।
1: जी बिल्कुल, और ये हम सभी का दायित्व है, है ना।
2: जी जी, हाँ, ये तो सभी का दायित्व है।
1: जी जी,
2: और आपने आसपास साफ सफाई बनाए रखी,
1: बिल्कुल बिल्कुल, हाँ,
2: तो गंदगी नहीं होगी।
1: बिल्कुल, तो आपने देखिए फोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
2: धन्यवाद, नमस्ते।

0: कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे में स्वागत है आपका।
1: नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार, आपका नाम बताएं।
1: दीदी मैं बाबू यादव बोल रहा हूँ सारनाथ वाराणसी से।
0: सारनाथ वाराणसी से आप बात कर रहे हैं। चलिए, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, आपने फोन किया है।
1: आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
0: हाँ जी, तो आपने फोन किया है कार्यक्रम बात आपकी और गीत हमारे में।

0: जी
1: और हम एक विचार जानना चाहेंगे आपके, आप हम सभी इस देश के नागरिक हैं, है ना? तो मैं ये जानना चाहूंगी कि जैसे हम अधिकतर अपने दैनिक जीवन में प्लास्टिक बैग, है ना, प्लास्टिक की बोतल, प्लास्टिक का सामान यूज करते हैं, तो
0: जी
1: ये कहाँ तक हमारे लिए अच्छा होता है ये बताएं।
0: मेरी देखिए, ये तो अच्छा है नहीं, ये तो इंसान अपनी सुविधा के लिए करता है, लेकिन
1: जी जी जी बिल्कुल,
0: प्रकृति के लिए अच्छा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि
1: हाँ बिल्कुल,
0: ये हमारे लिए नुकसानदेह है।
1: हाँ
0: ये जहाँ पड़ा रहता है गलता भी नहीं है,
1: बिल्कुल
0: और
1: अच्छी
0: इसको
1: बात है,
0: जलाने पर जैसे
1: हाँ
0: धुआं निकलता है,
1: बिल्कुल बिल्कुल, है ना।
0: तो इसलिए ये हमारे लिए कोई फायदेमंद नहीं है और हम लोगों को इसका उपयोग नहीं करना चाहिए।
1: हाँ
0: और पहले दीदी मैं देखता था कि पहले जब इसका चलन नहीं था
1: हाँ
0: तब भी तो मार्केट था, तभी तो लोग सामान ले आते थे।
1: बिल्कुल, वही हम
0: ये
1: जानना
0: तो
1: चाह
0: है
1: रहे
0: कि
1: हैं,
0: इसके पहले बाजार ही नहीं था या हम लोग नहीं थे तो।
1: हाँ बिल्कुल, मैं ये हाँ आपसे जानना चाह रही हूँ कि जैसे बाजार जाते समय, यात्रा करते समय, हम बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं, कपड़े के बने थैले हैं, है ना, स्टील की बॉटल है, इसका उपयोग कर सकते हैं, है ना, यात्रा करते समय, बाहर जाते समय।
0: इसके इसके इजाद से पहले दीदी वही होता था कि लोग जाते थे मार्केट में तो कपड़े के थैले ले जाते थे या कागज के बैग मिलते थे,
1: हाँ जी
0: उसमें
1: जी जी
0: सामान ले आते थे जो
1: हाँ
0: कि फेंकने फेंक देने पर सड़ जाते थे और मिट्टी हो जाते थे। तो
1: बिल्कुल,
0: उस जमाने में ये बात था। अब
1: हाँ
0: क्या है कि हर जगह इसका सुविधा है, लोग वही लेके चले जाते हैं
1: बिल्कुल,
0: और कोई थैला लेके जाना नहीं चाहता है,
1: हाँ और बस हम तो
0: जबकि ये हमारे लिए मतलब प्रकृति के लिए बहुत अच्छा है कि हम इसका उपयोग ना करें।
1: बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही, और जो सारे हमारे साथी सुन रहे हैं वो भी ये चीज़ को मानेंगे कि हमें अधिक से अधिक वैसे चीज़ों का उपयोग करना चाहिए जो हमारे पर्यावरण के लिए
0: मैं ये
1: बहुत अच्छी
0: बताना
1: होती हैं।
0: चाहूंगा
1: जैसे हाँ
0: मैं
1: बताएं।
0: बताना चाहूंगा कि जब ये प्लास्टिक नहीं था
1: जी
0: तब भी मार्केट लोग जाते थे और तब भी मार्केट करते थे, सामान
1: जी
0: ले आते थे, तो उस दुकानदार जो कागज के
1: जी
0: थैले देते थे
1: हाँ हाँ हाँ
0: या हम लोग अपना कपड़े का थैला लेके जाते थे उसमें सामान ले आते थे, तो ये तो हम लोगों ने मतलब अपने सुविधा के लिए बना लिया, ये अच्छी
1: बिल्कुल
0: बात नहीं
1: बिल्कुल,
0: है।
1: अच्छी बात
0: और मैं
1: नहीं,
0: तो कहना चाहूंगा इसका इग्नोर करना चाहिए,
1: हाँ
0: बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए।
1: बिल्कुल, तो हम तो यही चाहेंगे कि आप वही चीज़ों का इस्तेमाल करें जो हमारे पर्यावरण के लिए अनुकूल हो, है ना।
0: जी
1: इन
0: दीदी
1: सब
0: बिल्कुल
1: बातों का
0: जी
1: अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारी प्रकृति भी अच्छी रहेगी और हम भी स्वस्थ रहेंगे, है ना। आपने फ़ोन किया
0: और
1: इसके लिए, हाँ
0: ये
1: जी
0: मुहिम जन जन की होनी चाहिए, ये
1: बिल्कुल
0: नहीं
1: बिल्कुल,
0: कि एक
1: हाँ
0: सभी की होनी चाहिए।
1: सभी की होना चाहिए, है ना। चलिए, आपने
0: जी
1: फ़ोन किया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।

0: नमस्कार।
1: नमस्ते मैडम जी।
0: कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में स्वागत है आपका।
1: नमस्ते मैडम, मैं गोपाल ओझा बोल रहा हूँ, ग्राम ककवासा जिला गुना से।
0: गोपाल ओझा जी है ना। चलिए कार्यक्रम
1: में सोता हूँ मैं, तो पूरे कार्यक्रम सुनता हूँ आकाशवाणी भोपाल के। तो
0: अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए आपका स्वागत है कार्यक्रम में। आज हम कुछ बातें साझा कर रहे हैं, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में है ना। वो ये है कि जैसे बहुत सारी चीजें हम यूज करते हैं अपने घर पर है ना।
1: हाँ,
0: तो उनमें हाँ उनमें प्लास्टिक का सामान भी होता है, प्लास्टिक की पॉलिथीन, प्लास्टिक की बॉटल है ना। तो
1: हाँ,
0: क्या ये सारी चीजें हमारे लिए अच्छी होती हैं, प्लास्टिक की पॉलिथीन, प्लास्टिक के पैकेट और बॉटल
1: होते हैं ना, तो फिर वो क्या होता है तो वो घर में ही रखते हैं हम।
0: नहीं, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि प्लास्टिक क्या आपके लिए अच्छा है।
1: प्लास्टिक तो अच्छा।
0: प्लास्टिक का अगर हम अधिक से अधिक उपयोग करते हैं या प्लास्टिक की पॉलिथीन को हम बाहर यूं ही फेंक देते हैं, तो इससे क्या होगा? इससे आपका पर्यावरण प्रदूषण होगा प्लास्टिक।
1: हाँ, जी जी मैडम जी,
0: ये जानना चाह रही हूँ मैं है ना
1: जी।
0: क्योंकि देखिए पॉलिथीन अगर आप फेंक देते हैं, प्लास्टिक की बोतल कहीं पर भी फेंक देते हैं, तो ये मिट्टी में मिलती नहीं है, है ना।
1: हाँ,
0: जी
1: हाँ।
0: ये कचरा इकट्ठा होता जाता है, इसको हमारे पशु खा लेते हैं है ना, नदियों में जमा हो जाता है, तो नदियां भी प्रदूषित हो जाती हैं। हाँ, और वो हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए कैसी रहेंगी बताएं।
1: हाँ, स्वास्थ्य के लिए तो वो तो क्या है, वो तो नुकसान ही है।
0: हाँ, उससे हमारे हमें समस्या होगी है ना।
1: तो समस्या होती है मैडम।
0: जी जी जी, तो मैं तो यही चाहूंगी गोपाल ओझा जी कि प्लास्टिक का उपयोग हम ना ही करें तो ज्यादा अच्छा
1: ना
0: होगा,
1: करें, ना करें जी। सही बोला आपने मैडम
0: जी, है ना। और अपने घर के छोटे बच्चे, युवा अवस्था वाले जो भी बच्चे हैं, उनको सबको समझाएं है ना
1: जी,
0: तभी ये बात जन जन तक पहुंचेगी है ना। आपने फोन किया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: जी नमस्ते, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में स्वागत है आपका।
1: मैडम जी नमस्कार, पवन कुमार सेन बोल रहा हूँ मैडम जी, छत्तीसगढ़ गंडई पंडरिया से।
0: जी पवन कुमार सेन जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम
1: बहुत
0: बात
1: बहुत
0: आपकी गीत हमारे में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी, धन्यवाद।
0: जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे मैडम जी, और आकाशवाणी का तो हम पुराने श्रोता हैं,
0: जी,
1: और
0: हाँ
1: रेडियो तो एनी टाइम चलते रहते हैं हमारे, रेडियो मोबाइल के द्वारा सुन लेते हैं मैडम जी आप लोगों के प्रसारण। जी
0: हाँ हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप सुनते हैं हमारे कार्यक्रम, है ना?
1: जी क्यों
0: तो
1: नहीं,
0: आज
1: कविता
0: हम
1: विशेष रूप से सुनता हूँ मैडम जी।
0: जी जी जी बिल्कुल, आज हम आपसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे आपके विचार

0: कि जैसे हम अपने जीवन में प्लास्टिक का उपयोग करते हैं, प्लास्टिक के पॉलिथीन बैग है ना, पैकेट, और कई बार ऐसा भी होता है कि हम कहीं बाहर जाते हैं है ना, किसी अच्छे पर्यटन स्थल पर मार्केट में, और जाके उन्हें फेंक देते हैं, तो क्या ये चीज सही है?
1: बिल्कुल गलत है मैडम जी। अब क्या है, अब आजकल के आदमी को कौन समझाए, कैसे समझाए यहाँ।
0: देखिए, हम तो ये कहेंगे कि सबसे पहले हमें अपने को ये जानना होगा कि प्लास्टिक हमारे लिए बहुत उपयोगी है या खतरनाक है, इस पर सोचना
1: बहुत
0: पड़ेगा।
1: खतरनाक है मैडम जी। अब क्या है, कई पशु पक्षी भी इसे खा लेते हैं, गाय लोग खाते हैं,
0: हाँ
1: और उसमें क्या है, कई प्रकार की बीमारी भी पैदा होते हैं मैडम जी। और मैं तो कहता हूँ कि इस चीज
0: और हम ये चाहेंगे कि आप, हम सभी पॉलिथीन का उपयोग ना करें, प्लास्टिक बैग है ना, इन सब का उपयोग ना करें, वो चीजें करें जो हमारे पर्यावरण के लिए अनुकूल हो, अच्छी हो, है ना।
1: बिल्कुल मैडम जी,
0: हाँ,
1: बिल्कुल
0: कपड़े के थैले, कागज है ना, और स्टील की बोतल, इन सब का उपयोग करें, है ना।
1: जी। हम क्या है, हम लोग ना विशेष रूप से अब रेडियो में जो बताए जाते हैं बातें, उसको अपने जीवन में अमल जरूर करते हैं मैडम जी। हम जब भी सब्जी लेने जाते हैं तो बिल्कुल अपने घर से थैला लेके जाते हैं।
0: बहुत अच्छी बात, बिल्कुल। और मैं ये सोच रही हूँ कि बहुत सारे लोग इस बात को सुन भी रहे हैं, है ना,
1: जी
0: ये भी
1: जी
0: अच्छी
1: मैडम जी,
0: बात है जी, बिल्कुल। और साथ साथ हम ये भी सिखाएं लोगों को, अपने घर के बच्चों को, छोटे बच्चों को, है ना,
1: जी
0: हाँ
1: मैडम जी,
0: हाँ इस बारे में उन्हें जानकारी दें कि अधिक से अधिक उन चीजों का इस्तेमाल करें जो हमारे पर्यावरण के लिए अनुकूल हो। आपने फोन किया,
1: जी
0: इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: नमस्कार।
1: नमस्कार मैडम जी, नमस्ते।
0: कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे में स्वागत है आपका।
1: जी मैडम,
0: आपका नाम बताएं।
1: मैं सुमत कुमार जैन, पिंडरी जिला मंडला से रिटायर्ड शिक्षक बोल रहा हूँ मैडम
0: जी। तो आपका स्वागत है कार्यक्रम में। और
1: जी,
0: हाँ जी, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे आजकल देखिए पर्यावरण बहुत सारी चीजों से प्रभावित हो रहा है ना, आजकल है ना, बहुत सारी चीजें हम देख रहे हैं, कहीं बाढ़ अधिक आ रही है, कहीं भूकंप आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं हमारे जीवन में, है ना। और प्रदूषण भी बहुत अधिक बढ़ रहा है, ठीक है ना। और इसके लिए कहीं कहीं हम भी दोषी हैं, जैसे हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजों का उपयोग करते हैं, प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बॉटल, पॉलीथीन। तो क्या इनका उपयोग करना अच्छा होता है, बताएं।
1: हमारे चारों तरफ फैली हुई समस्त वस्तुएं
0: जी,
1: जीव जंतु, पेड़ पौधे, जीव भी चीजें हमारे चारों तरफ फैली, ये सब पर्यावरण ही है मैडम
0: जी। बिल्कुल।
1: और
0: बिल्कुल।
1: इसे सुरक्षित रखना प्रत्येक मनुष्य का संकल्प लेकर के काम करना चाहिए, इसे सुरक्षित रखने का
0: जी। बिल्कुल।
1: रहा सवाल ये पेड़ पौधे जो कट रहे हैं
0: जी,
1: बड़े बड़े जो पहाड़ या जो सड़कें या जो खेल मैदान या कुछ भी बन रहे हैं, वो पहाड़ पेड़ पौधों को काट करके बनाए जा रहे हैं, इससे हमारा पर्यावरण असंतुलित हो रहा है मैडम
0: जी। और मैं ये कहना चाहूंगी कि इस पर्यावरण को संतुलित करने में हम सभी की भागीदारी होनी चाहिए, जन जन की भागीदारी
1: मैडम। एक काम करें, लेकिन क्या है, आप पॉलिथीन का उपयोग बहुत अधिक हो रहा है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है।
0: प्लास्टिक की बोतल हम खा पी कर प्लास्टिक के पैकेट फेंक देते हैं कहीं पर,
1: जहाँ रास्ते में फेंक देते हैं लोग
0: जी। बिल्कुल। हाँ
1: हाँ।
0: और उसको देखिए हमारे पशु खा लेते हैं, है ना, नदियों में जमा हो जाते हैं, इससे कितनी अधिक गंदगी और बीमारियां फैल रही
1: हैं। जो सामान रख के ले जाते हैं उसे भी ऐसे ही कहीं भी फेंक देते हैं, तो पशु खाते हैं, तो पशु भी मृत हो जाते हैं। तो ये हमारी कुछ सुरक्षा है, पेड़ पौधे लगाना, संकल्पित होकर के कोई अच्छे कार्य करना जिससे पर्यावरण सुरक्षित रहे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा ही दायित्व होगा,
1: पैदा जागरूक पैदा करना चाहिए।
0: हाँ, ये हमारा ही दायित्व होगा, जन जन का दायित्व होगा कि वो
1: विषय आपका और बहुत बढ़िया आप विषय को उठाया है। जितने भी देश के अंदर रेडियो श्रोता है वो आपके इस कार्यक्रम को सुन रहे और देख रहे होंगे, तो निश्चित रूप में जनता को प्रभाव पड़ेगा और जागरूकता आएगी।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: पर्यावरण हमारा सबसे जीवन को सफल और सुरक्षित रखने का एक साधन है, जिसे हमें अब स्वयं को भी उपयोग करना पड़ेगा और स्वयं भी सुरक्षित रखने के लिए हमें पेड़ पौधे और
0: अधिक से अधिक लगाने पड़ेंगे,
1: पानी वगैरह इत्यादि का।
0: और उसके बिल्कुल बिल्कुल, और उसके पश्चात उसकी देखभाल भी जरूरी है कि पेड़ पौधे है ना बढ़ रहे हैं कि नहीं, उनमें खाद डालें, उनका ध्यान रखें, है ना।
1: जी बिल्कुल।
0: तो आपने फोन किया जी, बिल्कुल आपने फोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में स्वागत है आपका।
1: हेलो, नमस्कार मैम।
0: नमस्ते, आपका नाम बताएं।
1: जी, मैं लक्ष्मी खुशी बात कर रही हूँ।
0: लक्ष्मी
1: जी? लक्ष्मी ग्वारा, जिला क्षेत्र मध्य प्रदेश से।
0: क्या कहते हैं, क्या करती हैं आप?
1: मैं पढ़ाई करती हूँ।
0: पढ़ाई करती
1: हूँ, बीए स्टूडेंट, बीए की छात्रा हूँ।
0: अच्छा, तो आज हमने कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका फोन लगा है और कुछ बातें हम आपसे जानना चाहेंगे, है ना
1: जी?
0: जैसे आप अपनी पढ़ाई कर रही हैं उसमें आप पर्यावरण के बारे में ज़रूर पढ़ते होंगे,
1: जी मैम,
0: है ना? तो बताएं, पर्यावरण जो अभी प्रदूषित हो रहा है वो किन कारणों से हो रहा है, क्या क्या विचार हैं आपके?
1: देखिए, पर्यावरण प्रदूषण के तो बहुत से कारण हैं, जैसे कि कारखानों से निकलने वाला धुआं, इनसे भी पर्यावरण प्रदूषण होता है। और जैसे गाड़ी वाहन है उनसे भी पर्यावरण प्रदूषण होता है। हम कई ऐसी चीजें भी ले आते हैं, जैसे कि कुछ प्लास्टिक वाली चीजें हैं, वो जल्दी नष्ट नहीं होती हैं, और हम उनको ऐसे खुले में फेंक देते हैं,
0: है ना? हाँ बिल्कुल,
1: उनसे भी प्रदूषण होता है।
0: हाँ बिल्कुल, और हम उनका लगातार उपयोग कर रहे हैं, जैसे प्लास्टिक, पॉलिथीन है, बॉटल है ना प्लास्टिक की, है? तो इन्हें हम

0: क्यों ना जरूरी ये हो कि इन्हें हम हटा कर कपड़े के बैग, जूट के बैग, है ना, और स्टील की बॉटल, इन सब का उपयोग करें।
1: हमें इन सब का उपयोग कम करना चाहिए, मतलब जो हमारी प्रकृति से बनी हुई चीजें उनका उपयोग ज्यादा करना
0: हाँ,
1: चाहिए,
0: वही मैं कहना
1: जो
0: चाह
1: हमें
0: रही हूँ।
1: लाभदायक भी हो।
0: हाँ
1: और आज बढ़ती जनसंख्या के कारण अधिकतर प्रदूषण फैल रहा है।
0: हाँ बिल्कुल। और लेकिन हमारा दायित्व तो ये भी है खुश लक्ष्मी जी कि हम इसे संरक्षित करें, पर्यावरण को, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं, उन चीज़ों का उपयोग करें जो हमारे पर्यावरण को अच्छा बनाएं, स्वच्छ बनाएं, है ना
1: जी
0: जी। तो देखिए, आपने फ़ोन किया और आपके विचार भी हमें जानने को मिले, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: जी नमस्कार।
1: नमस्कार मैडम, आकाशवाणी भोपाल से।
0: आपका नाम बताएं।
1: नाम सोनकंत, ग्राम पटेरी, जिला दमोह से बोल रहे हैं।
0: जी तो आपका फोन लगा है कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे में, आपका फोन लगा है ना?
1: जी
0: तो हम आपसे कुछ बात करना चाहेंगे। कहाँ आप, कौन से मतलब कहाँ रहते हैं आप? दमोह में रहते हैं ना?
1: ग्राम पटेरी है, जिला दमोह।
0: हाँ जी, तो आपने अपने आसपास देखा होगा कई बार लोग प्लास्टिक के बैग, पॉलिथीन है ना, बॉटल का उपयोग करते हैं, प्लास्टिक की बॉटल का उन्हें फेंक देते हैं। तो क्या ऐसा करना आपको सही लगता है?
1: नहीं मैडम, ये तो गलत है। ये प्लास्टिक के सामान है जो यहाँ वहाँ नहीं फेंक रहे, उनको इकट्ठा करके जला देना चाहिए।
0: हाँ, लेकिन आप ये भी ध्यान रखिए कि प्लास्टिक की चीजें को हम जलाते हैं तो उससे धुआं भी निकलता है, वो धुआं भी खतरनाक होता है ना?
1: हाँ,
0: तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि प्लास्टिक की बजाय हम कपड़े की थैली, जूट के थैले है ना, स्टील की बॉटल, ज्यादा से ज्यादा इनका उपयोग करें है ना।
1: इनका उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें, और जो प्लास्टिक की वस्तुएं हैं इनका उपयोग कम करें,
0: है ना। प्रकृति, जी बिल्कुल बिल्कुल, प्रकृति से जो जुड़ी चीजें हैं है ना, जो पुराने समय में हम उपयोग करते थे, तो क्यों ना उन्हीं चीजों को हम फिर से उपयोग करें जो भूल गए थे शायद हम।
1: हाँ मैडम, अभी जो पहले जमाने में उपयोग करते थे उन्हीं को उपयोग करें तो बेहतर रहेगा, प्रदूषण नहीं होगा,
0: बिल्कुल
1: स्वस्थ रहेंगे,
0: बिल्कुल
1: वातावरण में शुद्ध हवा मिलेगी,
0: हाँ
1: स्वस्थ ठीक रहेगा,
0: बिल्कुल बिल्कुल है ना। हम यही आपसे जानना चाह रहे थे, और इसमें हम सबकी भागीदारी होगी तभी हमारा पर्यावरण जी सुरक्षित रहेगा, है ना, बिल्कुल। तो आपने फोन किया, इसके लिए आपका बहुत

0: जी नमस्कार। हाँ जी
1: नमस्कार दीदी,
0: आपका नाम बताएं।
1: सनी शर्मा
0: जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप, आपकी जगह का नाम बताइए।
1: राजीव नगर।
0: अच्छा जी, तो कार्यक्रम में स्वागत है आपका, और आज आपने फोन किया है कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में, और हम कुछ बातें आपसे करना चाहेंगे, आपके विचार भी जानना चाहेंगे कि आजकल पर्यावरण में बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं, प्रदूषित हो रहा है पर्यावरण, तो इसके लिए क्या
1: मैम
0: हम दोषी हैं कहीं ना कहीं?
1: जी जी जी
0: कैसे बताएं?
1: हम दोषी हैं क्योंकि हम प्रदूषण फैलाते हैं,
0: है ना। बहुत सारी चीजें हम ऐसे भी उपयोग करते हैं, जैसे कि प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक के बॉटल, इसके अलावा हम अपनी जो बहुत सारी गाड़ियां भी आजकल चल रही हैं, और
1: कचरे की गाड़ी,
0: बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि जैसे कि एक कार है या एक बाइक है, उसमें हम एक ही व्यक्ति जा रहे हैं, हो सकता दो भी जा सके, है ना। कार में तीन लोग चार लोग भी जाके जा सकते हैं अपने निश्चित स्थान पर, तो इससे क्या होगा कि पेट्रोल की बचत भी होगी और साथ ही साथ जो धुआं हो रहा है, प्रदूषण है, वो भी कम होगा। क्या सोचते हैं आप?
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: कुछ ऐसी चीजें हमें अपनानी पड़ेंगी कि हम अपनी बिजली, अपनी ऊर्जा की बचत करें।
1: जी हाँ।
0: और क्या कर सकते हैं हम बताएं? आप पर्यावरण को अच्छा बनाने के लिए, संरक्षित करने के लिए और क्या कर सकते हैं अपनी तरफ से उपाय?
1: हाँ, कचरे की गाड़ी में कचरा डालें, प्रदूषण ना फैलाएं वाली गाड़ी में।
0: और दूसरी बात, हम ये चाहेंगे कि हम अपने आसपास हरियाली और स्वच्छता भी रखें।
1: जी बिल्कुल दीदी बिल्कुल।
0: तो देखिए, आपने फोन किया, हमारे साथ विचार साझा किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: ये था कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, जिसमें आज हमने अपने सभी श्रोता साथियों से जाने कि पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए हमें कौन कौन सी चीजें अपनानी चाहिए। आपके विचार जानके हमें बहुत अच्छा लगा। तो दीजिए मुझे इजाजत, अपनी रेडियो मित्र श्वेता को नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे। आज के कार्यक्रम की प्रस्तुति थी श्वेता तिजोरिया की। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों के दौरे के तीसरे चरण में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियन पहुंचेंगे, जिसके बाद श्री मोदी शिखर सम्मेलन के कार्यकारी सत्र में भाग लेंगे, जिसका विषय है नई साझेदारी बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनर्निर्माण करना। 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा को लेकर केंद्रीय गृह सचिव ने विद्यार्थियों की सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता के लिए राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश भी राज्य सरकारों को दिए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल राज्य में साइबर सिक्योरिटी रिसर्च सेंटर खोलने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ये रिसर्च सेंटर महू स्थित मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। प्रदेश के समस्त शासकीय विद्यालयों एवं सांदीपनी विद्यालयों में आज से 30 जून तक स्कूल चले हम अभियान के द्वितीय चरण के अंतर्गत शाला प्रारंभ उत्सव आयोजित किया जाएगा, जिसके तहत प्री प्राइमरी से 8वीं तक के समस्त स्कूलों में बाल सभा के आयोजन के साथ ही पहले दिन विशेष भोज का आयोजन होगा। छत्तीसगढ़ में आयोजित 36वीं राष्ट्रीय जूनियर व सब जूनियर कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। चैंपियनशिप में 25 स्वर्ण, 11 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ कुल 39 पदक प्रदेश के खिलाड़ियों ने अर्जित किए और प्रदेश में इस हफ्ते मानसून दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग ने आज के लिए भोपाल, ग्वालियर समेत करीब 30 जिलों में गरज चमक के साथ आंधी और बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। सभी सुनने वालों को साधना जैन का नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? पहला गीत हमने आपके लिए लिया है, फिल्म है एक दूजे के लिए, लता मंगेशकर के साथ SP बालासुब्रमण्यम की आवाज़ है, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और इस सब गीत को पसंद किया है हमारे इन सभी श्रोताओं ने, चिट्ठियां भेजी हैं। बीना जिला सागर से विमल कठरिया, राजमती कठरिया, सलिल सुनीता कठरिया, संजय रत्ना कठरिया, ग्वालियर से स्नेहलता हरिश्चंद, छिंदवाड़ा से अशोक जैन, शोभा जैन, जुमेराती भोपाल से संजय संध्या जैन और सुनील जैन गौतम नगर से। तो आप सभी की पसंद पर हम भेज रहे हैं ये गीत।

0: फरमाइए।
1: आप सुन रहे हैं आपकी फरमाइश आकाशवाणी मध्य प्रदेश से, और मैं हूं आपके साथ साधना जैन। अगला गीत चौदहवीं का चांद, इस फिल्म से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, गीत लिखा है शकील बदायूनी ने, संगीत है रवि का। और इस गीत को बड़ी दूर से हमें चिट्ठियां भेजी हैं अमेरिका के बॉस्टन से डॉक्टर विजय प्रकाश जैन, उनकी मित्रा बिंदु जैन, आपके परिवार से प्रियांक, पुनीता, अंकुर, आर्जव, अनिरुद्ध, जो भारत में अपने भाई और रिश्तेदारों को सुनाना चाहते हैं डॉक्टर विजय प्रकाश जी की ओर से, नागपुर से डॉक्टर विजय जैन, लता व किशोर मोहरिल, हेमंत देश पांडे, मोहन और रमेश बल्लाल को सुनाना चाहते हैं। तो लीजिए डॉक्टर विजय प्रकाश जी अमेरिका में सुनिएगा और नागपुर में अपने दोस्तों को सुनवाइए चौदहवीं का चांद, इस फिल्म का ये

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आपकी फरमाइश साधना के साथ। अगला गीत ड्रीम गर्ल फिल्म से लता मंगेशकर और साथियों की आवाज है। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और इस गीत को पसंद करना चाहा है दिल्ली से बुलबुल आदि आर्यवीर, सपना और परिवार के सदस्य। दिल्ली से ही पंडित अशोक शास्त्री, सोनागिर से शशि श्रेयांश, पप्पू जैन, खंडवा से बबली जैन ने इस गीत को सुनना चाहा। आप सभी की पसंद पर ड्रीम गर्ल फिल्म का ये गीत है।

आप सुन रहे हैं आपकी फरमाइश आकाशवाणी मध्य प्रदेश से, मैं हूं साधना। सरस्वती चंद्र का वो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, मुकेश की आवाज़ में। गीत लिखा है इंदिवर ने, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का, और इस गीत को पसंद किया है दिल्ली से डॉक्टर विजय प्रकाश जैन, इंदौर से साइकिल वाले परिवार में चंदा जैन, सुशीला जैन, अरविंद उषा सिंघई, महेंद्र सिंघई, जितेंद्र भारती सिंघई और राजेश जैन, रजनीश जैन, रत्नेश जैन, निशांत, आशीष जैन, अंकेश जैन, मोहित, जानू जैन। और इसी गीत को सुनना चाहा है इंदौर से ही विंजल, सुरभि, सिद्धि, सुनीता, रचना, प्रीति, रेशु और सारिका ने। इसी गीत को सुनना चाहा है शशि जैन ने पालीताना से। तो आप सभी की पसंद पर भेज रहे हैं सरस्वती चंद्र का ये गीत है।

और लीजिए अब आपको सुनवा रहे हैं तीसरी कसम फिल्म में मुकेश को। हसरत जयपुरी ने संगीत लिखा है और शंकर जयकिशन ने हसरत जयपुरी ने इसका गीत लिखा है और संगीत से सवारा है शंकर जयकिशन ने। और आप सभी ने इस गीत को पसंद किया है। दिल्ली से बिंदु, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झाविंद्र कुमार वर्मा, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर ने इस गीत को पसंद किया है। साथ ही रियांश ठाकुर भी हैं। तो आप सभी सुनिएगा अपनी पसंद का ये गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आपकी फरमाइश, और आपकी फरमाइश का अंतिम गीत उपकार फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज है। गीत लिखा है गुलशन बाबरा ने, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का, और इस गीत को पसंद किया है जबलपुर से पातली वाले रुचिर, शिखा, ओमी और कामनी जैन ने। इसी गीत को पसंद किया है नवीन, निश्चल, अक्षत, साहिल, मनु जैन, नेहा जैन, सौम्या जैन, जूही, श्रुति, जैनिशा जैन, बीना से। तो आप सभी की पसंद पर भेज रहे हैं हम उपकार फिल्म का अंतिम गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे आपकी फरमाइशों में थी आपके साथ साधना जैन। इसी गीत के साथ संपन्न होती है आज के फरमाइश की ये यात्रा। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। अगला प्रसारण अंतराल के बाद।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: भारतीय सेना।
1: इस प्रकार यदि किसान भाई इस उन्नत तकनीक को अपनाते हैं तो
2: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 बजे है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इसमें सुनिएगा जंग लगी तलवार का भाग 11।
3: सुप्रसिद्ध लेखिका और उपन्यासकार इंदिरा गोस्वामी का असमिया साहित्य में विशेष स्थान है। प्रस्तुत है इंदिरा गोस्वामी द्वारा लिखित और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित असमिया उपन्यास ममारे धारो तलोवाल पर आधारित धारावाहिक जंग लगी तलवार।

धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता और निर्देशक हैं रेडियम वीडियोमैटिक्स दिल्ली के वेद शर्मा। रेडियो रूपांतर किया है राजीव और सुधांशु ने। अब तक आपने सुना, नारायणी के पकड़े जाने पर सभी लोग हकीकत जानने के लिए ठाकुर साहब के घर का दरवाजा खटखटाते हैं। ठाकुर उन्हें बताता है कि भूख की मारी नारायणी इतनी रात गए उनसे पैसे मांगने आई थी। यशवंत नारायणी की ओर से बलबीर स्वामी से माफी मांगता है और नारायणी को घर छोड़ने जाता है। कंपनी अपना घाटा पूरा करने के लिए अपनी शर्तों पर बाहर से नए मजदूरों को बुलाती है। शांत पड़ी मशीनों का शोर फिर से शुरू हो जाता है। ये देखकर हड़ताली मजदूरों के सीने पर सांप लौटने लगता है। यूनियन के नेता शास्त्री जी से मिलने जाते हैं। शास्त्री से उन्हें पता चलता है कि लेबर इंस्पेक्टर मुंशीगंज के किसानों को मजदूरों को अनाज न देने के लिए भड़का रहा है। फंड का इंतजाम करने के लिए शास्त्री कंपनी के सीमेंट के ट्रक को लूटने की सलाह देता है। उधर कंपनी के दफ्तर के नोटिस बोर्ड पर नया नोटिस लगाया जाता है, जिसमें हड़ताल को अवैध करार देते हुए उच्चतम न्यायालय द्वारा इस बात को मान्यता देने का उल्लेख होता है। नारायणी अपने मुन्ना के साथ तरबूज को खाकर अपनी भूख मिटाना चाहती है, जिसे उसने कटीली झाड़ियों के नीचे छिपा दिया था। साई नदी के तट पर पहुंचने पर नारायणी को बसुमती मिलती है, जो कि तरबूज खा चुकी होती है। बसुमती नारायणी को बताती है कि ठाकुर साहब नपुंसक हैं और उसे उसके चरित्र पर कोई संदेह नहीं है। ये सुनकर नारायणी खुश होती है। अब

0: शास्त्री जी, अगर जल्द ही कुछ न किया गया तो हमारे हित में अच्छा नहीं होगा। मजदूर हमारे खिलाफ भी विद्रोह कर सकते हैं।
1: उन भूखे नंगे मजदूरों की ये मजाल की हमारे खिलाफ विद्रोह करें? क्या वह जानते नहीं कि हम उनके लोकल लीडर हैं?
0: बात को समझने की कोशिश कीजिए शास्त्री जी, ये वही भूखे नंगे मजदूर हैं जिनके बल पर आपका राजनीतिक अस्तित्व टिका हुआ है। अगर ये भड़क गए तो कोई आपको कौड़ियों के भाव भी नहीं पूछेगा।
1: बलबीर, तो फिर हमें क्या करना चाहिए?
0: अरे कोई ऐसा रास्ता निकालिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे।
1: ठीक है ठीक है, मैं कल ही कंपनी के अधिकारियों से मिलता हूँ। हड़ताली मजदूरों का गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा और मेरा राजनीतिक अस्तित्व भी बचा रहेगा। भाई अगली बार विधानसभा का चुनाव जो लड़ना है मुझे, 4000 वोट बहुत मायने रखते हैं बलबीर, बहुत मायने। देखिए ठाकुर साहब, आपकी कंपनी ने अभी अगस्त महीने में ही दिहाड़ी मजदूरों को बर्खास्त करने का नोटिस दिया था, और अब फिर? अरे भाई ये कहां का न्याय है? कुछ तो मजदूरों के हित की सोचिए।
2: देखिए शास्त्री जी, मजदूरों को तभी बर्खास्त किया जाता है जब कंपनी के पास उनके लिए कोई काम नहीं होता, और फिर हड़ताल का इसलिए भी कानूनी तौर पर समर्थन नहीं किया जा सकता क्योंकि सन 75 में हुए समझौते पत्र के अनुसार हड़ताल जायज नहीं है।
1: क्या इस समझौता पत्र पर मजदूर यूनियन की सहमति भी शामिल है ठाकुर साहब?
2: देखिए पिछले दिनों यूनियन और अधिकारियों के बीच एक बैठक हुई थी।
1: ठीक,
2: इस बैठक में प्रोजेक्ट और मजदूरों की छटाई के मुद्दे पर भी बातचीत हुई थी। लेकिन इस बैठक के उद्देश्य लिखित रूप से तैयार करने और हस्ताक्षर करने तक यूनियन के नेता बहाना बनाकर चले गए थे।
1: क्या
2: बाद में हमें खुद सब कुछ तैयार करके अधिकारियों के पास भेजना पड़ा? अब आप देख ही रहे ना कि यूनियन हमें किस तरह निशाना बना रही है।
1: अब हमें क्या पता ठाकुर साहब कि यूनियन कंपनी को किस तरह निशाना बना रही है, आप बताइए।
2: यूनियन हमारी इसी चिट्ठी को निशाना बनाकर भोले भाले मजदूरों को गलत रास्ते पर ले जा रही है। हमेशा अधिकारियों के साथ कुछ बेबुनियाद विषय को लेकर बहस और झगड़ा करती रहती।
1: देखिए देखिए ठाकुर साहब, आप और आपकी कंपनी मजदूर यूनियन पर बेबुनियाद आरोप लगा रही है। अरे आपकी कंपनी मजदूर हितों की भक्षक है जबकि यूनियन रक्षक है। कंपनी हितों को साधने और मजदूरों को शोषण करने बाबत ही आप ऐसा कर रहे हैं, सब जानते हैं।
2: नहीं नहीं शास्त्री जी, हमारे पास अपनी बात के पक्ष में पर्याप्त तर्क हैं।
1: कैसे तर्क?
2: मिसाल के तौर पर मासिक वेतन पाने वाले मजदूरों और रोज की मजदूरी करने

0: वालों की सुरक्षा की मांग की गई है, जबकि सन 75 के समझौते पत्र के अनुसार कंपनी के पास काम न हो तो मासिक वेतन पाने वालों को लंबी छुट्टी पर भेज दिया जाता है और दिहाड़ी मजदूरों को बर्खास्त कर दिया जाता है।
1: इसका मतलब ठाकुर साहब कि कंपनी ये मानती है कि इस समझौता पत्र को नकार कर यूनियन ने कोई गैर कानूनी काम किया है।
0: जी हाँ, इसके अलावा बुजुर्गों का ज्यादा ध्यान रखे जाने की मांग भी बिल्कुल निरर्थक है।
1: अच्छा जी, वो किस मायने में?
0: सन 47 के औद्योगिक विवाद अधिनियम के अनुसार यूनियन के साथ समझौता न होने पर बुजुर्गों को भी निकाला जा सकता है। इस बारे में कंपनी के पास सन 75 में बनाया गया कानूनी रजिस्टर्ड एग्रीमेंट भी है।
1: तो आप मुझे कानूनी एग्रीमेंट का डर दिखा रहे हैं ठाकुर साहब? मैं भी लीगल फाइट करवा सकता हूँ, लीगल फाइट। अरे आपने यूनियन को समझ क्या रखा है?
0: कैश में ना आइए शास्त्री जी, सन 75 के ही राजीनामे के अनुसार कंपनी के लिए महत्वपूर्ण काम करने वाले मजदूरों को तुरंत नए विभाग में काम मिल सकता है, लेकिन उनका वेतन और अन्य सुविधाएं स्थानीय परिस्थितियों पर ही निर्भर रहेंगी। कंपनी इससे अधिक कुछ नहीं कर सकती।
1: क्या कहा आपने? क्या कहा? कंपनी इससे अधिक कुछ नहीं कर सकती?
0: जी हाँ,
1: जिला और केंद्र ने जो कानून बनाए हैं, क्या उन कानूनों का कंपनी पालन करती है? कंपनी को दिहाड़ी मजदूरों और मासिक वेतन पाने वाले मजदूरों की कोई चिंता है या नहीं?
0: आप तो खामखा भड़क रहे हैं शास्त्री जी।
1: अरे मैं भड़कू नहीं तो और क्या करूं? हाथ पर हाथ धरे तुम्हारी सारी जायज नाजायज बातों को मानता रहूं।
0: देखिए शास्त्री जी, माना कि आप रायबरेली के लोकल लीडर हैं, आपका मान सम्मान और दबदबा है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि आप गलत को भी सही ठहराने की कोशिश करें।
1: ऐसा मैंने क्या कह दिया?
0: अभी तक तो नहीं किया, पर कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कंपनी बर्खास्त मजदूरों को जिला और केंद्र के कानून के अनुसार पैसा देती रहती है। नियम अनुसार उन्हें दूसरी जगह काम पर भेजते समय रेल और बस का किराया भी मिलता है। हमारा पूरा प्रयास रहता है कि बर्खास्त मजदूरों को जल्दी से जल्दी दूसरी जगह काम पर भेजा जाए।
1: वाह वाह वाह वाह, क्या बात कही है ठाकुर साहब! क्या सबूत है आपके पास ठाकुर साहब?
0: अच्छा अच्छा, आप सबूत की बात करते हैं
1: जी,
0: तो ठीक है सुनिए। पुराने दिहाड़ी मजदूरों को माधोपुर कंपनी का काम खत्म होने के बाद बर्खास्त किया गया था
1: जी,
0: लेकिन वो मजदूर अब अलग अलग विभागों में काम कर रहे हैं। इन लोगों को काम छूटने पर वेतन के अलावा 300 रुपए अलग से दिया जाएगा।
1: बड़ा एहसान करेंगे यहाँ, बड़ा एहसान करेंगे ठाकुर साहब। सारी जिंदगी आधी पगार देकर काम लेने वाली कंपनी 300 रुपल्ली पकड़ाकर मजदूरों का भला करने चली है। वाह!
0: देखिए शास्त्री जी, कंपनी दूसरी कंपनियों की अपेक्षा मजदूरों को सबसे अधिक वेतन देती है, फिर दूसरी कंपनियों में भी तो मजदूरों को बर्खास्त किया जाता है। कंपनी हमेशा बर्खास्त मजदूरों को नए विभाग में बहाल करती आई है।
1: ठाकुर साहब, क्या आप बता सकते हैं कि बर्खास्त कितने मजदूर होते हैं और बहाल कितने होते हैं? ब्यौरा तो होगा आपके पास?
0: देखिए, ये कंपनी का निजी मामला है, बाहरी लोगों के सामने इन बातों का खुलासा नहीं किया जा सकता।
1: अरे क्या करेंगे खुलासा आप? क्या खुलासा करेंगे आप? मुझसे सुनिए आप, बर्खास्त होते हैं 1000 मजदूर तो बहाल होते हैं सिर्फ 100-200 मजदूर, और वो भी सिर्फ कंपनी के चहेते। क्यों, ठीक कह रहा हूं मैं?
0: देखिए, मैं आपसे अधिक बहस नहीं करना चाहता। आपकी जानकारी के लिए सिर्फ इतना बता देना चाहता हूं कि कंपनी ने पुराने मजदूरों के प्रति हमेशा सहानुभूति दिखाई है। जिन मजदूरों ने 20 साल से अधिक कंपनी के लिए काम किया है, उन्हें स्वैच्छिक अवकाश की सुविधा दी गई है। ऐसे मजदूरों को ग्रेच्युटी स्कीम की सुविधा भी दी जाती है।
1: चलिए ठाकुर साहब, हम आपकी ये बात भी मान लेते हैं, लेकिन ये तो बताइए कि यूनियन की डीए बंटवाने की मांग पर आपका क्या नजरिया है?
0: हाँ ठीक है, यूनियन की इस मांग से कंपनी किसी हद तक इत्तेफाक रखती है, लेकिन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 3 महीने के बाद ही मिल पाएगा, तभी इस पर अमल हो सकता है। इसीलिए यूनियन की ये मांग भी निरर्थक।
1: और बोनस मजदूरों को कब दिया जाएगा, ये बता सकते हैं आप?
0: देखिए, कंपनी ने मजदूरों को पहले ही बता दिया है कि सन 76-77 का बोनस सन 78 के मार्च महीने के बाद ही दिया जाएगा, क्योंकि तभी इसके नफा नुकसान का हिसाब तैयार किया जाएगा।
1: वाह वाह ठाकुर साहब, बहाना बनाकर टालने में बहुत पारंगत हो गए हैं आप, लेकिन मेरा नाम भी शास्त्री है ठाकुर साहब, शास्त्री। अब आप ग्रेच्युटी की मांग को भी किसी बहाने से खारिज कर देंगे, क्यों?
0: देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 20 साल से कंपनी की सेवा करने वाले खास मजदूरों को ही यह सुविधा दी जाती है।
1: मैं कंपनी के खास मजदूरों? नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं,
2: मजदूरों ने।

0: खास चमचों या 20 साल पुराने मजदूरों की बात नहीं कर रहा हूं ठाकुर साहब, मैं बाकी के उन मजदूरों की बात कर रहा हूं जिन पर कंपनी की टेढ़ी नजर है।
1: देखिए देखिए, आप सरकारी कर्मचारियों के लिए बने ग्रेच्युटी एक्ट की बात कर रहे हैं, ये एक्ट कंपनियों पर लागू नहीं होता।
0: हाँ ठाकुर साहब, हमने तो सोचा था कि हम बातचीत के जरिए किसी सार्थक निर्णय पर पहुंच सकेंगे, लेकिन ठाकुर साहब आपकी लफाजी की वजह से बात बन नहीं सकी। चलते चलते आपको एक बात बता दूं ठाकुर साहब,
1: क्या?
0: भले ही मजदूरों को शहीद होना पड़े, भले ही साई नदी में पानी की जगह रक्त का उफान बहे, लेकिन हड़ताल हड़ताल जारी रहेगी ठाकुर साहब, याद रखिएगा, हड़ताल जारी रहेगी।
1: क्या?

0: ए बाबू, ए बाबू, कुछ खाने को देना, बहुत भूख लगी है।
1: अरे
0: कुछ खाने को।
1: कौन है तू? कहाँ से आई है?
0: मैं दलितों की बैरक में रहती हूँ बाबू, कुछ खाने को देना, पिछले एक हफ्ते से कुछ नहीं खाया है।
1: अच्छा, तो तू यूनियन के साथ है?
0: बातें ना बना बाबू, रोटी का कोई टुकड़ा है तो देना, भूख लगी है।
1: अरे अरे अरे, तू जवान है, खूबसूरत है, अरे तू भूखी क्यों मरती है? अरे मुझसे क्या है ना, मैं तुझे यहाँ से दूर ले चलूंगा। हाँ सच, मेरे साथ रहेगी तो फिर कभी भूखी नहीं रहेगी।
0: सच सच बाबू, तू मुझे रोज खाना खिलाएगा?
1: हाँ, मैं सच कहता हूँ, खाना भी खिलाऊंगा और पहनने के लिए नए नए कपड़े भी दूंगा।
0: सच बाबू, तू कितना अच्छा है। मेरा बाबू और दादी ना तो मुझे खाने को देते हैं, ना ही नए कपड़े दिलवाते हैं।
1: ओह, तभी तो तेरा चेहरा कुमला गया है। देख तो, इस जवानी में तेरा रंग कैसा काला हो गया है। अच्छा अच्छा, ये ले, 5 रुपए ले ले ले ले। अरे रख ले ना, कहीं से कुछ खरीद कर खा ले।
0: बाबू बाबू, तेरा ही एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं भूलूंगी।
1: अरे अरे सुन, अपना नाम तो बता दे।
0: मेरा नाम पार्वती है बाबू।
1: हाँ तो पार्वती, कल शाम को स्टेशन पर मिलियो। हाँ, मैं तेरा इंतजार करूंगा, आई ना।
0: अच्छा, आऊंगी बाबू, आऊंगी।
1: ठीक है,
0: जरूर आऊंगी।
1: ठीक है पार्वती।

0: नारायणी
1: आओ काकी।
0: हाँ भगवान तेरा भला करे नारायणी, जो तू हमको मिल गई। अच्छा पहले ये बता कि तेरा मर्द कैसा है?
1: कैसे होंगे काकी, मौत की राह देख रहे हैं।
0: चुप करनी गोड़ी, हैं क्या अनाप शनाप बक रही है?
1: तुम बताओ काकी, तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी?
0: अरे हाँ, तुझे एक बात बतानी थी।
1: कौन सी बात?
0: होशियार रहे नारायणी, होशियार। तुझे नहीं मालूम कैसे भयानक दिनों का सामना करना पड़ सकता है?
1: भयानक दिन? मैं कुछ समझी नहीं काकी।
0: अरे हम मुंशीगंज में काम के लिए गए थे। हम बीमार लोगों के कपड़े धो सकते हैं, यहाँ तक कि 5 महीने का गर्भ।
1: राम राम राम राम राम राम राम। क्या हुआ काकी? क्या कहीं काम नहीं मिला?
0: अरे वो काम की क्या कहूँ, बस पीने का पानी मांगा तो गाली दे दी, कुत्ते पीछे छोड़ दिए।
1: देख नारायणी, तेरी गोद में एक नन्ना बच्चा है, जब छटनी होगी तो जेठ महीने की लू में तू राय बरेली की सड़क पर बच्चे को लेकर कहाँ कहाँ फिरेगी। और फिर तेरा वो बीमार मरद, उसको भी घसीटना पड़ेगा, तो क्या करेगी तू?
0: अरे हम तो जानते थे एक भी पैसा न बचा होगा।
1: तू नहीं जानती नारायणी, वो दोनों शैतान झूठी गवाही देने के लिए बदनाम हो चुके हैं। हाँ
0: अच्छा चल छोड़ उन दोनों को।

0: अपने मतलब की बात सुन।
1: हाँ सुन ही तो रही हूँ तुम्हारी बात।
0: सुनने में आया है कि रायबरेली शहर में कोई कोई लाडी कारपेट और कास आयरन कंपनी आई है। कंपनी वाले जगदीशपुर में कैंप बना कर रहेंगे।
2: अरे तुझे वहाँ सफाई का काम मिल जाएगा।
1: अच्छा तुम्हें कैसे पता काकी?
0: यूनियन का एक आदमी मिला था हमको। वो कह रहा था कि पक्का मकान बनने तक अफसर लोग तंबू में ही रहेंगे।
1: लेकिन काकी कोई हमें काम क्यों देगा? हमें तो कोई जानता तक नहीं है।
0: अरे भगवान से दुआ कर सब ठीक हो जाएगा। तो दुआ कर।

0: अरे अरे उधर देख, मदन भैया उधर देख, एक रोटी के लिए चार कुत्ते आपस में किस तरह लड़ रहे हैं।
1: रोटी? हाँ, रोटी ही तो है वो। बामो भैया, क्यों ना मैं कुत्तों से रोटी छीन लूं।
0: अब मरना है क्या? देखा नहीं कितने खतरनाक कुत्ते हैं, काट लिया तो पेट में ये बड़ी बड़ी सुइयां लगानी पड़ेंगी।
1: सुइयां तो तब लगेगी ना जब मैं जिंदा रहूंगा, भूख से तो वैसे ही एक दो दिन में मर जाऊंगा बाबू भैया। हतमरा तो मैं पहले ही हो रहा हूँ, कब कश खाकर गिर पड़ूं पता नहीं।
0: अरे ना बाबा ना, मेरे बस की बात नहीं है, मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है।
1: तो ठीक है, तुम यही खड़े रहो। हाँ, मैं कुत्ते के मुंह से रोटी छीन कर लाता हूँ।
0: भूखे कुत्तों के मुंह से भला आज तक कोई रोटी छीन सका?
1: कुत्ते ही तो है ना, शेर तो नहीं। फिर भूखा इंसान तो शेर के मुंह का शिकार छीन लाता है। मैं तो चलता हूँ।
0: अरे अरे, अरे सुन तो, मदन मदन, अरे कहाँ जा रहा? कुत्ते ले आओ, अरे इधर आ जा,
1: बोल दे तो कुत्ते। अरे मुझे

तूने उसे जान से मार डाला। अरे अरे अरे ये कुत्ते तो भाग गए रोटी भी ले गए। इसको जाकर देखता हूँ। मदन, अरे हाँ मदन, मदन, अरे ये हिल डुल क्यों नहीं रहा? मदन मदन थोड़ा मदन, अरे अरे इसकी तो सांस ही बंद हो गई है। मार डाला, अरे अरे मार डाला, मार डाला, अब कुत्ते मार डाला ये, अरे

0: बाबू अरे कहाँ भागा जा रहा है बाबू, अरे बाबू रुक तो, अरे बता के जा कि किसने किसको मार डाला।
1: कुत्तों ने मदन को मार डाला, कुत्तों से रोटी छीनने वाले मदन को मार डाला।
0: कुत्तों के मुंह से रोटी।

से ठाकुर साहब की घर वाली घटना घटी है, तब से यशवंत बाबू मुझसे मिलने नहीं आए। पहले तो इनका हाल चाल पूछने आ जाया करते थे, अब वो भी नहीं। शायद मैं उनकी नजरों में गिर गई हूं, उन्हें मेरे चरित्रहीन होने का विश्वास हो गया है। हो भी क्यों ना, परिस्थितियां ही ऐसी थी, उस पर मेरी चुप्पी भी कांटा बनकर

0: मुझे क्या हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, एक सुहागन को पर पुरुष के विषय में सोचने का कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं है।
1: नारायणी, हरिओम नारायणी।
0: कौन तुम?
1: हाँ मैं कालू राम, यूनियन का सचिव।
0: तुम मेरे पास क्यों आए हो?
1: मैं अरे मुझसे तुम्हारी दुर्दशा देखी नहीं जाती। ये दूध मुहा बच्चा, बीमार पति और उस पर तेरी गरीबी, हाय हाय हाय। हरि नारायणी, मैं तो तेरी मदद करना चाहता हूँ। मदद?
0: कैसी मदद कालूराम?
1: अरे क्या बसुमती ने नहीं बताया, लूडी कारपेट कंपनी के अफसर मुंशीगंज में ही रहेंगे। हाँ, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के माध्यम से सफाई वालों की नियुक्ति होने में तो भी बहुत समय लगेगा। हाँ, अगर तब तक तुम चाहो।
0: बसुमती काकी ने मुझे बताया तो था।
1: नारायणी, आजकल तू ठाकुर साहब के यहाँ कपड़े धोने नहीं जा रही है? क्यों क्यों नहीं जा रही?
0: वैसे ही।
1: सुन नारायणी, ठाकुर साहब आजकल बीमार हैं, कुछ दिन के लिए कारपेट कंपनी के तंबू में आकर रहेंगे। हाँ, अगर तू चाहे तो उसकी सेवा में आ सकती है। हाँ, हाँ, समझ रही है ना तू?
0: ठाकुर साहब कारपेट कंपनी वालों के तंबू में क्यों रहेंगे वो?
1: अरे नारायणी, तू नहीं जानती, कारपेट कंपनी के साहब के साथ ठाकुर साहब की दोस्ती है। बहुत ही गहरी दोस्ती। इलाज करवाने के लिए ठाकुर साहब ने वहां रहने का मन बनाया है। अगर तू चाहे तो दो दिन बाद चुपचाप पुरानी सड़क से आकर अपना काम शुरू कर दे। हाँ, हाँ।
0: लेकिन वो यूनियन के आदमियों ने देखा और मारपीट की तो?
1: अरे नहीं नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। कोई डर नहीं। हाँ, हाँ। वो क्या है, कारपेट कंपनी के दरवाजे पर दो बंदूकधारियों का पहरा रहेगा। बोल है? क्या कहती है? अरे बोल ना नारायणी, बता मैं ठाकुर साहब को क्या जवाब दूं? बोल बोल बोल बोल बोल।
0: कालूराम, पहले तुम मुझे ये बताओ कि यूनियन के सचिव होकर तुम ठाकुर साहब का साथ क्यों दे रहे हो?
1: हरि नारायण, छोड़ इस बात को, ये अंदर की बात है। हाँ, अंदर की बात, तू अपनी बात बता। ठाकुर साहब ने विशेष रूप से मुझे तुम्हारे पास भेजा है।
0: मुझे सोचने के लिए समय चाहिए।
1: समय चाहिए? ठीक है, तो मैं दो दिन बाद फिर आऊंगा।
0: नहीं नहीं, तुम मत आना, मैं खुद आऊंगी।
1: खुद आएगी?
0: हाँ,
1: ठीक है। तो ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है?
0: हाँ ठीक है।
1: अच्छा।
2: Thank you.

0: छिपाई क्यों बैठा? अब चल जलूस में हमारे साथ चल।
1: नहीं जाना मुझे जुलूस में, नहीं शामिल होना है सरकार में। मुझे मेरी हालत पर अकेला छोड़ दो।
0: तू रो रहा है भृगु? अरे क्या हुआ तुझे? देख भृगु, मैं तेरे भाई जैसा हूँ, मुझे बता क्या बात है।
1: मैं बर्बाद हो गया यशवंत, मैं बर्बाद हो गया।
0: क्या?
1: मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। मैं कहीं का नहीं रहा यशवंत, कहीं का नहीं रहा।
0: भृगु देख तू रो मत, चुप हो जा। जो भी बात है मैं तेरे भाई जैसा हूँ, तू मुझे साफ साफ बता।
1: पार्वती?
0: हाँ हाँ, क्या हुआ पार्वती को?
1: पार्वती मेरे मुंह पर काली पोत कर भाग गई।
0: क्या?

कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक जंग लगी तलवार की 11वीं कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए पेश हैं इस घंटे की खास खबरें।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 से 22 जून तक मध्य प्रदेश के प्रवास पर रहेंगी। इस दौरान वे इंदौर, बैतूल, ओमकारेश्वर, जबलपुर, ग्वालियर और कुनो अभयारण्य जाएंगी। प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो सकता है। करीब 15 दिन तक चलने वाले इस सत्र में सदन की 10 से 12 बैठकें प्रस्तावित हैं। विधानसभा सचिवालय ने सत्र बुलाने का प्रस्ताव राज्यपाल को भेज दिया है। 21 जून को निर्धारित राष्ट्रीय प्रवेश और पात्रता परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को देखते हुए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान और नौवे महासचिव एंटोनियो गुतरस का कार्यकाल इस साल के अंत में समाप्त हो जाएगा। अगले वर्ष 1 जनवरी को नए संयुक्त राष्ट्र महासचिव अपना पदभार ग्रहण करेंगे। नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण कार्यक्रम में संशोधन किया गया है। अब दावे आपत्ति 25 जून तक लिए जाएंगे और इनका निराकरण 2 जुलाई तक किया जाएगा। फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 27 जुलाई को किया जाएगा। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ाए गए दान और कीमती सामान के दुरुपयोग के आरोप में राज्य सरकार ने एसआईटी गठित की है। साथ ही 7 दिनों में प्रारंभिक और 15 दिनों में अंतिम रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। और महिला हॉकी में भारत ने न्यूजीलैंड में आयोजित एफआईएच हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। बृहस्पतिवार को भारत का अगला मुकाबला उरुग्वे से होगा। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर केंद्र की है।

स्वागत है आप सभी प्यारी प्यारी सखियों का आपके अपने मन पसंद कार्यक्रम महिला सभा में। आज आपके साथ हूँ मैं दीपलक्ष्मी त्रिपाठी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत महंगा सौदा करती है ये जिंदगी, बहुत महंगा सौदा करती है ये जिंदगी। एक नौकरी के चक्कर में गांव, घर, माँ बाप, भाई बहन, दोस्त सबको छोड़ना पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है सखियों, घर चलाने के लिए दूर शहर या विदेश में काम करने वाला इंसान सिर्फ पैसा नहीं भेजता, वो अपनी खुशियां, आराम और परिवार के लिए सपने भी भेजता है। घर से दूर रहना कोई शौक नहीं, बल्कि अक्सर एक मजबूरी या

बेहतर भविष्य की तलाश होती है, चाहे वह देश के भीतर किसी दूसरे शहर में रहने वाले लोग हों या सात समंदर पार विदेशों में बसे प्रवासी। अपने माता पिता, जीवन साथी और बच्चों से दूर रहने का दर्द वही समझ सकते हैं जो इसे जीते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस इसी संघर्ष को सम्मान देने का माध्यम है। जी हाँ सखियों, हर साल 16 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस, जो अपने घर परिवार से दूर रहकर काम करने वाले प्रवासियों के त्याग और उनके द्वारा भेजे जाने वाले धन के महत्व को समर्पित है। कई माता पिता बच्चों की पढ़ाई इसी पैसे से करवाते हैं, घर का खर्च चलता है, इलाज होता है और सपनों को सहारा मिलता है। लेकिन इस पैसे के पीछे एक अलग कहानी भी होती है, परिवार से दूरी, त्योहारों में अकेलापन और लगातार मेहनत। फिर भी लोग मुस्कुराकर काम करते हैं ताकि उनके अपने खुश रह सकें। हर भेजा गया रुपया सिर्फ कमाई नहीं, परिवार के लिए प्यार और जिम्मेदारी की पहचान होता है। दूरी चाहे कितनी भी हो, परिवार के लिए किया गया प्रयास दिलों को जोड़े रखता है। एक प्रवासी का जीवन बाहर से जितना चकाचौंध भरा दिखता है, भीतर से वह उतना ही एकाकी और संघर्षपूर्ण होता है। त्योहारों, शादियों या किसी बीमारी के समय घर से दूर रहने की टीस सबसे ज्यादा महसूस होती है। अपनों के बिना हर उत्सव अधूरा सा लगता है।

0: आपका बिजनेस करने का सपना है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल पैसा और लोन का है, तो यह जानकारी आप सभी महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। आज बात करेंगे प्रधानमंत्री योजना स्टैंड अप इंडिया मिशन की। हमारी कई सखियां हैं जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहती हैं, लेकिन कैपिटल और फाइनेंशियल सपोर्ट की कमी उनके कदम रोक देती है। तो इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने स्टैंड अप इंडिया मिशन शुरू किया। इस योजना का उद्देश्य है महिलाओं को स्वरोजगार और बिजनेस शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना। इस मिशन के तहत बैंक लोन की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। यह लोन मुख्य रूप से मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, ट्रेडिंग बिजनेस जैसी क्षेत्रों में नया उद्योग शुरू करने के लिए दिया जाता है। योजना का मकसद सिर्फ लोन देना नहीं, बल्कि लोगों को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनने के लिए प्रेरित करना भी है। अगर कोई महिला अपना बुटीक, फूड बिजनेस, हैंडीक्राफ्ट या ब्यूटी पार्लर या सलून या कोई उद्योग शुरू करना चाहती है, तो यह योजना उसके लिए मददगार हो सकती है। आवेदन के लिए पात्रता और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी बैंक या आधिकारिक पोर्टल से ली जा सकती है। याद रखिए, कई बड़े बिजनेस भी एक छोटे कदम और सही अवसर से शुरू हुए थे। और अगर आप कभी बिजनेस शुरू करने का सपना है, तो योजनाओं की जानकारी जरूर लें और आगे बढ़ें। याद रखिए, सपनों की उड़ान तभी मिलती है जब हौसलों के साथ सही जानकारी भी हो। और हाँ, उड़ान से याद आया कि अब वक्त है मेरी उड़ान क्रम का, तो सुनते हैं मेरी उड़ान। सखियों, योगा के प्रति पूरी दुनिया में लोगों की जागरूकता बढ़ी है। आज के समय में खुद को सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ रखने के लिए लोग योगा का सहारा ले रहे हैं। शायद इसीलिए योगा के क्षेत्र में बहुत ही सुनहरा अवसर है आप सभी महिलाओं के लिए। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर माया खिलावदिया, जो कि एक योगा टीचर, योगा इंस्ट्रक्टर हैं। माया जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
0: माया जी, हमारी सखियों को आप बताइए कुछ अपने बारे में।
1: मेरा नाम डॉक्टर माया खिलावदिया है। मैं अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज में योग डिपार्टमेंट में पढ़ाती हूँ 4 वर्षों से। मेरा पर्सनल योगा सेंटर है, पर्सनल होम विजिट भी लेती हूँ, एक योगा थेरेपिस्ट हूँ।
0: तो मैम, आप कितने साल से इस प्रोफेशन में हैं?
1: वैसे तो मैं 2009 से सबसे पहली बार योग को मैंने जाना कि योग क्या है, उसके बाद से लगातार आज तक योग के पद पर कार्य कर रही हूँ। जब मैंने योग को समझा कि योग क्या है, योग मुझे ऐसा लगता था सिर्फ आसन वगैरह ही, पर श्वास पर ध्यान लगाकर करा तो मैंने अपने अंदर के हार्ट बीट को सुना, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, ये इंटरनल जो शांति प्रदान करने वाली जो सुख की अनुभूति होती है, योग कर अनुभव किया।
0: मैम, इतने टाइम से आप योग सिखा रही हैं लोगों को, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका अभी तक का?
1: कई अलग अलग पेशेंट आए, कई स्वस्थ व्यक्ति आए, कई अस्वस्थ व्यक्ति आए। ये चेक करा कि इस संसार में पूर्ण रूप से कोई स्वस्थ नहीं। आजकल वैसे देखा जाए लैपटॉप और मोबाइल की वजह से सर्वाइकल ज्यादा हो रहा है। आजकल की जो लाइफ स्टाइल है, हम ज्यादा से ज्यादा जल्दी उठे कि, पर क्या हो रहा है, जल्दी कोई भी नहीं उठना चाहता है। जो ज्यादा बिजी है वो तो यही कर रहा है कि समय के आधे घंटे पूरे होकर फटाफट तैयार होके अपने जॉब पे जाना चाहता है। तो उससे भी मेंटल हेल्थ पे आपको इफेक्ट पड़ेगा, आप अस्वस्थ रहेंगे। आप जितना थोड़ा जल्दी उठेंगे, आप रिलैक्स होकर हर कार्य को करेंगे, तो आप ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ रहेंगे।

0: मैम, हम सभी जानते ही हैं कि योगा हमें इंटरनली, मतलब अंदर से कहीं ना कहीं स्ट्रांग बनाता है। बहुत सी हमारी महिलाएं हैं जो अपना वेट लॉस करने के लिए जिम भी जाती हैं, वर्कआउट करती हैं, तो योगा इस में क्या हेल्प कर सकता है? मतलब योगा से आंतरिक जो शक्ति वो तो मिलती है, बाहरी तौर पर योगा किस तरीके से काम करता है?
1: जब हम योग को करते हैं तो आप एक मान लिया कि आप जिम जाए, आपको जिम कैसा फायदा करेगा? सिर्फ शारीरिक रूप से ज्यादा फायदा करेगा, आपको मेंटली इतना फायदा नहीं करेगा। आप योग करते हैं शारीरिक रूप से फायदा करने के अलावा मानसिक रूप से ज्यादा फायदा करेगा। क्यों करेगा? जब योग आसन करते हैं तो हमें कष्ट नहीं होता है। हमारे पतंजलि ने कहा है कि आपको जब भी कोई आसन करना है तो स्थिर सूक्ष्मासन के रूप में करना है, मतलब स्थिर अवस्था में आपको करना है कि आपको
0: जी
1: कोई भी आप आसन कर रहे हैं तो कष्ट न हो, जिसमें
0: जी
1: आपको सुख की अनुभूति हो रही है वह आसन आप करें।
0: किस तरह के आपके पास क्लाइंट आते हैं?
1: स्वस्थ व्यक्ति भी आते हैं, अस्वस्थ व्यक्ति भी आते हैं वेट कम करने के लिए, पर हम स्वस्थ व्यक्ति को ज्यादा अच्छे से रिजल्ट दे पाते हैं क्योंकि वो ज्यादा अच्छे से आसन कर लेंगे, क्योंकि उनको हर टाइप का हम आसन करवा सकते हैं।
0: जी
1: और
0: जी
1: अस्वस्थ व्यक्ति को सावधानी पूर्वक आसन करवाने पड़ेंगे,
0: जी
1: क्योंकि
0: जी
1: कुछ आसन ऐसे रहते हैं, मान लिया कि सर्वाइकल है तो गर्दन नहीं झुकाना है, तो फिर कुछ आसन ऐसे रहते आप सूर्य नमस्कार ही करना है मान लीजिए, तब उसमें तो बहुत सारे पोस्चर ऐसे कि आपको गर्दन नीचे करना ही पड़ेगी। तो हमें बस थोड़ा सा यह ध्यान में रखना पड़ता है कि आपके पास जो भी व्यक्ति आ रहा है इस बीमारी का, तो उसको कौन से आसन करवाना है और कौन से आसन नहीं करवाना है।
0: मतलब बहुत ही सावधानी पूर्वक करवाना पड़ता है। तो कहाँ से कैसे सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह कुछ होते होंगे? क्या इनिशियल लेवल पे क्या करना चाहिए?
1: सर्टिफिकेट कोर्स तो वैसे कई संस्थाएं करा रही है, स्कूल कॉलेज वगैरह कई जगहों पे सर्टिफिकेट कोर्स होता है। आपको सिर्फ नॉलेज बढ़ाना है तो आप सर्टिफिकेट कोर्स करें, और आपको अगर कहीं किसी पोस्ट पर जैसे स्कूल में जॉब करना है, कॉलेज में जॉब करना है, तो उसके लिए आपको डिग्री करना पड़ेगी, जैसे डिप्लोमा है, मास्टर डिग्री है।
0: तो ये कितने साल के कोर्सेज होते हैं?
1: डिप्लोमा 1 साल का होता है,
0: अच्छा
1: मास्टर डिग्री आपकी 2 साल की होती है सेमेस्टर के अकॉर्डिंग।
0: अच्छा मैम, एक चीज मैं और जानना चाहूंगी कि लगभग कितना इन्वेस्टमेंट होता है जब भी हम कोई क्लासेस शुरू करते हैं या सेंटर स्टार्ट करते हैं? इनिशियल लेवल पे कितना इन्वेस्टमेंट होता है?
1: यदि आप योग का सेंटर खोलना चाहते हैं तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले आपके स्वयं की प्लेस हो तो ज्यादा अच्छा हो, क्योंकि तो आपको रेंट नहीं लगेगा, और प्लेस भी ऐसी होनी चाहिए जहाँ खिड़की हो, कमरे हो, जहाँ से हवा अच्छे से आ रही है, ऐसी प्लेस होना चाहिए योगा के लिए। मौसम के अकॉर्डिंग आप टेरेस पे भी शुरू कर सकते हैं, गार्डन में भी कर सकते हैं।
0: मैम, काफी सारी चीजें हमने आपसे जानी कि योगा को एज अ प्रोफेशन हम कैसे कर सकते हैं, और हम अपने घर से ही टेरिस से शुरुआत कर सकते हैं या किसी गार्डन से शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कोई महिला अगर घर के बाहर नहीं जा सकती तो ऑनलाइन भी क्लासेस ले सकती हैं।
1: महिलाओं के लिए बेस्ट ऑप्शन है कि वह घर बैठे भी यह विधा को सिखा सकती है।
0: जी, आखिरी में हमारी सखियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? उनको मोटिवेट करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगी?
1: मैं यही सखियों से कहना चाहूंगी कि वह एक अच्छी योगा टीचर बनकर सबसे पहले तो स्वयं योग करें, क्योंकि तो जब तक हम स्वयं योग नहीं करेंगे, उसको अनुभव नहीं करेंगे, तो हम सामने वालों को कैसे करवाएंगे।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए सबसे पहले स्वयं योग करें, फिर घर में सभी की आदत डालें कि भाई आप भी योग करें, परिवार में योग की आदत डालें, समाज को योग के प्रति जागरूक करें। योग की विधा को अपना कर आप सबसे अच्छा आय का साधन अपना सकती है। हम खुद तो स्वस्थ रहेंगे और सामने वालों को भी करेंगे।
0: बिल्कुल मैम, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके कि योगा एक ऐसी चीज है जिससे हम खुद को स्वस्थ रख ही सकते हैं और साथ में हम दूसरों को भी स्वस्थ बना सकते हैं, और कहीं ना कहीं अपनी आय का जरिया भी इसको बना सकते हैं। हमारी सखियों को इतनी अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए, इतनी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

और सखियों, अब बारी है रूप लावण्य की। आजकल इतनी गर्मी पड़ रही है और गर्मियों में होने वाली टैनिंग को कम करने के लिए महंगे पार्लर ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती। दही, बेसन, टमाटर और शहद, नींबू जैसी किचन की चीजें स्किन को साफ कर सकती हैं और नेचुरल ग्लो देने में भी मदद कर सकती हैं। सही तरीके से नियमित उपयोग करने पर ये घरेलू उपाय स्किन को फ्रेश और चमकदार बना सकते हैं, क्योंकि दही और बेसन त्वचा की देखभाल के लिए लंबे समय तक इस्तेमाल किए जा रहे घरेलू नुस्खों में से है। इन दोनों को मिलाकर चेहरे पर लगाया जाता है तो यह स्किन की टैनिंग साफ करता है और चेहरे पर ग्लो लाता है। वहीं बात करें अगर टमाटर के रस की, तो टमाटर को स्किन के लिए एक नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट की तरह माना गया है। इसमें मौजूद विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा को फ्री रेडिकल्स से बचाने में मदद करते हैं और डलनेस को कम करते हैं। और सखियों, शहद जो कि स्किन को मॉइस्चराइज करता है और उसे सॉफ्ट बनाने में हेल्प करता है, जबकि नींबू में मौजूद प्राकृतिक एसिड त्वचा की सफाई और टोन को सुधारने में सहायक माने जाते हैं। और जब इन दोनों को मिलाकर चेहरे पर लगाया जाता है तो यह डल स्किन को रिफ्रेश करने और हल्की टैनिंग को कम करने में मदद कर सकता है। साथ ही सखियों, स्किन टैनिंग को हटाने के लिए सिर्फ घरेलू उपाय ही नहीं बल्कि रोजमर्रा की स्किन केयर भी उतनी ही जरूरी है। धूप में निकलते समय सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें, पर्याप्त पानी पीना और चेहरे की नियमित सफाई त्वचा की टैनिंग से बचाने में मदद करता है।

खुशबू खफा। क्यों आजकल मार्केट में जाओ तो चारों तरफ आम ही आम दिखाई दे रहा है। आम तो वैसे भी फलों का राजा है और इसको सभी पसंद करते हैं, लेकिन आपको पता ही होगा कि आम से कई सारी स्वादिष्ट और ताजा रेसिपीज बनाई जा सकती हैं। जी हाँ, सबसे लोकप्रिय और झटपट बनने वाली रेसिपी है मैंगो मलाई कुल्फी। आज के फूड जोन क्रम में मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ मैंगो मलाई कुल्फी की रेसिपी। तो इसको बनाने के लिए झटपट से लिख लीजिए सामग्री को। मैंगो मलाई कुल्फी बनाने के लिए आपको चाहिए पके और मीठे आम, जिनको आप बारीक काट लें या फिर प्यूरी बना लें। साथ ही चाहिए फुल क्रीम दूध 1 लीटर, चीनी 4 से 5 बड़े चम्मच, कटे हुए मेवे, काजू, बादाम और पिस्ता, इलायची पाउडर 1/2 छोटा चम्मच। और आप जानते हैं इसको बनाना कैसे है, जो कि बहुत ही आसान है। एक पैन में दूध उबाले और उसे तब तक पकाएं जब तक वह आधा न रह जाए, यानी कि गाढ़ी रबड़ी जैसी कंसिस्टेंसी कर लेनी है। अब इसमें चीनी और इलायची पाउडर डालें, दूध को पूरी तरह ठंडा होने दें और जब ये ठंडा हो जाए तो इसमें आम की प्यूरी, कटे हुए मेवे मिला दें। इस मिक्सचर को कुल्फी मोल्ड्स या छोटी कटोरियों में डालें, ऊपर से थोड़े मेवे डालें और इसे फॉइल पेपर से कवर करके 8-10 घंटे के लिए फ्रीजर में जमने के लिए रख दें। लीजिए, तैयार है मैंगो मलाई कुल्फी। कितनी आसान और इतनी टेस्टी कि बस बच्चे तो खुश ही हो जाएंगे। तो सखियों, आप ट्राई कीजिए ये मैंगो मलाई कुल्फी और मैं सुनवाती हूँ आपको ये प्यारा सा गीत। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, ये बात समझ में आ रही है कि खुशी का मतलब बस एक शांत सुबह, अच्छी हेल्थ, टाइम पर भरे हुए बिल और एक सुरक्षित घर और फालतू झगड़ा ना करने वाले लोग होते हैं। वक्त हो रहा है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। आपको बता दे सकी, इस कार्यक्रम का संयोजन था डॉक्टर प्रीति छड़ीदार का। तो अब दे अनुमति अपनी सखी दीपलक्ष्मी त्रिपाठी को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम, प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर केंद्र की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है एक अंतराल का।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। आज कलाकार हैं मुकेश राठौर और साथी इनके गाए लोकगीत आज आप सुनेंगे। प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर केंद्र की है।

मुकेश राठौर और साथियों के गाए इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज के इस कार्यक्रम की प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर केंद्र की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए सुजाता वैशंपायन की गाए कुछ भजन। आरंभ कर रहे हैं मीरा की इस रचना के साथ। प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर केंद्र की है।

0: कबीर की रचना भी आप सुन रहे थे। इसके साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। आज आप सुन रहे थे सुजाता वैशंपायन के गाए कुछ भजन। प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर केंद्र की थी। अब समय है एक अंतराल का।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये डटे हुए।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

कयामत से कयामत तक फिल्म का ये गीत है। अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़, मजरूर ने गीत लिखा है, आनंद मिलिंद ने धुन बनाई है।

0: अलका याग्निक और उदित नारायण के गाए फिल्म कयामत से कयामत तक के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 से 22 जून तक मध्य प्रदेश के प्रवास पर रहेंगी। इस दौरान वे इंदौर, बैतूल, ओमकारेश्वर, जबलपुर, ग्वालियर और कुनो अभ्यारण्य जाएंगी। वे 20 जून को शाम करीब 6 बजे जबलपुर पहुंचेंगी। इस दौरान वे दो प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल होंगी। श्रीमती मुर्मू 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शहर के गैरिसन ग्राउंड में आयोजित मुख्य योग कार्यक्रम में शामिल होंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज भोपाल में हो रही कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर निर्णय लिया जा सकता है। बैठक में सबसे प्रमुख मुद्दों में स्वास्थ्य अधोसंरचना प्रोत्साहन नीति 2026 को मंजूरी दिए जाने की संभावना है, साथ ही तबादला अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि पिछले दशक में देश भर में बुनियादी ढांचे में सुधार का काम रिकॉर्ड स्तर पर हुआ है। सोशल मीडिया पर MyGov की एक पोस्ट साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए अगली पीढ़ी की अवसंरचना तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। MyGov पोस्ट में पिछले 12 वर्षों में देश के बुनियादी ढांचे में आए बदलावों का उल्लेख किया गया है। इन बदलावों से आवाजाही तेज हुई है, लॉजिस्टिक्स को मजबूती मिली है और विकास के नए मार्ग खुले हैं। पोस्ट में कहा गया है कि बेहतर संपर्क सुविधाओं से दूरियां कम होने के साथ साथ अवसरों में

0: वृद्धि और समृद्ध भारत की नींव मजबूत हुई है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में यह निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने केंद्र और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया। प्रदेश के सभी शासकीय विद्यालयों और सांदीपनी विद्यालयों में आज से 30 जून 2026 तक स्कूल चलें अभियान के दूसरे चरण के अंतर्गत शाला प्रारंभ उत्सव आयोजित किया जाएगा। इसके अंतर्गत प्री प्राइमरी से 8वीं तक के स्कूलों में बाल सभा के आयोजन के साथ ही पहले दिन विशेष भोज का आयोजन होगा। इसके साथ ही शाला में शत प्रतिशत नामांकन, पुस्तक वितरण, शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार, क्रियाशील बालिका शौचालयों की उपलब्धता, पेयजल की उपलब्धता, अभिभावकों का शाला से जुड़ाव जैसे विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा 2026 के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सुविधा शुरू होने के 24 घंटे के भीतर ही 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्रक डाउनलोड कर लिए हैं। एजेंसी ने कहा है कि सभी उम्मीदवारों के लिए सुगम पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उसकी टीमें सर्वरों पर लोड की लगातार निगरानी कर रही है। वहीं 21 जून को निर्धारित राष्ट्रीय प्रवेश और पात्रता परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को देखते हुए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। एनटीए ने कहा है कि यह प्रतिबंध नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून के 18 से 19 जून के बीच प्रवेश करने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का मानना है कि मानसून के आने के बाद प्रदेश में बारिश की स्थिति में सुधार होगा। फिलहाल जून माह में प्रदेश में सामान्य से कम वर्षा दर्ज की गई है। प्री मानसूनी गतिविधियों के चलते आज भोपाल, ग्वालियर, मई, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, जबलपुर, सागर और शहडोल संभागों के 30 से अधिक जिलों में आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी के शासकीय श्रीमंत माधवराव सिंधिया स्नातकोत्तर महाविद्यालय में समान नागरिक संहिता के संबंध में जन परामर्श को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आगरमालवा जिला जेल और सुसनेर उप जेल में कल से 21 जून तक साप्ताहिक योग प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हुआ। नर्मदापुरम जिले की जनपद पंचायत बनखेड़ी क्षेत्र में 12 से 18 जून तक जन कल्याण शिविर लगाए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ पात्र हितग्राहियों को उनका लाभ दिलाना और लंबित समस्याओं का मौके पर ही समाधान करना है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी की सराहना की। संबंधों को मजबूत करने में कला और संस्कृति की भूमिका पर बल दिया। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया। संदेश संपादन सुविधा 30 जून तक रहेगी बंद। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड के उपयोग की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा। भारत ने कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखने पर सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। और भारत ने महिला FIH नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज एवियन

0: पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। सत्र का विषय है नई भागीदारी बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता पुनर्स्थापित करना। सत्र में G7 देशों, भागीदार देशों के नेता, विश्व बैंक और अफ्रीका विकास बैंक के प्रतिनिधि शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री का काफी व्यस्त कार्यक्रम रहेगा। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। रात्रि में वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भोज में शामिल होंगे। सम्मेलन के दौरान कल प्रधानमंत्री मोदी की अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक प्रस्तावित है। दोनों नेताओं के बीच विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर व्यापक चर्चा होने की संभावना है। और अधिक जानकारी के लिए अब चलते हैं एवियो में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। जी अंकित, G7 के कई देश वर्तमान में धीमी विकास दर और आबादी से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इन देशों की विनिर्माण, नवाचार और सेवा क्षेत्र में भारत के साथ साझेदारी नए अवसरों की खोज में किस तरह सहायता कर सकती है?
1: जी जागृति, आपने वैश्विक परिदृश्य में आ रहे जिन बदलाव की बात की है वो बिल्कुल सही है। देखिए, अगर हम आज के डेट में G7 देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर नजर डालें तो उनमें से कई ऐसे देश है जो अपने वृद्ध होती आबादी और श्रमिकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में भारत के साथ साझेदारी उनके लिए काफ़ी नेचुरल है और उनका बहुत सीधा फायदा उनको मिलता है। एक तो भारत के पास एक विशाल युवा और कुशल प्रतिभाओं का समूह है जो वैश्विक तकनीक और सेवा क्षेत्र का अभिन्न हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन जागृति, यह साझेदारी केवल मानव पूंजी तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि हाल में अपनाए गए भारत फ्रांस नवाचार रोडमैप को आप देखें, उससे साफ रेखांकित होता है कि G7 देश अब भारत को केवल एक विशाल उपभोक्ता बाजार के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि भारत एक अहम और विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभरा है। जागृति
0: अंकित, आज के दौर में जैसे जैसे AI आर्थिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता जा रहा है, भारत में मौजूदा डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा समावेशी AI डेवलपमेंट के लिए किस तरह से सहायक हो सकता है?
1: बिल्कुल जागृति, देखिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे यानी DPI और कृत्रिम बुद्धिमता यानी AI का एक साथ आना वास्तव में समावेशी विकास के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। ये देखने वाली बात है कि एकाधिकार वाले निजी प्लेटफॉर्म्स लाने के बजाय भारत ने आधार और UPI जैसी अपनी डिजिटल संरचना को पब्लिक गुड के लिए बनाया है। मतलब पहले दिन से ही व्यापक आबादी और सर्वसमावेशिता के उद्देश्य से ये मॉडल डिजाइन किए गए हैं। और अब जब आप इसमें AI को जोड़ देती हैं तो भारत का DPI बहुत विविधतापूर्ण, उच्च गुणवत्ता वाला और सहमति आधारित डेटाबेस प्रदान करता है जो AI मॉडल्स को जिम्मेदार और निष्पक्ष बनाने के लिए बहुत जरूरी है। जी जागृति,
0: धन्यवाद अंकित इस तमाम जानकारी के लिए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्लोवाकिया की उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी में कहा कि कला और संस्कृति में लोगों को करीब लाने की शक्ति है। इस प्रदर्शनी में स्लोवाकिया के कलाकारों की कृतियां भी शामिल थीं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे ब्रातिस्लावा से बनारस का जुड़ाव बताते हुए स्लोवाकिया के कलाकारों द्वारा वाराणसी की रचनात्मक प्रस्तुति की सराहना की। स्लोवाकिया यात्रा के समापन पर श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंधों से युवाओं को बहुत लाभ होगा। उन्होंने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों से मिले स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया तथा स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो को धन्यवाद दिया। ब्रातिस्लावा में श्री फित्सो ने प्रधानमंत्री मोदी को विदा किया। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से भी सम्मानित किया। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री बुधवार शाम पेरिस पहुंचेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार की सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इन बैठकों का सिलसिला दोपहर तक जारी रहने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक FIVATEC शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां संबोधन करेंगे। शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की जाएंगी। यह आयोजन भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगा। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया है कि आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। एनटीए ने कहा कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विविध संस्कृतियों और भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला भारत स्वतंत्रता के बाद बढ़ती जनभागीदारी से विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर उभरा है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत युवा संसद के प्रतिभागियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि 50 लाख से अधिक युवा आज युवा संसद से जुड़े हुए हैं।
3: कैसे हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा कर सकते हैं, इसके लिए युवा संसद के माध्यम से तर्क संवाद की संस्कृति को बढ़ाने का ये कार्यक्रम आयोजित किया और निश्चित रूप से आज 50 लाख से ज्यादा युवा युवा संसद से जुड़े। अलग अलग राज्यों के अंदर युवाओं ने उस राज्य के विकसित और विकसित के साथ भारत विकसित के सपनों को साकार करने के लिए अपने विचार रखे।
0: सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांव में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांव में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि औषधि नियमों के अनुसूची के में दवाओं के वर्ग शीर्षक के अंतर्गत शामिल सिरप शब्द को हटा दिया गया है। सिरप शब्द हटाए जाने के बाद अब खांसी के सिरप को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इससे पहले 1000 से कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खांसी के सिरप की बिक्री को लाइसेंस संबंधी प्रावधानों से छूट मिली हुई थी। यह संशोधन सिरप आधारित औषधियों पर नियामकीय निगरानी को और सुदृढ़ करने तथा छूट संबंधी व्यवस्था को वर्तमान जन स्वास्थ्य और सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से किया गया है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहन बीमा दावों को खारिज किया जा सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये दावा निराधार है। पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि E20 ईंधन के इस्तेमाल के बावजूद मोटर बीमा पॉलिसियां वैध रहती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि पिछले दशक में देश भर में बुनियादी ढांचे में सुधार का काम रिकॉर्ड स्तर पर हुआ है। सोशल मीडिया पर MyGov की एक पोस्ट साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए अगली पीढ़ी की अवसंरचना तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में ये निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहन्ना की पीठ ने केंद्र और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया। याचिका में तर्क दिया गया है कि फॉर्म 6 के तहत मौजूदा सत्यापन तंत्र अपर्याप्त है और इसके तहत उचित सहायक दस्तावेज के बिना भी व्यक्तियों को चुनावी डेटाबेस में शामिल किया जा सकता है। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही।
5: यदि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार सिर्फ अस्थायी सदस्य देशों के विस्तार तक ही सीमित रहता है तो ये सुधार अधूरे और नाकाम साबित होंगे। इससे मौजूदा 5 स्थायी सदस्यों

0: कि निर्णय लेने की शक्ति संरचना में कोई बुनियादी बदलाव नहीं आएगा। सुरक्षा परिषद और सदस्य देश लंबे समय से सार्थक सुधारों का इंतजार कर रहे हैं।
1: ओमान के तट पर हुई दुखद समुद्री घटना के बाद एमटी सेटेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज ये जानकारी दी। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण उत्पन्न वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच घरेलू विकास और आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने के लिए देश की राजकोषीय नीति में बदलाव आ रहा है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत का जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण तात्कालिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने से हटकर दीर्घकालिक रणनीतिक स्थिरता की ओर अग्रसर है। आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक लगभग आधा प्रतिशत की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार के अनुसार सेंसेक्स 475 अंक बढ़कर 76,740 पर और निफ्टी 115 अंक बढ़कर 23,970 पर पहुंच गया। महिला हॉकी में भारत ने न्यूजीलैंड में आयोजित एफआईएच हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूल ए के अपने दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। बृहस्पतिवार को भारत का अगला मुकाबला उरुग्वे से होगा। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड्स में आयोजित एफआईएच हॉकी प्रो लीग में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। आकाशवाणी चेन्नई आज अपनी स्थापना की 88वीं वर्षगांठ मना रहा है। एआईआर चेन्नई ने राज्य भर में लाखों लोगों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल और सिक्किम में रविवार तक कुछ स्थानों पर तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान लगाया है। विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में शुक्रवार तक भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने बताया कि आज दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बिजली गिरने और 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी की सराहना की। संबंधों को मजबूत करने में कला और संस्कृति की भूमिका पर दिया बल। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड के उपयोग की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा। और भारत ने महिला एफआईएच नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हरा कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। पहली फरमाइश शामिल कर रहे हैं देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, केआर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री की। सारणी जिला बैतूल से अमित खातरकर, निहारिका खातरकर, शिवपाल यादव, अनामिका, अवंतिका, शिवालिका, पारसमणि वाघ, पंजाब राव निम्बालकर और संदीप पाटिल की। ग्राम चौहलदा बागपत से संजय ढिंगनिया, नमन मुस्कान और कुणाल की। राजा बाजार बिहिया से सुरेश केसरी, पूनम केशरी और प्रतीक केशरी। नया बाजार बक्सर से राजेश केशरी, पंकज केशरी और रोहन केशरी। रामलखन फिल्म का गीत मनहर उदास और अनुराधा पोडवाल ने गाया है। आनंद बख्शी की गीत रचना है और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झाविंद्र कुमार वर्मा, गांव भड़भुंजी जिला आगर मध्य प्रदेश से रघुनाथ मालवीय, भंवरबाई, सुषमा, पुष्पा, ममता, मंजू, बबीता, राधा, सरिता, श्याम बाबू, भावना, दुर्गा, मधुबाला, मिलन, आयुष और ओम प्रकाश की पसंद है। धीसु दिलवारे, लक्ष्मी, माधुरी, सोनाली, भगवान, पुष्पा, नेहा, एकता, अस्मिता, सौरभ और कुणाल दिलवारे, कंवर कॉलोनी बड़वाहा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनूराज श्रीमाली। सुनना पसंद किया है तेजाब फिल्म का गीत, अनुराधा पोडवाल और अमित कुमार का गाया, गीतकार जावेद अख्तर, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

अगले गीत का अनुरोध हमें मिला है सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया की। अंबेडकर चौक खुरई से राम सखी, परमानंद, सौरभ, गौरव, किशोरी बोस, एलपी रोहित, लल्ल राम, पूरन रोहित, छोटू, डुंडुन और उनके परिवार के सदस्य। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दतरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गा राम साहू की। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जैतेक बिरक और मीका बिरक की। लाल दुपट्टा मलमल का फिल्म का नाम है। आनंद मिलिंद के संगीत निर्देशन में मजरू सुल्तानपुरी ने गीत लिखा, गाया है उदित नारायण और अनुराधा पोडवाल ने।

अगली पसंद शामिल कर रहे हैं सुंदरखेड़, राजमाता नगर, बुलढाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े और आकाश कुमार की। ग्राम बगबुड़वा पथरिया सा नरेन नेताम और कुसुम नेताम की। अनुरोध करता है गौरी नगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या, करिश्मा कामले की। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित की। हुकुम कर्मकर, सुनीता कर्मरकर, हार्दिक कर्मरकर, प्राची कर्मरकर, तनु कर्मरकर की पसंद। ये खत है सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता, भावना और प्राची नेमा की। सुनना पसंद किया है वारिस फिल्म का गीत, लता मंगेशकर, सुरेश वाडकर का गाया। वर्मा मलिक ने गीत लिखा है, उत्तम जगदीश ने धुन बनाई है।

0: वारिस फिल्म के इसी गीत को सुनना पसंद किया था शुभ चंद बजाज, कालका हरियाणा से और मोहाली पंजाब से टीडी मल्होत्रा ने। वारिस फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि पिछले दशक में देश भर में बुनियादी ढांचे में सुधार का काम रिकॉर्ड स्तर पर हुआ है। सोशल मीडिया पर माई गव की एक पोस्ट को साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार के विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए अगली पीढ़ी की अवसंरचना तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 से 22 जून तक मध्य प्रदेश के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे इंदौर, बैतूल, ओंकारेश्वर, जबलपुर, ग्वालियर और कुनो अभयारण्य जाएंगे। वे 20 जून को शाम करीब 6 बजे जबलपुर पहुंचेंगे। इस दौरान वे दो प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल होंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज भोपाल में हो रही कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर निर्णय लिया जा सकता है। बैठक में सबसे प्रमुख मुद्दों में स्वास्थ्य अधोसंरचना प्रोत्साहन नीति 2026 को मंजूरी दिए जाने की संभावना है। साथ ही तबादला अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें आरोप लगाया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा 2026 के लिए प्रवेश पत्रक डाउनलोड करने की सुविधा शुरू होने के 24 घंटे के भीतर ही 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्रक डाउनलोड कर लिए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नई दिल्ली में कहा है कि विविध संस्कृतियों और भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला भारत स्वतंत्रता के बाद बढ़ती जनभागीदारी से विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर उभरा है। और मौसम विभाग ने प्रदेश के दक्षिण पश्चिम मानसून के 18 से 19 जून के बीच प्रवेश करने की संभावना जताई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। मीडियम वेब पर सभा समापन के पूर्व बता दें आपको सांध्यकालीन सभा के मुख्य आकर्षण। शाम 5:02 पर युवाओं का कार्यक्रम युववाणी होगा। प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल केंद्र की होगी। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप सुनेंगे शाम 6:00। रात्रि 8:00 समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष के अंतर्गत आज आप सुनेंगे आतंकवाद। उर्दू प्रोग्राम कहकशा रात्रि 9:30 पर, इसके अंतर्गत आज होगा आबशारे गजल। और शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में सुनिएगा रूपाली पांडे का ध्रुपद गायन, राग होगा जोग। आकाशवाणी भोपाल से शाम 7:21 पर कार्यक्रम ग्राम सभा का प्रसारण होगा। इसके अंतर्गत कुलदीप शर्मा से ली गई भेंटवार्ता आप सुनेंगे। विषय होगा खरीफ फसलों की तैयारी और बीजोपचार। ये थी सांध्यकालीन सभा के मुख्य आकर्षण। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्स, DTH के ऑडियो चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप और साथ ही वेव्स OTT ऐप पर हम आकाशवाणी के भोपाल। इस समय दोपहर के 3:02 होने वाले हैं। मीडियम वेव पर हमारी ये सभा समाप्त होती है। शाम 5:00 हम अपने कार्यक्रमों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। इस बीच DTH पर हमारा प्रसारण जारी है। DTH के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का भोपाल।

0: कार्यक्रम सखी सहेली में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी और मेरे साथ है
1: आरती श्रीवास्तव।
0: आप सभी को हमारा
1: नमस्कार।
0: नमस्कार, कैसी हो आरती?
1: बिल्कुल ठीक है। बस इस गर्मी में जितने ठीक हो सकते हैं उतने ठीक है।
0: बिल्कुल सही कहा, इस गर्मी में हम जितने अपने आप को अच्छा रख सकते हैं
1: जी,
0: उतना हमें रख लेना चाहिए, वरना तो तबीयत खराब होते देर भी नहीं लगती।
1: बिल्कुल
0: है।
1: बिल्कुल, क्योंकि इस समय बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से, पसीने की वजह से ना बहुत परेशानियां हो रही हैं, तो अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, अच्छा ध्यान रखिए।
0: हाँ बिल्कुल, ध्यान रखना है, खाने पीने का ध्यान रखना है, अपने पढ़ने का ध्यान रखना है, सोने का, कब सोते हो कब उठते हो,
1: और कोशिश करिए,
0: सब चीजों का हमें ध्यान रखना है। और ऐसे में कोशिश ये करनी है कि ज्यादा से ज्यादा आप घर पर रहें। ठीक है, कॉलेज जाना है, ऑफिस जाना है, वो तो है ही, इसके अलावा फालतू बाजार में जो घूमने की हमारी आदत होती है वो हमें थोड़ा बदलनी है।
1: बहुत जरूरी हो तो ही आप घर से बाहर निकलिए और पूरे चीजों के साथ निकलिए, यानी कि अपने अच्छे से अपना सिर ढक के निकलिए, एक गीला कोई कपड़ा है उसको अपने सर पे रखिए, या इस तरीके की चीजें आप करके, और पानी की बॉटल जरूर लेके जाए, इस तरीके का आप लेके चलिए, तो जिससे कि आपको गर्मी से बहुत ज्यादा परेशानी ना हो, तबियत ना खराब हो।
0: और घर पर बैठकर पढ़िए ना, सबसे अच्छी बात है कि दिन हो या रात हो या शाम हो, अगर हमने पढ़ने की आदत डाल ली है ना आरती, तो पढ़ना जो है वो एक बेहद शानदार आदत है। और ये जो किताबें हैं वो हमारा ज्ञान तो खैर बढ़ाती ही है, इसके अलावा हमें नई दुनिया में ले जाती है और हमारा तनाव कम कर देती है और हमारे मन को सुकून देती है।
1: बिल्कुल, और हमारा शब्द भंडार भी बढ़ा देती है। और जितना हम किताबों से जान सकते हैं ना, उतना मोबाइल में देख के, या फिर बाहर इतना ज्यादा, इतनी गर्मी है, इतनी परेशानी है, तो वहाँ बाहर जाके अपनी तबीयत खराब करने से बेहतर है हम घर में रह के थोड़ा अच्छा साहित्य पढ़ें, या जो भी हमारा इंटरेस्ट है हम उसको पढ़ें, जिससे कि हमें अच्छा लगेगा।
0: खासतौर से गर्मी को कोसने से अच्छा है कि हम पढ़ें, कहानी पढ़ सकते हैं, उपन्यास पढ़ सकते हैं, आत्मकथाएं पढ़ें, जीवनी पढ़ें,
1: पढ़ के थोड़ा बहुत उसको लिखने की कोशिश करें कि आपने क्या सीखा, या क्या आपको उसमें अच्छा लगा, उस चीज को आप थोड़ा सा नोट्स बनाना शुरू करें, देखिए आपकी खुद की एक किताब तैयार हो जाएगी।
0: बिल्कुल सही कहा। और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तो हमें कितने मिल गए हैं आजकल, बस उसका उपयोग करना हमें आना चाहिए और हमें सीखना भी चाहिए। तो चलिए बताइए आज क्या क्या कार्यक्रम आप लेकर आई हैं।
1: आज हम लेके आए हैं मानसिक मजबूती आपको किस तरीके से अजय बना देती है। अजय मतलब ये, आप अगर देखिए मन की जीते जीत होती है, अगर आपको आपका मन आपका मजबूत है ना, आप उससे नहीं डिग सकते अगर, तो फिर आपको कोई भी हरा नहीं सकता।
0: सबसे बड़ी बात है हमारा मन कितना सशक्त है, अगर मन के हारे हारे, अगर मन हार गया तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो हम इसके ऊपर कुछ चर्चा करेंगे, आप भी बताइए किस तरीके से आप अपने
0: मन को सशक्त बनाते हैं, हमारे श्रोता बता सकते हैं हमारी
1: किस तरह से, अगर कोई आपको कहीं पे ना कहने का मौका आता है तो आप उसको पूरी अपने शक्ति से ना कह पाते हैं या फिर हिचकिचा जाते हैं।
0: और कई बार क्या होता है आपकी घर परिवार में भी जो है बहुत सारी बातें होती है पति पत्नी के बीच में, ऐसे में कई बार स्त्रियां जो है मन कच्चा कर लेती है कि अरे भाई आज तो पतिदेव ने ऐसे डांट दिया, आज तो सास ने ऐसे कह दिया, ससुर ने ऐसे कह दिया, तो आप अपने मन को कितना मजबूत बनाती हैं और डटकर इन चीजों का, इन समस्याओं का मुकाबला कैसे करती हैं, बताइए अपने जीवन से जुड़े कुछ पहलू।
1: बिल्कुल, और आज हम मुहावरों के दिन में बात करेंगे, दूर के ढोल सुहावने।
0: ये तो होता है,
1: अक्सर होता है ना हम लोगों की, दूसरे को सामने देख के हम कहते हैं कि अरे ये कितना अच्छा, ये तो कितनी अच्छी जॉब कर रहा है या कितना अच्छा काम कर रहा है, लेकिन हम उसके पीछे का संघर्ष नहीं जान पाते कि किस तरह से वो वहां तक पहुंचा।
0: बिल्कुल, उसकी जिंदगी में क्या क्या घटा, कैसे घटा, उसने कैसे उसका मुकाबला किया, इन सब बातों को नहीं जानते हम, केवल जो सामने हमें दिख रहा है वही हमें सच्चा लगता है।
1: जी, तो बिल्कुल उसके बारे में बात करेंगे,
0: ये भी बताएं कि इनकी जिंदगी में दूर के ढोल
1: किस तरीके से इसको समझते हैं, अपना नजरिया बताएं, और साथ ही हम बात करेंगे सखी विशेष के अंतर्गत, आज हम मेघा मलिक जी के बारे में बात करेंगे।
0: क्या बात है,
1: जो है डिजाइनर पीपल की संस्थापक, और हल्की फुल्की बातें भी कुछ करेंगे ना।
0: हाँ हाँ बिल्कुल, हल्की फुल्की बातें तो जिंदगी में बहुत जरूरी है,
1: जबकि विषय जो है ना वो हल्की फुल्का नहीं है, बहुत ही ज्यादा डेंजरस विषय है।
0: आपने कंट्रास्ट कर दिया है, बातें हल्की फुल्की
1: रही
0: है, घरेलू बजट, बापरे,
1: जिसपे अक्सर तकरार हो जाती है पूरे घर में, मतलब एक राय कोई नहीं हो पाता इस विषय पे।
0: बिल्कुल सही कहा, इसके लिए जो पता है जो गृहिणियां है ना वो सबसे ज्यादा परेशान हो जाती है।
1: बिल्कुल, और आज एक महत्वपूर्ण दिवस भी है जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो है अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस, तो उसके बारे में हम कुछ बात करेंगे।
0: ठीक है, तो हमारे श्रोता भी लिखे, और अभी हम सुन लेते हैं गीत।
1: जी,

0: हाँ, तो आरती बहुत ही सुंदर कव्वाली अभी हमें हमारी सखियों को सुनाई है। उम्मीद करते हैं इस दोपहरी में उन्हें अच्छा भी लगा होगा।
1: बिल्कुल, थोड़ा सा एक ताजगी आ गई होगी।
0: थोड़ा सा एक्टिव हो गई होंगी ये सुनकर, है ना।
1: बिल्कुल
0: तो आज हम बहुत सारे दिवस भी मना रहे हैं, जिसमें एक है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस।
1: जी। तो इस अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस को हम क्यों जब मनाते हैं, इसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं इसका अर्थ क्या होता है।
0: हाँ हाँ
1: तो
0: बिल्कुल
1: जब कोई व्यक्ति अपने घर परिवार से दूर रहकर काम करता है और अपनी कमाई का एक हिस्सा परिवार को बाहर से भेजता है, तो उसे प्रेक्षण या रेमिटेंस कहा जाता है।
0: हाँ बिल्कुल। ये परिवार को भेजा गया धन केवल आर्थिक सहायता नहीं होता आरती, बल्कि उसमें प्रेम, जिम्मेदारी और परिवार के प्रति समर्पण की भावना भी शामिल होती है। और हर वर्ष आज ही के दिन मनाए जाने वाले इस दिवस की शुरुआत इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट यानी आईएफएडी ने की थी।
1: जी, और इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2015 में हुई। इसका उद्देश्य दुनिया भर में काम करने वाले जो प्रवासी श्रमिक हैं, वो अपने परिवारों को उनके द्वारा भेजे जाने वाले धन के महत्व को पहचान देना और उनके योगदान को सम्मानित करना था।
0: हाँ, बाद में यूनाइटेड नेशंस ने भी इस पहल को समर्थन दिया और जिससे इसे वैश्विक स्तर पर व्यापक पहचान मिली। ये दिन उन करोड़ों लोगों को सम्मान देने के लिए चुना गया है जो घर से दूर रहकर अपने परिवारों की आर्थिक सुरक्षा और बेहतर भविष्य के लिए मेहनत करते हैं।
1: बिल्कुल, और जैसा कि हम जानते ही हैं कि हर दिवस किसी न किसी बड़े उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही मनाया जाता है। और इस दिवस का उद्देश्य है प्रवासी श्रमिकों के योगदान को सम्मान देना, परिवारों और समुदायों के विकास में रेमिटेंस की भूमिका को उजागर करना।
0: हाँ, और सुरक्षित धन प्रेक्षण सेवाओं को बढ़ावा देना, गरीबी उन्मूलन और सतत विकास लक्ष्यों में रेमिटेंस के योगदान को रेखांकित करना भी इसका खास उद्देश्य है। और आज दुनिया भर में करोड़ों प्रवासी श्रमिक नियमित रूप से अपने परिवारों को धन भेजते हैं।
1: जी, और ये धन केवल परिवारों की दैनिक जरूरतों को ही पूरा नहीं करता, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और छोटे व्यवसायों में निवेश का भी आधार बनता है। इसीलिए इस प्रेक्षण को या रेमिटेंस को कई देशों की अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण स्तंभ भी माना जाता है।
0: बिल्कुल। और अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस हमें ये भी याद दिलाता है आरती कि भेजी गई हर राशि के साथ जुड़ी होती है उम्मीदें, है ना, रिश्ते और बेहतर भविष्य की कामनाएं। देखो, जब हमें कोई धन भेजता है, पैसा भेजता है हमारे जीविकोपार्जन के लिए, हमारी जरूरतों के लिए, तो सोचिए
1: बिल्कुल
0: हमारी फीलिंग्स कैसी होती हैं।
1: बिल्कुल
0: हमारे परिवार में भी जब हम स्टूडेंट लाइफ में बाहर पढ़ने गए और हमारे माता पिता ने हमारे लिए पैसे भेजे, तो कितनी कितनी खुशी
1: बिल्कुल खुशी
0: होती
1: होती
0: थी।
1: है कि ना, कि अब चलो ये जरूरतें हमारी जो थी
0: हाँ,
1: ये
0: हम
1: पूरी हो
0: पूरी कर
1: जाएगी।
0: लेंगे, है ना।
1: बिल्कुल
0: तो कितने उन लोगों को उसकी उम्मीदें जुड़ी होती हैं और अपने घर परिवार से दूर रहकर अपनों के सपनों को पूरा करने वाले हर प्रवासी श्रमिक को इतनी मेहनत करके अपने परिवार का जो पोषण कर रहा है उसके प्रति भी हमें सैल्यूट करना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, हम बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं ऐसे लोगों को।
0: बिल्कुल।
1: तो चलते चल के एक सुनते हैं गीत ना।

0: तो आरती महीना तो जून का है।
1: जी हाँ, पसीना भी बहुत आ रहा है।
0: बिल्कुल सही कहा, और इसी जून के महीने में हमें ध्यान रखना है कि हमें किस तरह से अपने आप को बचाए रखना
1: हाँ, इस
0: है।
1: पसीने से भी बचा के रखना है अपने को।
0: तो हमारे
1: जी
0: श्रोता लिखते हैं, कुछ लोगों ने लिखा भी है, बताओ क्या क्या लिखा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बताइए।
0: ये लिखते हैं कि ये दिन उन मजदूरों के लिए है जो अपने परिवार से दूर रहकर कमाई के लिए बाहर जाते हैं। ये दिन उनके त्याग के प्रति सोचने पर हमें मजबूर करता है कि किस तरह से अपने परिवार से दूर रहकर दुखी हैं, लेकिन फिर भी कमाने के लिए उन्हें अपने परिवार से दूर जाना पड़ रहा है। और ये दिन उनका सम्मान देने, उनके त्याग के बारे में थोड़ा सा सोचने पर ध्यान देने के लिए मनाया जाता है।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि प्रतिवर्ष ये दिन इस दिन मनाया जाता है 16 जून को, और ये दिन विदेशों में काम कर रहे प्रवासियों द्वारा अपने मूल देश में रहने वाले परिवारों को भेजे जाने वाली धनराशि यानी कि रेमिटेंस और उनके वित्तीय योगदान को सम्मानता देने और सम्मानित करने को लेकर समर्पित है। और ये दिन 20 करोड़ से अधिक प्रवासी कामगारों के त्याग और प्रयास को सराहता है जो दूर रहकर भी अपने लगभग 80 करोड़ परिवार के सदस्यों की आजीविका और भविष्य का निर्माण करते हैं। और इसका उद्देश्य जो है वो भेजने की जो रेमिटेंस भेजने की लागत को कम करना और प्रवासियों को बैंकिंग तथा सुरक्षित औपचारिक माध्यमों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना है।
0: बिल्कुल, वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि प्रवासियों द्वारा अपने परिवार और मूल देशों के सतत विकास में किए गए महत्वपूर्ण वित्तीय योगदान को मान्यता देना आज के दिन का उद्देश्य है, और प्रवासियों द्वारा भेजा गया धन लाखों परिवारों के लिए शिक्षा, चिकित्सा, आवास और आजीविका का एक मुख्य आधार है। और यह दिवस पहली बार 2015 में अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष द्वारा घोषित किया गया था, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। बिल्कुल सही कहा आपने, और बहुत अच्छे विचार हमारे श्रोताओं ने साझा किए हैं हमारे साथ। और आरती, और देखा आपने कि जब हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से लोग जो है अपने परिवारों के लिए मेहनत करते हैं, है ना, मशक्कत करते हैं और उनके लिए धन जुटाते हैं, दूर रहकर भी अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, सोचिए कितना मानसिक रूप से मजबूत हो जाते होंगे वो लोग,
1: बिल्कुल,
0: और
1: बिल्कुल।
0: कितना शारीरिक रूप से अपने आप को मजबूत बना के रखते होंगे,
1: जी
0: है ना।
1: बिल्कुल, और बहुत ज़रूरी भी है। अगर हम दिमाग से अपने दिमाग का संतुलन बना के चलेंगे और छोटी छोटी जो परिस्थितियां हमारे सामने आ जाती हैं उनसे घबराने की बजाय उनका सामना करेंगे तो बिल्कुल भी, क्योंकि ना बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमारे सामने आती हैं, क्योंकि भाई जीवन है, उसमें कठिनाइयां तो आपके सामने आएंगी
0: आएंगी
1: ही।
0: ही,
1: आप ये
0: बिल्कुल।
1: नहीं कह सकते कि नहीं हमें अलग चलना है या हमारा जीवन बिल्कुल सुखी सुखी क्यों नहीं है ना, या उसकी तरह क्यों नहीं। जो सामने वाला जिसको देख के आप कह रहे हैं ना, उसके जीवन में भी कठिनाइयां होंगी, अब कोई
0: बिल्कुल
1: जरूरी नहीं है आपको पता हो उसके के बारे
0: आपने
1: में।
0: उसकी डार्क साइड देखी नहीं ना,
1: बिल्कुल
0: आपने खाली उसका सामने जो जिस तरह
1: जी
0: से हंसना बोलना, और हमें लगता है कितना सुखी जीवन है, कितना मस्त बंदा है ये, लेकिन
1: बिल्कुल
0: उसके पीछे का जो संघर्ष है,
1: जी
0: पीछे के जो दुख है, पीछे की जो कहानी है, वो हम नहीं जान पाते हैं।
1: बिल्कुल। इसी को लेकर एक छोटी सी कहानी आपको बताऊंगी कि देखिए चील जो होती है ना, कितना बड़ा पक्षी होता है ना, और उस तक पहुंचने की कोई सोचता भी नहीं कोई पक्षी, क्योंकि सब डरते हैं उससे। लेकिन एक पक्षी है जो उसको परेशान करता है, वो है कौआ। वो
0: बिल्कुल
1: जर उसको चोच मार कर परेशान करने की कोशिशें करता रहता है, लेकिन वो क्या करता है पता है, वो उस ध्यान नहीं देता उसकी तरफ, क्योंकि वो अपनी एनर्जी है जो है ना वो उस तक उस पर वेस्ट नहीं, उस पर बिल्कुल भी जाया नहीं करता।
0: हाँ।
1: वो अपनी उड़ान को ऊपर ऊंचा कर देता है, वो
0: बिल्कुल
1: इतना ऊंचा उठ जाता है कि वो कौआ वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। तो वो मतलब उससे जूझा नहीं, उससे उसने कोई बात नहीं करी, उसके ऊपर अपनी
0: वो डिस्टर्ब नहीं हुआ, अपना संतुलन नहीं बिगाड़ा,
1: नहीं हटा वो किसी को देख के, बस उसने अपनी उड़ान को इतना ऊंचा कर लिया कि वो उस तक पहुंच ही नहीं पाया।
0: बिल्कुल सही कहा आपने कि आपको जो है, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, तो तंग करने वाले, परेशान करने वाले, है ना, बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन आपको अपना लक्ष्य बनाए रखना चाहिए कि नहीं, आपकी उड़ान चील जैसी होनी चाहिए, कि आपको इतना ऊंचा उड़ना है कि कौवा खुद ब खुद अपनी उड़ान हटा ले, है ना।
1: बिल्कुल, वो हार मान के अपने आप ही हट जाए वहां से।
0: हाँ, ये होना चाहिए और होता भी है। कुछ लोग जो महान बने हैं उन्होंने ऐसे ही तो महानता अर्जित नहीं की ना आरती। तो जीवन में हर नई चुनौतियों को, हर नए संघर्ष को और हर नई परिस्थितियों को जो है वो हमें वो हमारा इंतजार कर रही होती है, और कुछ लोग छोटी सी कठिनाई से, छोटी सी बातों से, छोटे से दुख से टूट जाते हैं, जबकि कुछ लोग बड़ी से बड़ी समस्या का सामना भी मुस्कुराकर कर लेते हैं। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है केवल परिस्थितियों का नहीं है, बल्कि मानसिक मजबूती का होता है।
1: बिल्कुल, और मानसिक मजबूती व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों में भी संतुलित रहने, सही निर्णय लेने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। ये किसी जादू की, ये मतलब किसी जादू की तरह नहीं आती कि एकदम से किसी ने आपको मंत्र पढ़ दिया और आपने एकदम
0: आपके पास जादू की छड़ी आई, आपने गोल गोल घुमाया, खुल जा सिम सिम और ताला खुल गया।
1: बिल्कुल, ये ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा बल्कि अनुभवों, धैर्य और सकारात्मक सोच से विकसित होती है। प्रतिस्पर्धा, तनाव, अपेक्षाएं और तेज रफ्तार जीवन कई बार मन को विचलित कर सकते हैं।
0: हाँ बिल्कुल, और मानसिक मजबूती का अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति कभी दुखी ना हो या उसकी आंखों में आंसू नहीं आते। इसका जो मतलब है वो ये, दुख, निराशा और कठिनाइयों के बीच भी हम खुद को संभालकर आगे बढ़ते रहें। गिरना जो है जीवन का हिस्सा है आरती, लेकिन हर बार उठकर खड़ा होना मानसिक शक्ति की पहचान होती है।
1: बिल्कुल, और अगर हम धैर्य, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच को अपना साथी बना लें तो कोई भी कठिनाई हमें लंबे समय तक रोक नहीं सकती। क्योंकि अजय वो नहीं होता जो कभी हारता नहीं, बल्कि वो होता है जो हर हार के बाद फिर से खड़ा हो जाता है। जी, और एक बात का ध्यान हमें हमेशा रखना चाहिए कि जिस भी चीज से हमें सबसे ज्यादा डर लगता है वो ही हमारे ऊपर हावी होकर हमें अंदर से कमजोर बनाती है। क्योंकि वो हमारी कमजोरी का हमारा वीक पॉइंट बन जाती है ना, कि और वो अगर किसी को पता भी चल जाए ना
0: तो उसका फायदा उठाया जाता है। उसका फायदा उठाया जाता है। इसलिए जो कहते हैं ना कि अपनी कमजोरी मत बताइए किसी को, इसीलिए कहते हैं।
1: तो इतने कमजोर बनिए ही मत, किसी भी कमजोरी को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए।
0: बिल्कुल सही,
1: उसका सामना करिए डट के, तो वो कमजोरी आपकी कमजोरी रहेगी ही नहीं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए आरती, कि कोई कितना भी उकसाए, कोई कितनी भी कोशिश क्यों ना करे, हमें शांत रहना चाहिए। उकसाने वाला हमारी बुरी प्रतिक्रिया चाहता है और हमें वो बिल्कुल नहीं देनी है, शांत रहना है। और अगर किसी को किसी भी बात के बारे में बताना है तो उसे बहुत विस्तार मत दीजिए, बल्कि जो सच है उतना बताइए, क्योंकि ज्यादा

0: बोलना भी जो है फिर उसमें झूठ मिलाना पड़ता है, झूठ की मिलावट सी लगती है। तो
1: बिल्कुल
0: आप दो टूक बात करें,
1: जी,
0: जो सच है वो कह दें, फैक्ट्स जो है, और नहीं तो चुप रहें।
1: बिल्कुल, बहुत ज्यादा आप विस्तार से उसे बताने की कोशिश मत
0: अपनी
1: करें।
0: सफाई देना
1: हाँ,
0: कोई जरूरी
1: उसको
0: नहीं
1: वही
0: है।
1: सफाई दीजिए ज्यादा
0: हाँ
1: अपनी। और साथ ही अगर हम किसी बात से सहमत नहीं हैं तो सीधे ना कहना जरूरी है। उसके लिए बहुत ज्यादा तर्क देने की भी जरूरत नहीं है कि इसलिए उस लिए, है ना। तो सिर्फ ना कहना काफी है, ये हमारे अंदर की मजबूती को दिखाता है। अगर कभी कोई बहस हो जाए या किसी बड़ी बात पर प्रतिक्रिया देनी है तो आपको तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी
0: नहीं
1: चाहिए।
0: देनी चाहिए। होता क्या है, हम तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं,
1: हाँ
0: वहीं पर हम गलत हो जाते हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि तुरंत प्रतिक्रिया हमारे गुस्से की वजह से आ सकती है, या हमारे
0: बिल्कुल।
1: अंदर जो जो समुद्र जो इमोशंस हो रहे हैं, जो भावनाएं आ रही है ना, उसकी वजह से हो सकती है। हम जब ठंडे दिमाग से प्रतिक्रिया देते हैं तो वो बिल्कुल अलग होती
0: शांत
1: है।
0: हो जाते हैं, कई बार तो प्रतिक्रिया देने का मन भी नहीं करता है। जब
1: जी
0: आप शांत रहते हैं, अपने आप को थोड़ा टाइम देते हैं ना आरती, तो लगता है अरे जाने दो ना, क्या पड़ा है इन बातों में।
1: बिल्कुल
0: और आपने तुरंत प्रतिक्रिया दी नहीं, तो चार बातें गलत आपके मुंह से निकली नहीं,
1: निकली
0: क्योंकि उस
1: जी
0: वक्त आपके भीतर बहुत सारी भावनाएं जो है घूम रही होती हैं,
1: जी
0: और आपको समझ नहीं आता कि आप क्या कहने जा रहे हैं। तो थोड़ा रुक कर सहित होकर बोलना जो है वो आपकी आंतरिक मजबूती को दिखाता है। और सबसे बड़ी बात है कि कभी कोई मुश्किल परिस्थिति में हो, अपने को बचाव की स्थिति में लाकर घबराने की बजाय हमें चाहिए कि हम बिना घबराए सामने वाले से प्रश्न करें और खुद को मजबूती के साथ प्रस्तुत भी करें।
1: बिल्कुल, क्योंकि जहां हम थोड़ा सा भी पीछे हटने लगते हैं ना, वो एक हिसाब होता है ना कि आप आक्रमण की मुद्रा में रहे हैं, ना कि डिफेंस में। जहां हम डिफेंस में अपने को बचाव की स्थिति में ले आते हैं ना, वहीं हम पे लोग हावी होने लगते हैं। तो आप ऐसा स्थिति अपने आपको कभी अपने लिए मत लेकर आइए। तो आप प्रश्न पूछिए, प्रश्न पूछिए। अगर आप हम पे ऐसा कुछ कह रहे हैं, हमारे लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो क्यों कह रहे हैं, ये क्यों, कैसे, ये जरूर आप पूछिए।
0: बिल्कुल। सवाल पूछने, प्रश्न खड़े करने बहुत जरूरी हैं,
1: बिल्कुल
0: और उसके बगैर अगर आपने अपने आप को अपना कदम पीछे खींच लिया, तो लोग आपको कमजोर समझकर बस वहीं पर आप पर वार भी कर देते हैं,
1: बिल्कुल, फिर हम अगर सही भी होंगे ना तो भी कोई नहीं
0: गलत
1: सुनेगा।
0: माने जाते हैं। इसलिए
1: जी
0: किसी की बात पर आंख बंद करके एक तो विश्वास नहीं कीजिए, और अपनी बात को मतलब ये सोचिए कि मैं क्या कह रहा हूं और सामने वाला क्या सुन रहा है। हमें धोखेबाजी से भी बचाना है, और कभी भी अपनी भावनाएं हर किसी के साथ साझा नहीं करनी, क्योंकि हर बार हर कोई हमारी भावनाओं को आदर से नहीं देखता। होता क्या, हम इमोशनल होते हैं और हर एक को अपनी बात कह देते हैं।
1: बिल्कुल। और मतलब किसी के ऊपर भी विश्वास मत करिए कि हाँ हमने ये कह दिया कि नहीं नहीं हम आपकी बात को नहीं करेंगे। अगर उसने कभी भी किसी
0: कह
1: इमोशन में
0: दिया,
1: आके कह दिया
0: हाँ
1: तो फिर आपकी परेशानी आपके
0: हाँ
1: लिए
0: फिर
1: खड़ी
0: वो
1: हो
0: सारी
1: सकती है।
0: परेशानी खड़ी हो जाती है,
1: बिल्कुल
0: फिर आप अपनी सफाई देने लगते हैं। लेकिन इस
1: जी,
0: वक्त हमें सफाई ये देनी है आरती
1: अंतराल
0: कि
1: का समय हो
0: अंतराल
1: गया
0: का
1: है।
0: समय हो गया
1: जी
0: है,
1: अंतराल का
0: एक
1: समय
0: छोटा
1: है।
0: सा अंतराल लेते हैं।
1: जी

0: तो अंतराल के बाद सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत
1: स्वागत
0: है।
1: है।
0: तो बात क्या चल रही थी?
1: बात हम मानसिक मजबूती की कर रहे हैं तो और उसी में हम आगे बढ़ते हैं। तो इस आप हर किसी के सामने अपनी भावनाओं की मुट्ठी को मत खोलिए। और हाँ, जब कोई बहुत तेज आवाज में और गुस्से से बात कर रहा हो तो खुद को शांत और संयत स्वर से बात करने पर वो धीरे धीरे हमारी आवाज के स्तर पर आने लगेगा। अपनी किसी भी सही बात के लिए 10 लोगों की हामी का इंतजार मत करिए,
0: बिल्कुल सही कहा
1: क्योंकि
0: आपने।
1: ना देखिए, जब हम बहुत तेज आवाज में कोई हमसे बात कर रहा हो ना, तो जब हम अपने बिल्कुल संयत स्वर से धीरे और हम जैसे हम बोलते हैं उस हिसाब से बात कर रहे होते हैं ना, तो उसको भी लगता है ना कि अरे सब मुझे क्यों देख रहे होंगे कि मैं ही इतनी तेज आवाज में चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा हूँ और सामने वाला तो बिल्कुल आवाज में धीरे धीरे से बात कर रहा है। तो धीरे धीरे उसको भी एहसास होगा, वो आपके लेवल पे आना शुरू होगा।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और ऐसे

0: स्थिति में क्या होता है कि सामने वाले को अपनी गलती का एहसास भी हो जाता
1: बिल्कुल
0: है कि वो बिना बात के चीख रहा है या चिल्ला रहा है ना।
1: जी।
0: तो और एक बात और है आरती, जब हम सॉरी कहते हैं कई बार देर से आए, तो उसकी जगह हम बहुत कुछ कह सकते हैं, यानी सकारात्मक रूप से हम उसे धन्यवाद भी दे सकते
1: कि
0: हैं
1: आपने
0: कि
1: इंतजार
0: शुक्रिया
1: किया,
0: आपने हमारा इंतजार किया,
1: बिल्कुल
0: है ना।
1: ये थोड़ा सा ये हो जाएगा ना, एक सकारात्मक पहलू आ जाएगा इस चीज का सामने।
0: है ना।
1: और जैसे कि हमने कहा कि हामी मत भरिए, मतलब अगर अगर आप सही हैं किसी चीज को लेके, आप सही हैं तो आप उसको अप्रूव कराने के लिए
0: 10 लोगों के
1: दस
0: पास
1: लोगों
0: मत
1: के पास मत
0: जाइए।
1: जाइए, है ना, कि देखो देखो ये चीज सही है ना, देखो देखो ये चीज सही है ना। कहते हैं ना कि चार लोग क्या कहेंगे, तो आप उन चारों को भूल जाइए।
0: होता है,
1: बिल्कुल
0: लोग जो है 10 लोगों के पास जा
1: हाँ
0: जाकर पूछते
1: हाँ
0: हैं,
1: कि हम सही हैं, हम
0: है
1: सही हैं।
0: ना, हम
1: अगर आप
0: सही है
1: सही
0: ना,
1: हैं तो
0: आप
1: अपने,
0: सही हैं,
1: बिल्कुल
0: आप
1: अपने दिमाग
0: सही,
1: से, अपने
0: बिल्कुल
1: अपने आपसे निर्णय लीजिए, आप
0: बिल्कुल,
1: सही हैं
0: आपका अपना
1: तो सही
0: निर्णय कोई
1: हैं
0: भी हो सकता है, उसमें
1: बस
0: आपको डरना किस बात का। अगर आपका निर्णय किसी का नुकसान नहीं कर रहा है तो
1: जी।
0: आपको डर नहीं होना चाहिए, है ना।
1: बिल्कुल
0: और सबसे बड़ी बात यह है आरती, हम लोग भावुक लोग जो होते हैं ना, मैं भी वैसी ही हूँ कि मैं लोगों के साथ भावनाओं में बहती हूँ, मतलब किसी ने प्यार से बोला तो उसके साथ अरे कितनी अच्छी है
1: जी
0: ना,
1: जी बिल्कुल
0: कितना अच्छा है।
1: जी,
0: और लोगों को पढ़ना सीखना चाहिए, जो
1: बहुत
0: कि
1: जरूरी
0: हम
1: है।
0: नहीं सीख पाते हैं, या भावुकता, जैसा मैंने कहा हम भावुकता
1: जी
0: में बह जाते हैं, तो लोगों को पढ़ना सीखें, उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है जब हम उन्हें ना बोलते
1: बिल्कुल,
0: हैं,
1: बारीकी से, बारीकी से ध्यान
0: तो
1: दीजिए, जब आप उनको ना बोलते
0: तब
1: हैं
0: वो कैसे होते
1: तब उनके
0: हैं,
1: चेहरे पे कैसे
0: क्या
1: भाव
0: होता
1: आते
0: है,
1: हैं,
0: ये
1: वो
0: आपको,
1: बहुत
0: हाँ ये
1: जरूरी है
0: आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि
1: जी।
0: आपने जब तक हाँ भरी तब तक
1: हाँ
0: आप बहुत अच्छे थे,
1: जी
0: लेकिन जैसे ही आपकी किसी भी बात पर ना हो गई आप बुरे हो जाते हैं, है ना,
1: बिल्कुल
0: आपके बारे में 10 सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। तो ये जानना आपको बहुत जरूरी है। तो अपने व्यक्तित्व को अजय बनाइए, अपने
1: बिल्कुल।
0: व्यक्तित्व को अंदर से मजबूत
1: और
0: बनाइए।
1: उसके लिए जरूरी है हम दूसरों को बहुत अच्छी तरीके से सुने, उनको ऑब्जर्व करना सीखें, उनको ध्यान से उनको देखें कि वो कैसे प्रतिक्रिया देते हैं या हमारी किस बात पे कैसी प्रतिक्रिया करते देते हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और
0: बिल्कुल
1: जब भी हमें क्रोध आए या गुस्सा आए तो हमें अपने ऊपर थोड़ा नियंत्रण करना चाहिए,
0: हाँ
1: क्योंकि क्रोध हो या गुस्से में हम बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल जाते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए,
0: बिल्कुल सही
1: और
0: कहा,
1: बाद में हमें उसका पछतावा भी होता है।
0: हाँ
1: लेकिन शब्द ऐसे हैं ना, जब निकल जाते हैं तो वापस नहीं आ सकते,
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल,
1: इस बात का हमें ध्यान रख के
0: सोच
1: बोलना
0: समझ के
1: चाहिए।
0: बोलें, तोल मोल के बोलें। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि हर बार हम गणित नहीं संबंधों में
1: जी
0: लगा पाते, और अपना समझकर कई बार हम बहुत कुछ कह जाते हैं, लेकिन ऐसा फिर भी ना कहें जो बाद में
1: जी
0: आपको पछतावा दे।
1: बिल्कुल
0: और हम सब की आदत होती है कि अगर कोई हमारी तारीफ कर दे, जैसा कि तुम मेरी अक्सर तारीफ करती हो, आज नहीं की है तुमने, तो मैं तुमसे नाराज हो गई हूँ, ऐसे लोग हमसे नाराज हो जाते हैं जब हम उनकी तारीफ नहीं करते हैं, या कर देते हैं तो हमारी उसमें पसंद वाली लिस्ट में शामिल हो जाते हैं, तो इससे हमारी कमजोरी जो है लोगों के हाथों में
1: जब
0: आ
1: हम,
0: जाती है।
1: क्योंकि लगता है ना उनको कि जैसे कि अब मैं अभी आपकी तारीफ करूं और उस किसी ऐसी बात की तारीफ करूं जो आप नहीं करती हैं, तो आपको अंदर से तो लगेगा कि हाँ ये तो मैं करती नहीं हूँ, फिर भी मेरी तारीफ हो रही है, तो लेकिन आपको लगेगा अच्छा लगेगा। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए,
0: हाँ फिर
1: क्योंकि
0: मैं
1: ये
0: हर दिन,
1: चाटुकारिता में आ
0: हाँ ये
1: जाता है
0: चाटुकारिता में आता है,
1: जी।
0: और फिर पता है क्या होता है, हम हर दिन उस तारीफ की उम्मीद करने लगते हैं सामने
1: बिल्कुल
0: वाले से, और जिस दिन उसने नहीं की वो इंसान हमारे लिए बुरा हो जाता है। इसलिए चाटुकारिता की श्रेणी में आपको नहीं आना चाहिए।
1: जी, अपनी
0: और
1: खूबी अपनी खामी हर
0: हाँ
1: इंसान को पता होती है,
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल
0: होती
1: है ना।
0: है, और
1: तो
0: मजबूत मन ही वो
1: देखिए
0: जादू है
1: जी
0: जहाँ व्यक्ति हर परिस्थिति में चमकने की क्षमता बनाता है, अपने आप को चमका लेता
1: बिल्कुल
0: है कि किस तरह से अपने आप को मजबूत बनाना है।
1: जी
0: इसलिए अपनी खूबियां और अपनी खामियां खुद टटोलनी होगी।
1: बिल्कुल। और इसके लिए आप दूसरों पर निर्भर ना रहें कि वो आपकी तारीफ करेंगे, मत डाकनी
0: जैसा मैंने आज
1: जी
0: उम्मीद की थी कि आरती आते ही मेरी तारीफ
1: जी
0: करने वाली है, पर
1: नहीं नहीं
0: आरती ने आज
1: आप
0: तारीफ
1: नहीं,
0: नहीं की।
1: मैं तारीफ करती हूँ, तारीफ करती हूँ, लेकिन ये चीज उसमें नहीं करती हूँ कि भाई कि आपको चाटुकारिता लगी इस चीज को,
0: हाँ
1: मैं एकदम सही तरीके से आपकी कि जिस चीज की भी तारीफ करती हूँ वो करती
0: तो
1: हूँ।
0: मैं आगे उम्मीद रखती
1: बिल्कुल
0: हूँ।
1: बिल्कुल, उम्मीद रखिए अच्छे से तारीफ करी
0: तो चलिए, आप
1: जी।
0: श्रोता उम्मीद कर रहे हैं कि हम उन्हें एक
1: एक गीत
0: प्यारा सा गीत
1: सुनाए
0: सुनवा दें।
1: जी।

0: हाँ
1: तो अब हम बात करते हैं सखी विशेष के अंतर्गत मेघा मलिक की।
0: अरे वाह बिल्कुल
1: जी, तो रंगों की दुनिया में सपनों को आकार देने वाली एक सृजनशील व्यक्तित्व का नाम है मेघा मलिक। उन्होंने केवल डिजाइन ही नहीं बनाए बल्कि अपने विचारों को पहचान भी दी, उत्पादों को एक व्यक्तित्व दिया और जो व्यवसाय दिखा रहे थे उनको यादगार ब्रांड्स में बदलने का जादुई काम उन्होंने किया। तो मेघा मलिक भारतीय ब्रांडिंग, पैकेजिंग और डिजाइन उद्योग के एक प्रतिष्ठित उद्यमी है।
0: हाँ बिल्कुल। और उन्होंने 2003 में डिजाइनर पीपल की स्थापना की।
1: जी
0: विदेशों में अपनी पहचान बना लेने के बाद भारत में डिजाइनर पीपल ने 2012 में अपना आधार स्थापित किया, जो आज भारत की प्रमुख ब्रांडिंग, पैकेजिंग, डिजाइन और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसियों में भी गिनी जाती है। और उनकी शिक्षा की बात करें आरती, तो उन्होंने कला और व्यवसाय दोनों क्षेत्रों में शिक्षा प्राप्त की है।
1: जी, और उनके पास मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में MBA और फाइन आर्ट्स की डिग्री है। कला के प्रति उनकी गहरी रुचि और रचनात्मक सोच ने उन्हें डिजाइन एवं ब्रांडिंग की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मेघा की कंपनी की बात करें तो ये एक पेशेवर क्रिएटिव एजेंसी है जो ब्रांडिंग, पैकेजिंग और प्रिंट और डिजिटल मार्केटिंग के लिए विजुअल कम्युनिकेशन में विशेषज्ञता रखती है।
0: बिल्कुल। और पैकेज डिजाइनिंग, वेब डिजाइन और विकास, ब्रांड विकास जिसमें शामिल है लोगो डिजाइन, स्टेशनरी डिजाइन, कॉरपोरेट डिजाइन और इसके साथ कैटलॉग, बिजनेस कार्ड डिजाइन, साइनेज और वे फाइंडिंग डिजाइन, कस्टम प्रिंटिंग, अन्य सेवाओं में जैसे वाहन रैप डिजाइन, प्रदर्शनी स्टॉल डिजाइन, सोशल मीडिया पेज डिजाइन, कितनी सारी चीजें
1: बहुत सारी
0: इसमें
1: चीजें
0: शामिल है।
1: जी। और डिजिटल मार्केटिंग जिसमें शामिल है सामाजिक माध्यम बाजारीकरण, सर्च इंजन अनुकूलन, पीपीसी सेवाएं, इसके अलावा ब्रांड परामर्श, पैकेजिंग परामर्श, उत्पाद डिजाइन परामर्श। मेघा मानती हैं ब्रांडिंग और मार्केटिंग एक ऐसी सेवा है जो किसी भी व्यवसाय के लिए अधिकतम ग्राहक लाती है। किसी भी उत्पाद को खरीदने के 70% से अधिक निर्णय स्टोर में ही 5 से 7 सेकंड के भीतर ले लिए जाते हैं। ये कितना सुंदर दिख रहा है वो बस इसी बेस पे उसे ले लिया जाता है।
0: क्या बात है।
1: और इस प्रकार उत्पाद की दिखावट खरीद निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये बात अच्छी तरह समझते हुए कि किसी भी ब्रांड को प्रतिस्पर्धा के बीच अलग पहचान दिलाने के लिए सही ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग बेहद जरूरी है। ये वो चीजें हैं जो उत्पाद को ग्राहकों का ध्यान और विश्वास आकर्षित करने में मदद करती हैं।
0: और इसीलिए चाहे छोटा व्यवसाय हो या बड़ा, अपने उत्पादों और सेवाओं की उपयुक्त ब्रांडिंग और मार्केटिंग की आवश्यकता को नजरअंदाज नहीं कर सकता। भारत में अगर ब्रांडिंग और पैकेजिंग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मेघा मलिक ने जो है डिजाइनर पीपल की शुरुआत की। और उनका मानना है कि किसी भी उत्पाद की सफलता केवल उसकी गुणवत्ता पर नहीं बल्कि उसकी पहचान, प्रस्तुति और उपभोक्ताओं से जुड़ाव पर भी निर्भर करती है।
1: बिल्कुल। और उनकी इसी सोच ने उन्हें एक ऐसी संस्था बनाने के लिए प्रेरित किया जो छोटे और मध्यम उद्योगों को मजबूत ब्रांड पहचान दिला सके। क्रिएटिव डायरेक्टर और ब्रांड कंसल्टेंट के रूप में मेघा मलिक ने हजारों व्यवसायों को नई पहचान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी एजेंसी ने खाद्य पदार्थ, सौंदर्य प्रसाधन, उपभोक्ता उत्पादों और अन्य कई क्षेत्रों के ब्रांडों के लिए पैकेजिंग, लोगो, विज्ञापन और डिजिटल रणनीति विकसित की है।
0: हाँ बिल्कुल। और मेघा मलिक का जो नेतृत्व है नवाचार, शोध और ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण पर आधारित है। वो मानती हैं कि प्रभावी ब्रांडिंग केवल आकर्षक डिजाइन नहीं बल्कि उपभोक्ताओं की भावनाओं और आवश्यकताओं को समझने की कला है। और उनकी कार्यशैली में रचनात्मकता और व्यावसायिक रणनीति का संतुलित समन्वय भी हमें दिखाई देता है।
1: बिल्कुल। उनकी संस्था ने न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी बहुत सारे ब्रांड्स के साथ में काम किया है। और मेघा मलिक को भारत की सफल महिला उद्यमियों में भी स्थान मिला है। उन्होंने ब्रांडिंग और पैकेजिंग के क्षेत्र में नए मानक साबित करते हुए अनेक व्यवसायों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में योगदान दिया है।
0: और उनकी सफलता इस बात का प्रमाण है आरती कि जब कला और प्रबंधन को खूबसूरती से मिलाया जाता है ना, तब वो रचनात्मकता व्यापार की नई ऊंचाइयों को हासिल करती है। तो मेघा मलिक आज उन महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो अपने जुनून को उद्यमिता में बदलकर समाज और उद्योग जगत में एक नई पहचान बनाना चाहती हैं।
1: बिल्कुल
0: है ना,
1: और बहुत ही अच्छी बात है ये।
0: और
1: महिलाएं जो कितनी तेजी से अपना नया पहचान, अपनी पहचान बना रही हैं, अपने आप को स्थापित कर रही हैं।
0: बिल्कुल। तभी कहा जाता है देखिए कि दूर के ढोल सुहावने, मतलब अभी जो हम बैठे बैठे यहाँ से कह सकते हैं कि कितने मजे हैं ना मेघा मलिक के,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन उस शानदार जीवन के लिए कितना संघर्ष किया है इस बात को अभी अभी आपने जाना। तो जो अगला विषय हमारा रहेगा वो यही रहेगा कि मुहावरों की जो दुनिया है, दूर के ढोल सुहावने, उस पर हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं आरती, उस पर बात करें हम।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ बात कर रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा एक छोटा सा गीत क्यों ना सुने।
0: अच्छा, आपको गीत की तलब हो ही गई है। चाय की तरह
1: जी।
2: जरा नजरों से कह दो जी,

0: तो धूर के ढोल सुहावने कई बार ऐसा होता है ना कि वो कोई चीज हम खरीदते हैं ना, वो ऐसी देख के, तो देखने में तो इतनी सुंदर लग रही होती है उसमें, जब हम शॉपिंग ऐप पे जाते हैं और जब वो आती है हमारे पास, तो एकदम से लगता है कि ये क्या चीज हमारे पास आ गई है।
1: हाँ बिल्कुल सही कहा। कई बार हम महिलाएं खासतौर से जो ड्रेस के प्रति बड़ी सावचेत रहती है ना, ऑनलाइन शॉपिंग करते समय बहुत सुंदर ड्रेस लगती है, लेकिन जैसे ही वो घर पे आती है ना आरती, यकीनन बहुत बार लगता है कि ये क्या ले लिया हमने।
0: बिल्कुल, और फिर वापस करो ये करो, गुस्सा
1: वो
0: आता है
1: सारी
0: ना उस
1: प्रक्रिया
0: समय,
1: शुरू हो जाती है।
0: इतना समय आके तो वो आती है ड्रेस सच में।
1: इसलिए दूर के ढोल सुहावने लगना जो है, वो हमारे श्रोता लिखते हैं कि जो वस्तु व्यक्ति या परिस्थिति दूर से अच्छी और आकर्षक दिखाई देती है, वो पास आकर उतनी अच्छी होती नहीं है। उदाहरण जैसे गांव के लोग शहर की चमक दमक देखकर आकर्षित होते हैं, पर शहर की भागदौड़ और महंगाई देखकर पता चलता है, फिर कहते हैं कि दूर के तो ढोली सुहावने।
0: बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने एकदम सही तरीके से इस चीज को बताया है। और एक और मेरे श्रोता है जो कहते हैं कि यदि आप पहाड़ों को दूर से देखते हैं तो बड़े सुंदर दिखाई देंगे, जितना करीब जाओगे उतना ही ऊबड़ खाबड़ दिखाई देंगे। जैसे चांद को रात में देखते हुए बड़ा ही सुंदर दिखता है, लेकिन साल जब मतलब उस पर जब यान भेजा गया तो उस पर देखा कि उसमें कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं, कितने कैसा अजीब अजीब सा है वो जगह। तो वही है ना कि दूर के ढोल सुहावने, यहाँ से देखने में कितना सुंदर
1: बहुत
0: चमकता है।
1: सुंदर लगता है, हम उसकी तुलना करते हैं हर एक चेहरे से, चांद की तरह सुंदर
0: बिल्कुल
1: चेहरा है ना, चांद जैसा
0: लेकिन
1: हमारा टुकड़ा
0: जी, लेकिन जब से वहां पे पहुंचे तब से थोड़ा
1: पता चलता है कि
0: सा
1: भाई जो है दूर से जो दिखता है वो पास आके पता चलता है कि
0: जी
1: सच्चाई क्या है।
0: जी
1: एक श्रोता लिखते हैं कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं और नजदीक बजे तो डब डब, एक बहुत ही प्रसिद्ध हिंदी मुहावरा है जिसका आम आदमी में भी बहुत प्रयोग होता है। इसका अर्थ है कि जो चीजें या परिस्थितियां हमसे दूर होती हैं, वे हमें बहुत आकर्षक और अच्छी लगती हैं, लेकिन पास आने पर उनकी असलियत समझ में आती है। कहने का मतलब है कि रिश्ता कैसा भी हो, दोस्ती परिवार, और एक दूरी मेंटेन करनी ही चाहिए, तब वो सुंदर लगता है या संभालना अच्छा लगता है। नजदीक जाने पर सुंदरता तो दिखती नहीं, उसकी क्रूरता भी दिखाई देने लग जाती है।
0: बिल्कुल, तो हमारे एक श्रोता, इन्होंने एक गुजराती मुहावरा भी इसको लेके लिखा है कि दूर थी डूंगरा रलिया रलिया मना।
1: रलियामणा
0: जी, यहाँ डूंगरा मतलब पहाड़ या पर्वत, और रलियामणा मतलब सुहाना,
1: सुहाना।
0: यानी मतलब दूर से सुनाई दे रही आवाज या दृश्य सुहाने लगते हैं, जबकि वास्तविकता कुछ और ही होती है। तो वही अभी हमने जो
1: कहा कि पहाड़ों
0: उसको,
1: को दूर से जब
0: हाँ
1: हम देखते हैं, वही एक श्रोता भी लिखते
0: जी
1: हैं कि कई बार क्या है तो दूर से मधुर आवाज लगती है हमें, पास आने पर वही आवाज कानफोड़ लगने लगती है। अनजानी चीजें हमेशा अधिक आकर्षित लगती हैं, वास्तविकता हमेशा बाहरी रूप से अलग होती है।
0: बिल्कुल
1: और वही एक श्रोता कहते हैं कि दूर के ढोल सुहावने ही होते हैं, ये हमारी आदत होती है कि दूसरों को देखकर हम आह भरते हैं कि काश हमारी जिंदगी भी दूसरों की तरह आरामदायक होती, पर
0: जी
1: जब करीब जाकर उनकी असलियत पता चलती है तो लगता है कि भाई हम जैसे हैं
0: वैसे ही
1: अच्छे
0: सही
1: हैं।
0: है। जी, तो बहुत सी चीजें जो हमें दूर से तो वो लगती हैं, जैसे हमारे श्रोता हैं जो लिखती हैं कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं और नजदीक बजे तो, जैसे आपने बताया भी इनके बारे में, तो इन्होंने बताया कि किस किस तरह से कठिनाइयां और कमियां हमारे सामने आती हैं उस चीज के लिए। लेकिन तो बहुत से जो श्रोता है हमारे इसी चीज को लिख रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है, इन्होंने इस
1: बिल्कुल,
0: चीज को
1: लेकिन
0: समझा।
1: यहाँ मैं ये कहना चाहूंगी आरती कि दूर से आरती और मंदाकिनी जैसी सखियां भी बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन यकीनन पास आने पर भी वो
0: अच्छी
1: अच्छी ही
0: लगेगी। ऐसा
1: लगेंगी।
0: नहीं है कि आपको निराशा हाथ लगी या कुछ,
1: हाँ,
0: आप
1: इस
0: बिल्कुल
1: बात
0: हमसे
1: का
0: मिलिए तो हम आपको
1: वैसे
0: और
1: ही
0: बहुत अच्छी
1: लगेंगे
0: तरह से आपसे बात
1: जैसे
0: करेंगे।
1: हम अभी आपको लग रहे हैं।
0: जी
1: ठीक
0: बिल्कुल
1: है,
0: बिल्कुल बिल्कुल।

0: हाँ, तो अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से बजट पे तकरार होती है। तो इस पर हमारे श्रोता ने लिखा है, एक श्रोता में लिखते हैं कि मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि घर के सभी सदस्यों में, खास करके पति पत्नी में, इस बात पर तकरार होती ही है। परंतु स्वयं मैंने धर्म पत्नी और बच्चों को शुरू में ही बैठा कर समझा दिया था कि बेटियाँ और बेटे सभी टॉप कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे थे, जिनके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए कोई भी अननेसेसरी खर्चे हम में से कोई नहीं करेगा, ताकि घर का बजट ना बिगड़े। और माता रानी की कृपा रही कि सभी ने माना और आज तक इस बात पर सभी कायम है, तकरार होने की नौबत ही नहीं आई।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप समझदारी से चले, आपके बच्चे भी समझदार निकले कि इस बात पर तकरार नहीं होती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आम मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है घरेलू बजट पर तकरार होना। जब घर चलाने वाले अतिरिक्त पैसे की मांग करें तो कमाने वाले के मुंह से निकलता है, अरे अभी तो इतना पैसा हो जाता था, पर अब क्या कारण है, मतलब इतने पैसे देता था उसमें तो काम निकल आता था। और फिर पता चलता है कि विवाद सामने आ गया। विवाद का मुख्य कारण लगातार बढ़ती महंगाई, रसोई के सामान, दूध गैस के बढ़ते जो दाम है, घर की भौतिक वस्तुएं, फ्लैट, बच्चों की शिक्षा, ईएमआई, ये सभी जो है मध्यम वर्गीय परिवारों के मासिक खर्चों में जो है भारी वृद्धि हुई है। सभी बातों से सीमित आय और बढ़ते खर्चों के बीच तालमेल न बैठने से घर में तनाव और बहस की स्थिति पैदा हो जाती है।
0: जी, और एक श्रोता जो लिखते हैं कि घरेलू बजट किसी भी परिवार की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ होता है। परिवार की आय और खर्चों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए बजट बनाना बहुत आवश्यक है, लेकिन कई बार यही बजट परिवार के सदस्यों के बीच तकरार का कारण बन जाता है। सीमित आय और बढ़ती महंगाई के कारण जब सभी इच्छाओं को पूरा करना संभव नहीं होता, तब मतभेद पैदा होने लगते हैं। यदि परिवार के सदस्य मिल बैठकर आय, खर्च और बचत की योजनाएं बनाएं तथा एक दूसरे की जरूरतों को समझें, तो अधिकांश समस्याओं का समाधान आसानी से हो सकता है।
1: हाँ बिल्कुल सही कहा। और वहीं
0: जी
1: एक श्रोता लिखते हैं कि घरेलू बजट किसी भी परिवार की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ होता है। परिवार की आय और खर्चों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए बजट बनाना बहुत जरूरी है, लेकिन कई बार यही बजट परिवार के सदस्यों के बीच तकरार का कारण बन
0: जी
1: जाता है।
0: जी
1: सीमित आय और बढ़ती महंगाई के कारण जब सभी इच्छाएं पूरी करना संभव नहीं होता तो मतभेद पैदा होते हैं और परिवार के सदस्यों के बीच में क्या होता है, आपस में
0: जी
1: तनाव
0: देखिए,
1: उत्पन्न।
0: आपका एक आप श्रोता का, आप हम लोगों ने दो दो बार उसको उनको पढ़ लिया,
1: हाँ
0: उनको इतना ज्यादा उनका बढ़िया, उन्होंने इस चीज को लिखा तरीके से समझा के, क्योंकि बजट की जो चीजें होती है ना,
1: बिल्कुल
0: वो यही चीजें होती है, हर घर की समस्या ही यही है, जो कि मतलब जब भी बजट बनाने बैठते हैं ना, तो सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं,
1: बिल्कुल
0: है ना, और सबको लगता है हमारी हमारी बात पूरी की जाए, हमारी बात पूरी की, और इसी बात पे मतभेद पैदा होने शुरू हो जाते हैं परिवार में।
1: बिल्कुल सही कहा, मतभेद नहीं होने चाहिए, है ना।
0: जी बिल्कुल।

0: तो आरती, अब हम अपने श्रोताओं से ये इल्तिजा करते हैं कि उनकी नजरें इनायत बनी रहे, वो हमसे खफा ना हो,
1: हम पे अपनी कृपा बनाए रखिए।
0: तो भाई अब जो है सखी सहेली कार्यक्रम का वक्त खत्म हो चला है और इस कार्यक्रम से अब मंदाकिनी जोशी
1: और आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
0: इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

दोस्तों नमस्कार। सेल्युलॉइड के सितारे इस कार्यक्रम में सेल्युलॉइड के आसमान से पिछले सप्ताह एक सितारा नहीं बल्कि एक चांद उतरा था, 14वीं का चांद।

0: चौदहवीं का चांद यानी अभिनेत्री वहीदा रहमान ने विविध भारती के स्टूडियोज को और सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम को जगमग रोशन कर दिया था। बातों का सिलसिला कुछ इस तरह चला कि हमें प्रोग्राम के वक्त का अंदाजा ही नहीं रहा, इसलिए इस हफ्ते भी वहीदा जी विविध भारती के इस कार्यक्रम को रोशन कर रही हैं और बातें वहीं से शुरू कर रही हैं जहां पिछले सप्ताह छूट गई थीं। वहीदा जी से बातें कर रहे हैं कमल शर्मा।
1: वहीदा जी, गोल्डी साहब का भी जिक्र आया था, फिर वो अधूरा रह गया। गोल्डी साहब का शुमार बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर्स में से होता है और उन्होंने बड़ी कामयाब फिल्में बनाई और आपने भी उनके साथ में काम किया। एक निर्देशक के रूप में, डायरेक्टर के रूप में आपने उनमें क्या खूबियां पाए?
2: वो भी काफी इंटेलिजेंट डायरेक्टर थे।
1: कैसा था उनका काम करने का स्टाइल जो था?
2: वेरी इजी टू वर्क विथ। गाइड में पहले पहले शुरू शुरू में क्या होता था, अगर डायरेक्टर को कोई सजेशन दे, मेरा एक्सपीरियंस है दूसरे आर्टिस्टों का, आई डोंट नो, तो उतना वो लाइक नहीं करते थे। खासकर वो दिमाग में उस वक्त तो ज़्यादा ही था, अभी भी है थोड़ा बहुत, कि उन्हें लगता लड़की का क्या सजेशन लेना चाहिए, ना दैट काइंड ऑफ थिंग। तो गोल्डी में ये बात नहीं थी। तो कभी कभी मैं कहती ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये मुझे नहीं ठीक लग रहा है,

0: हाँ या ना नहीं कहते थे, मगर उस चीज को ले लेते थे। फिर चुपके से उसको करा के मैं कह, अरे मैंने जो कहा वो ही किया ना आपने, तो कहते हाँ तो सही सजेशन था, इसके लिए मैंने किया, यू नो। सो वो बात बड़ी अच्छी थी, और गाइड का ट्रीटमेंट उनका बहुत ही बढ़िया और अच्छा था। खासकर गाइड का एक सीन था जहाँ मैं मुझसे छल किए जाए परफॉर्म करने से पहले, बैक स्टेज पता चलता है कि राजू इज बीन अरेस्टेड फॉर फोर्जरी, और उसके या उससे पहले मार्को आते हैं, अपनी किताब प्रिंट हो चुकी है, तो वो राजू को कहते मुझे अंदर जाना है, मिलना है, जाने नहीं देते, तो वो मना करते हैं। अगर मैंने सोचा अगर आज कल आज की फिल्म होती तो ज़रूर एक वहाँ फाइट होनी थी बिटवीन राजू एंड मार्को, जो उसको इतना डिसेंटली और इतना डिग्निफाइड मैनर में उसको ट्रीट किया। वो खाली सिर्फ टाइट, थोड़ा टाइट करते हैं मार्को की, और ठीक करके कोट कहते नहीं आप नहीं मिल सकते, मैं किताब दे दूंगा, आप जाइए। वो मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा, छोटा सा सीन था मगर बहुत अच्छा लगा, और उसमें दोनों का यू नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स बहुत ही खूबसूरत। ही वॉज अ वेरी गुड डायरेक्टर।
1: लेकिन वो जो गाना है मुझसे छल किए जाए, ये तो जरूर हम सुनाना चाहेंगे।
0: जरूर।

0: वेदा जी, लिविंग लेजेंड में शुमार होता है दिलीप कुमार साहब का, और उनके साथ में भी आपने बहुत काम किया, बहुत एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। खास उससे मुझे यहाँ दिल दिया दर्द दिया याद आ रही है फिल्म, वुदरिंग हाइट्स से मेरे खास से इंस्पायर्ड थी वो फिल्म। दिलीप साहब के बारे में कुछ बताइए।
1: दिलीप साहब के साथ पहली फिल्म थी मेरी दिल दिया दर्द लिया, और फिर उन्होंने मुझे ये किताब दी थी वुदरिंग हाइट्स के, इसको पढ़िए, इससे हमने इंस्पायर करके बना रहे। और मुझसे एक गलती हो गई, जब किताब पढ़ चुकी मैं एक बार सेट पे गई, तो दिलीप साहब ने, कोई और असिस्टेंट ने पूछा, कैसी लगी आपको ये किताब, वही हद तो हम बना रहे हैं। तो मैंने गलती से कह दिया, जी साहब किताब से और फिल्म से कोई ताल्लुक नहीं है। बोले, क्या बात कर रही हैं आप, उसी से तो हम आइडिया लेके बना रहे हैं, मतलब इंस्पिरेशन के साथ। मैंने कहा, वुदरिंग हाइट्स में कहानी का जोर शो होता है जब कैथरीन मर जाती है, उसके प्यार में जो इनका बुरा हाल होता है। यहाँ तो ये रूपा जी जो हैं अंत तक चली हैं और मिल भी जाती हैं, इनमें तो कहाँ से। तो बोले, नहीं नहीं भैया जी, आप बहुत नीम मेक निकालती हैं, अब नहीं उसी से लेते हैं। तो अब पता नहीं दिलीप साहब को सही लगा कि नहीं लगा, आई डोंट नो, बट ही वॉज वेरी नाइस एंड कोऑपरेटिव। और दिलीप साहब की एक बड़ी अच्छी बात थी, अपना शॉट होने के बाद अगर उस वो शॉट में खुद हैं या ना, तो वो दूसरे आर्टिस्ट का देखते रहते थे कि सही हो रहा है कि नहीं। अगर उनको लगता था कि नहीं सही हुआ, तो चुपके से आके कह देते, भाई इसको आप ऐसे ऐसे करें तो नहीं अच्छा होगा, इसको इस तरह करते हैं।
0: आपको कहा?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सबको कहते थे।
0: किस
1: दिल दिल दिया दर्द लिया, उसके बाद कौन सी थी, आदमी, राम और श्याम, इसमें
0: कोई खास सीन याद आता है जिसमें उन्होंने कहा कि?
1: राम और श्याम में एक लाइट सीन था, तो मैं अपने फादर को जाके कह रही हूँ कि एक आदमी मिला और ऐसे हुआ वैसे हुआ, वो गाड़ी जूम करके जाती, वो होता है यूँ होता है, बोले बोले बोले जा रही हूँ। तो मैंने, हम कोडेकनाल में थे होटल में, मैंने कहा साहब डायलॉग दे दीजिए, सीन दे दीजिए, याद करना, नहीं तो आउटडोर में टाइम वेस्ट होगा। और मुझे बहुत ये लगता था कि यू नो प्रिपेयर्ड होना चाहिए। तो कहने लगे, नहीं आपको याद करने की ज़रूरत नहीं। मैंने कहा क्यों, आपने कहा इतना लंबा सीन है। तो मेरी आदत थी यू नो, मेरी हाथ बहुत चला के बात करती हूँ और साउंड्स निकालती हूँ, जैसे उनके जो जो आप बोलती हैं उसको मैंने नोट किया है, आपको वही करना है, मगर जिस वक्त मैं क्या बोलती मुझे क्या पता। तो बोले, एक रफली देख लीजिए, मैं कल दे दूंगा या नहीं तो आज रात को दूंगा मैं सीन। तो फिर भी मैं बड़ी काफ़ी नर्वस थी कि भाई दे दीजिए, याद करने डाला। तो मैं कहूँ कि पढ़ती रही, तो मैंने कहा कि ये क्या है भाई, जूम करके गाड़ी चली गई। तो बोले, मैंने आपसे सुना है वो लफ्ज़। मैंने कहा कब, तो वो आपको याद नहीं होगा, हम नोट करते रहते हैं आर्टिस्ट कब क्या से बिहेव करता है, तो इसमें आपको ज़्यादा तकलीफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपने खुल के, जैसे आप भूल जाइए कि आप ये कैरेक्टर हैं, थोड़ी देर के लिए आप सोच लीजिए मैं वहीदा ही हूँ, हम कैमरा ऑन कर देंगे, सिर्फ थोड़े जो कनेक्टेड जॉइंट के डायलॉग्स हैं वो याद रखे, बाकी अपना कीजिए। मैंने कहा अच्छी बात है।
0: आदमी भी एक थोड़ी सी अलग तरह की फिल्म थी, टफ सा करेक्टर, इसमें भी बड़ा चैलेंजिंग रोल था, क्योंकि ट्रायंगल था, लव ट्रायंगल था आदमी का। इसका कोई गाना सुनवा दिया जाए
1: आदमी का? हाँ, वो जो उनके एक्सीडेंट के बाद एक गाना होता है,
0: आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज ना दे,
1: वो समथिंग। हाँ,

0: अपने समकालीन जो आर्टिस्ट रही, आपकी जो समकालीन अभिनेत्रियां रही, उनमें आपको कौन बहुत पसंद थी?
1: मेरे से पहले जो थे, मतलब मेरे से सीनियर, उसमें मुझे गीता बाली जी बहुत अच्छे लगते थे, फिर नरगिस जी, और मीना जी का क्या था, उनके एक जैसे रोल होने लगे थे, एक टाइप की पर्सनालिटी हो गई थी, हालांकि उनकी जो स्क्रीन प्रेजेंस जो थी वो बहुत ही बढ़िया थी, इट वॉज वेरी कैरिस्मेटिक। उनको देखो तो दिल करता था, कई नज़र इधर उधर नहीं जाते थे, उन्हीं को देखते रहिए, बड़ी ग्रेट फिल्म, आई मीन पर्सनैलिटी थी उनकी। उसके बाद मेरे साथ के वक्त मैं कहूँ साधना बहुत अच्छे थी, और माला सिन्हा, नंदा, ये नहीं कि नंदा मेरी फ्रेंड है, मगर उनकी अपनी एक पर्सनैलिटी थी, बड़ा स्वीट सा चेहरा था।
0: अच्छा, एक क्रिटिक के रूप में कभी अपनी फिल्मों को देखा आपने कि भाई ये सीन ऐसे हो जाना चाहिए था कभी?
1: हाँ, वो तो इसीलिए मैं अपनी फिल्में देखती नहीं हूँ, क्योंकि जब मैं देखती हूँ कि ओ हो इसको, इस सीन को और बेटर गाइड में खुद मैं इतने नुक्स निकालती हूँ कि ओ हो ये क्या किया मैंने, इससे तो ऐसे करना चाहिए था, बेहतर होता था सीन। सो फिर मज़ा ही नहीं आता मुझे, जब तक मैं बिल्कुल बोर होके टीवी लगाऊँ मेरी फिल्म हो तो चलो वक्त गुजारने के लिए देख लेती, मैं कहती अभी जाने दो, हो चुका, अभी मैं क्रिटिसाइज करके क्या फ़ायदा, तो वरना मैं उतना इंजॉय नहीं करती अपनी फिल्में।
0: टीवी की अगर बात करें तो उसमें आज का सिनेमा भी मौजूद है घर में ही, और पुरानी फिल्में भी आती हैं, तो नई फिल्में भी आप देखती होंगी। जब आप उन दोनों को कंपेयर करती हैं, उनका कंपैरिजन करती हैं, तो क्या महसूस होता है आपको?
1: नहीं देखिए, लेटली एक दो साल से कुछ बहुत ही अच्छा दौर आया है, जो हर किस्म की फिल्म बन रही है, मेनली शायद ये मल्टीप्लेक्सेस जो शुरू हो गए हैं, एक थिएटर में हर किस्म की फिल्म चल सकती है, चलती है, मगर थोड़े अरसे पहले कुछ ज़्यादा ही वायलेंट पे बेस्ड होती थी, और कहानियाँ रट्टी पट्टी ये कि दो भाई हैं बिछड़ गए बचपन में, वो माँ होती है एक अच्छी, नेचुरली माँ तो अच्छी होना चाहिए, फिर जो अच्छा लड़का है माँ के साथ रह जाता है, यू नो इट वाज वेरी बोरिंग। अभी थोड़ी वैरायटी आ गई है और बोल्ड सब्जेक्ट्स, और आजकल के जो आर्टिस्ट हैं मेल या फीमेल, वो हर किस्म का रोल करने के लिए तैयार हो गए हैं, जो हमारे ज़माने में नहीं होते थे।
0: आपका एक बेटा है, एक बेटी है, क्या नाम है उनके?
1: वो सब बड़े शर्माते हैं, क्यों कहते हैं आप क्यों हमारा वो करते हैं, एक लड़का एक लड़की हो बस।
0: वो फिल्में देखते हैं आपकी?
1: मेरी फिल्में इतनी नहीं देखते हैं, कभी देखी नहीं उन्होंने। मेरी लड़की और लड़के ने कनाडा में ग्रेजुएशन किया, अच्छा। टोरंटो में, तो वहाँ मेरी लड़की ने फिल्म स्टडीज की, तो फिर एक बार वापस जो हिंदुस्तान आई तो कहने लगी जो प्यासा में ऐसी है प्यासा में, मैंने कहा बेटा आपने प्यासा कब देखी, आपको तो अच्छी नहीं लगती थी हमारी मेरी फिल्में देखना, तो बोले टोरंटो में देखी। ओह, मैंने कहा अच्छा थिएटर में लगी थी प्यासा, तो बोले नहीं कॉलेज में देखी, मैंने कहा कॉलेज में प्यासा कैसे दिखाई गई, तो कहने लगे वहाँ के आर्काइव में प्यासा रखी हुई है। मेरे ख्याल से गुरुदत्त जी की एक दो फिल्में हैं, तो आई फेल्ट वेरी प्राउड कि वाह क्या बात है, तो उसने कहा मैंने प्यासा देखी है। अब वो ख्वाहिश जाहिर कर रही हैं, और दोनों बच्चे मेरे, कि हम अब आपके साहब बीबी और गुलाम देखना चाहते हैं।
0: तो यहाँ प्यासा का भी जिक्र आया है और साहब बीबी गुलाम का भी आया है, साहब बीबी गुलाम का, तो इन दोनों में से कोई किसी एक फिल्म का ही गाना और हो जाए उसमें।
1: प्यासा का वो है ये दुनिया में, हाँ नहीं, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला,

0: वेदा जी, दिल दिया दर्द लिया में प्राण साहब का भी एक बहुत ही अलग तरह का रोल था और विलन थे उसमें, और सिनेमा के बहुत ही नामी कलाकार तो हैं ही, उनसे भी जुड़ा कोई संस्मरण हम जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि उनके साथ में भी आपकी कई फिल्में आई, राम और श्याम में भी वो खलनायक थे।
1: बहुत फिल्मों में थे, पत्थर के सनम, राम और श्याम, दिल दिया दर्द लिया, आदमी, तो ये बहुत इतने बुरे, मतलब यू नो टू हेट हिम ऑन द स्क्रीन, मगर उतने जेंटलमैन थे लाइफ में, बहुत ही शरीफ। और उनकी एक अजीब बात थी, उन्होंने मुझे कहा, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ सुन के, कि उन्होंने जिंदगी में कभी कोई फल नहीं खाया, वो फल खा नहीं सकते क्योंकि फल की खुशबू से तक उनको मतली आती थी। मैंने कहा अच्छा, ये पहली बार सुना मैंने, वैसे इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, और जोक्स बहुत क्रैक किया करते थे, इट वॉज अच्छा लगता था।
0: लेकिन उन्होंने कामयाबी का फल अच्छा
1: बिल्कुल
0: चखा। आपकी फिल्मों की अगर हम बात करें तो मुझे दो तीन फिल्में और बहुत याद आती हैं, रुला भी देती हैं, उसमें एक मास्टरपीस है आपकी एक और फिल्म, तीसरी कसम, शैलेंद्र साहब उससे जुड़े हुए थे, जिनकी बड़ी दर्दनाक, फिर उसके साथ में जो घटना ट्रेजेडी हुई उसके साथ में, वो भी राज कपूर साहब आपके उसमें नायक थे, और मेरे ख्याल से बासु भट्टाचार्य साहब ने उसको डायरेक्ट किया था, उसके बारे में जरूर बताइए, उस फिल्म के बारे में। एक तो उसमें वो पूरी कमाल की है वो फिल्म, आज भी उसको जितनी बार देखा जाए ऐसे मन ही नहीं भरता उस फिल्म को।
1: उसकी बड़ी सिंपल कहानी थी, बड़ी सिंपल स्वीट पिक्चर थी, मगर उसकी फिलॉसफी बहुत डीप थी, उनके गानों में भी सिंपल वर्ड्स थे मगर उसकी मीनिंग, उसकी फिलॉसफी में बहुत डेप्थ थी। और आप मानोगे नहीं, आधी से ज़्यादा फिल्म बनी थी बिना, मतलब एक सीन में मैं और राजी हैं तो मैं नहीं हूँ, यानी तो राजी नहीं है, तो डायरेक्टर ने बड़ी मुश्किल से ये नहीं, क्योंकि वो बहुत देर से आते थे सेट्स पे, और वो बहुत मसरूफ थे, अपने संगम बन रही थी उसके बाद, हाँ संगम बन रही थी उस वक्त, वो इतने ज़्यादा उसमें जुड़े हुए थे, मसरूफ थे, तो इसको उन्होंने इतनी तवज्जो नहीं दी, उन्होंने इसलिए की क्योंकि शैलेंद्र उनके दोस्त थे और वो उसके प्रोड्यूसर थे। बड़ी मुश्किल होती थी, मगर देख के फिल्म मुझे खुद ताज्जुब होता था, ये कैसी बनी फिल्म, क्योंकि कई दफ़ा सीन्स में एक बैक शॉट ले लिया कंबाइंड, उसके बाद मेरे क्लोजअप हो रहे हैं, और मेरे से बैक शॉट ले लिया तो उसके बाद राज साहब के क्लोजअप हो रहे हैं, मगर सीन टोटली ऑन द स्क्रीन एक सीन होता था। तो बड़ी वैसे हालात में फिल्म बनी, और फिर वो मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में ऑफिशियल एंट्री थी, उसके लिए हम साथ गए थे मैं और राज जी, और वाकई में मैंने देखा राज जी यूज्ड टू गेट मॉब्ड इन मॉस्को, लिटरली राजू राजू राजू यू नो बहुत, और जो जो रशियन था वो उनके पूरे गाने, एक क्या 420 और फिल्मों के गाने आवारा के सब गाते थे।
0: वेदा जी, इस फिल्म में नौटंकी वाली का एक किरदार किया था, और म्यूजिक भी उसमें काफी कुछ उसी तरह का था, शंकर जयकिशन साहब का संगीत था। इस फिल्म में क्या आपको संतुष्टि मिली भूमिका निभा करके, तीसरी कसम की अगर मैं बात करूं?
1: हाँ, मुझे अच्छा लगा था क्योंकि वो भी एक डिफरेंट कैरेक्टर था, यू नो, और सिंपल एंड वेरी स्वीट, उससे वो फिल्म कभी भी देखो बोर नहीं लगती है, यू नो, अच्छी लगती है, दिल को छूती है।
0: कुछ चीजें ऐसी कि जैसे सेल्यूलॉइड पर पोएट्री किसी ने लिख दी, कुछ उसी तरह की वो फिल्म है, उसमें भी गाने बहुत अच्छे थे। एक गाना उस फिल्म का हम सुनवाए,
1: सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, हमें तो पैदल ही जाना है।

0: बासु भट्टाचार्य, उन्होंने हालांकि बड़ी ऑफ बीट फिल्में बनाई, समानांतर सिनेमा से भी उनका नाम जोड़ा जाता रहा, पैरेलल सिनेमा से, और इस फिल्म में उनके साथ में काम करने का मौका मिला आपको, बिमल रॉय साहब के साथ में उनका लंबा एसोसिएशन रहा, उनको कैसा निर्देशक पाया आपने?
1: पहले उनको समझना जरा मुश्किल था, क्योंकि वो नेचुरली उनकी पहली फिल्म थी तो वो बड़े टेंस रहते थे, और फिर अक्सर उनको उनका कैमरामैन के साथ ये नोकझोंक हो जाती थी छटपट। और फिर एक बार राजू ने कहा, वहीदा जी ये क्या हो रहा है, कुछ मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने उनसे कहा, तो वो बेचारे नए हैं तो आप उनको बता दीजिए कुछ गलत हो रहा है। तो कहने लगे, नहीं मेरा ये प्रिंसिपल है, जब मैं एक्टर बनता हूँ मैं सिर्फ एक्टर रहता हूँ। मैंने कहा, मैं मानती हूँ मगर आप इतने पुराने डायरेक्टर हैं, बेचारा वो नया है, उसकी मदद करो, तो फिर मुझे क्यों कह रहे हैं आप? तो बोले, कोई तो चाहिए ना कंप्लेन करने के लिए। तो मैंने कहा, आपको क्या मैं ही मिली जो आप मुझे कंप्लेन क्यों कर रहे हैं? उससे मैं और परेशान हो रही हूँ कि आपको लग रहा है गलत तो है, तो क्या करें। तो ऑन द होल जब फाइनली फिल्म बनी तो बहुत अच्छी बनी थी, तो हमने कहा वेल ठीक हो गई।
0: वेदा जी, आपने सत्यजीत रे साहब की भी किसी फिल्म में काम किया, कौन सी फिल्म थी वो?
1: अभिजान।
0: अभिजान बंगला आपको आती
1: नहीं? उसमें इतनी ज्यादा शुद्ध बंगाली बोलने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कहा ये बिहारी लड़की है, टूटी फूटी बंगाली और भोजपुरी जबान बोलती है, तो उसमें कोई मुश्किल नहीं होगी आपको। तो मगर जब उसका ऑफर आया, मुझे बहुत बेहद खुशी हुई और ताज्जुब भी हुआ।
0: उसके पहले आपने उनकी कोई फिल्म देखी थी सत्यजीत रे साहब?
1: हाँ, पाथर पंचली देखी थी। अच्छा। उसके बाद भी और दो तीन फिल्में देखी थी मैंने, तो आई वॉज रियली वेरी थ्रिल्ड और बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। और
0: उन्होंने क्या कहा के बारे में? उनको कैसा लगा आपका काम?
1: हाँ, उन्होंने कहा, जब हम डिस्कस कर रहे थे सौमित्री चटर्जी और हम, उनके वो फेवरेट एक्टर थे, तो कि इस कैरेक्टर को किसको लिया जाए, क्योंकि कोई प्योर बंगाली की ज़रूरत नहीं है, जो जबान जो बोलती है उसके लिए। तो सब ने कोरस में कहा है वहीदा रहमान। तो मैंने कहा सच? तो बोले आई वॉज रियली थ्रिल्ड। और उनका समझाना और शॉट लेना इतना प्रिसाइज होता था, ना वक्त ज़ाया होता था ना नेगेटिव ज़ाया। वो तो कहते थे, भाई मेरा नेगेटिव इतना निकलता है, इससे कोई चूड़ियाँ प्लास्टिक की चूड़ियाँ भी नहीं बन सकती हैं, क्योंकि आई कांट अफोर्ड, क्योंकि इतने छोटे बजट पे फिल्म बनती है। हम नहीं कह रीटेक्स इतने सारे 20-25 रीटेक हो रहे हैं, या इतने ज़्यादा शॉट्स ले लिए उसके बाद निकाल के फेंक दिया। मैं दिमाग में पेपर पर लिख लेता हूँ कि इसकी टाइमिंग इतनी इतना ही होगा शॉट, उससे शायद 3-4 फुट ज्यादा एक्स्ट्रा मिलेगा आपको शुरू के लिए या एंड के लिए, वरना नहीं।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे, इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं जानी मानी अभिनेत्री वहीदा रहमान, इनसे बातचीत कर रहे हैं कमल शर्मा। सुनिए आगे की बातचीत।
0: दूसरे डायरेक्टर्स आए तो फिर भी कहीं ना कहीं मोल भाव तो हो ही जाता है पैसे को लेकर के। जब उनका ऑफर आया, पैसे की क्या बात हुई? पैसे आपने
1: सवाल ही नहीं पैदा हुआ था, वो ऑलरेडी वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट 10 डायरेक्टर्स में थे। तो पैसा, देखिए हम पैसे के लिए जरूर करते हैं, आफ्टर ऑल इट्स अ प्रोफेशन, कोई चैरिटी तो नहीं कर रहे। मगर कई दफ़ा जैसे रेशमा शेरा मैंने की, सुनील जी ने कहा था ये 25-30 में बनेगी, और आप कहिए, क्योंकि उस वक्त सुखदेव डायरेक्टर थे, सुखदेव या खुद सुनील या मैं, कोई आर्टिस्ट पैसे नहीं लेगा, जब पिक्चर ख़त्म हो जाएगी तो हम पैसे लेंगे और बिक जाएगी। तो वो उसके इतने मुश्किलात से गुजर रहे थे वो, तो उस फिल्म में मैंने नहीं पैसे लिए रेशमा शेरा में। और जब सत्यजीत ने कहा, मैंने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं आपसे पैसे की बात करूं। कई दफ़ा आर्टिस्ट अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए या बहुत बढ़िया डायरेक्टर के लिए काम करते हैं, बिना पैसे के या बहुत कम पैसे, जो डायरेक्टर के मन में आए तो दे दे, तो दे दे, नहीं तो नहीं।
0: आपकी एक फिल्म और है बांग्ला, जीवन जीरो को।
1: हाँ, वो नहीं ठीक बनी, मैंने हालांकि देखी भी नहीं, क्योंकि उसमें बनती रही रुकती रही, उसमें कोई एक्सीडेंट आग हो गया था, तो उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर कुछ अरेस्ट भी हो गए थे, कॉम्प्लिकेशंस थे, तो वो ठीक से मुझे मज़ा नहीं आया वो फिल्म में काम करके।
0: मनोज कुमार साहब का नाम आया था, मनोज जी का नाम लिया जाता है बड़े ही सफल बड़े टैलेंटेड डायरेक्टर्स में से, जैसे गोल्डी साहब को लोग याद करते हैं, तो कहते हैं कि मनोज साहब, ये छोटा मुंह बड़ी बात होगी, कहते हैं कि वो एक्टर से बेहतर डायरेक्टर है। आप क्या कहेंगे उनके बारे में, कैसे उनके साथ में काम?
1: नहीं, आई एग्री विथ हिम, वो आई एग्री विद यू, इज अ बेटर डायरेक्टर देन एन एक्टर.
0: कोई यादगार घटना है उनके साथ?
1: उनके साथ एक फिल्म बनी थी पत्थर के सनम.
0: जी जी.
1: तो वो बैठ के, उस वक्त क्या होता था कि मोबाइल फोन्स नहीं थे और एसी मेकअप रूम नहीं होते थे, ना वैन्स होते थे, तो हम ज्यादातर एक बार सेट पे गए तो सेट पे ही बैठे रहते थे जब तक लंच ब्रेक ना हो या पैकअप ना हो. तो आपस में बैठ के बातें करते थे जब लाइटिंग हो रही हो. तो सब एक्टर्स हम साथ में, पिछली शूटिंग कौन सी थी, क्या सीन था, वो डायरेक्टर कैसे हैं, ये बातें करते थे. तो मनोज हमेशा अपनी कहानियाँ, अपने सीन्स सुनाया करते थे. तो उससे मुझे लगा कि यार लिखते बहुत अच्छा है. तो पत्थर के सनम के डायरेक्टर को मैंने कहा, इन चंद सीन आप इनसे लिखवाया कीजिए, लिखवाइए, क्योंकि बहुत अच्छा लिखते हैं. तो बोले अच्छा क्यों? मैंने कहा ये सीन्स अपने फिल्मों के सुना रहे हैं तो उससे लगता है कि बात है इस आदमी में. तो काफ़ी सारे पत्थर के सनम के सीन्स उन्होंने फिर मनोज से लिखवाए, यू नो. तो लाइट सीन्स वगैरह बहुत अच्छे थे.
0: अच्छा वहीदा जी, फिल्मों में तो गाने पिक्चराइज किए जाते हैं, आपके ऊपर बहुत सारे गाने हैं, और वो फिल्में जब उतर भी जाएं सिनेमा हॉल से, लेकिन गाने तो गूंजते रहते हैं, रेडियो से हम आज तक सुना रहे हैं लोगों को.

0: लता जी ने आपके लिए बहुत सारे गाने गाए हैं। लता जी से कोई इंटरेस्टिंग मुलाकात याद है आपको? उन्होंने उनको वो गाना आप पे जब जो पिक्चराइज हुआ उसको देख करके उनको मजा आया होगा, आपको मजा आया होगा वो गाना जो उन्होंने आपके लिए गाया हो।
1: लता जी ने कहा, मुझे बाद में कई डायरेक्टरों ने भी कहा, वो हमेशा पूछा करती थी कौन सा आर्टिस्ट परफॉर्म करने वाला है, तो वो बताते थे कि नूतन या मीना कुमारी हुआ वो। तो एक बार एक म्यूजिक डायरेक्टर ने पूछा, ये क्या फ़र्क पड़ता है आपको, गाने से मतलब है, आर्टिस्ट क्यों पूछते हैं? तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं जब उनकी फिल्में देखती हूँ या पर्सनली मिलती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ कि वो कैसे बिहेव करते हैं, कैसे बोलते हैं, कि ये मैं उसमें अल्लाप लूँ या इस ढंग से गाऊँ, तो क्या वो करेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा कि नहीं। तो वो भी बहुत इंटेलिजेंट आर्टिस्ट हैं, तो वो हमेशा पूछती हैं। तो एक वक्त क्या हुआ, वो उनको चॉकलेट्स का बहुत शौक़ है, तो बांग्लादेश की वॉर जब हुई तो मैं प्रोग्राम कमेटी में थी, तो मेरा जिम्मा था कि फंड कलेक्ट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो मैंने इंडस्ट्री को जमा करके बहुत बड़ा शो किया था, और लता जी मान नहीं रही थी। कल्याण जी, आनंद जी भाई जाके बहुत कहा, फिर सुनील नरगिस ने कहा कि लता जी आ जाइए इस शो में, बहुत अच्छा होगा, बहुत बड़ा शो होने वाला है। तो पता नहीं क्यों उन्होंने कहा, नहीं, बहुत बरसों से मैंने हिंदुस्तान में शो करना छोड़ दिया। तो फिर कल्याण जी भाई से मैंने कहा, चलो एक बार आखिरी बार कोशिश करते हैं। कहीं रिकॉर्डिंग स्टूडियो में उनकी गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी, तो हम पहुंच गए बिना अपॉइंटमेंट के। वो देख के फिर चौंक गए कि ये फिर आ गए। तो बस ब्रेक हुआ तो मैंने कहा, लता जी आपके बगैर शो पूरा नहीं होगा, और किशोरदा

0: अनगे हैं तो वो कहते कि लता के बगैर मुझे नहीं मजा आएगा, ये क्या बात है ये। नहीं क्योंकि तुम क्यों नहीं मानती, मुझे सुलीन ने भी कहा, नरगिस जी ने भी कहा, मैं नहीं करती। पता नहीं क्यों अचानक मेरे दिमाग में एक बात आई जो जबान से निकल गई, जो बहुत उसका फायदा हुआ। मैंने कहा लता जी क्या है, हिंदुस्तान में सिर्फ दो हीरोइंस हैं। तो वो देखने लगी, बोले दो कौन? मैंने कहा एक इंदिरा गांधी जी हैं, फिर एक आप हैं। तो वो इतनी ऐसे मुंह खुला देखने लगी, और फिर कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई मुझे देखने लगे, ये क्या बोल रहे हैं। वो बोल के एक सेकंड के लिए सन्नाटा हो, मैंने सोचा गलत कहा है कि सही कहा, मेरी समझ में नहीं आया। तो फिर वो मुस्कुराने लगे, तो बोले अच्छा भाई तुम तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती हो, अच्छा आ
1: कहीं
0: जाऊंगी।
1: कहीं लड़ियाना पड़ता है, मान मनावर सब चलता है ना, तो फिर वो आई
0: या
1: उसमें। तो यहाँ लता जी का कौन सा गाना आप सुनवाना चाहेंगे जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है?
0: का हम दोनों का गाना, अल्लाह तेरो नाम ईश्वर
1: वाह,
0: तेरो नाम, मैं जब भी सुनती हूँ चुपचाप खामोशी से तो मेरा दिल भर आता है। तो मुझे वो बहुत ही अच्छा लगता है गाना। उनके तो खैर वो इतने हैं, मुश्किल है ढूंढना या चुनना।

0: खामोशी जो है अंदर की जो पीड़ा है वो जिस तरह से वो अंदर ही अंदर बर्दाश्त कर रही चीजों को वो रुला देती है वो। ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही कठिन रोल है जिसमें आपके पास में संवादों से ज्यादा आपको अपने चेहरे से अपनी आंखों से बात करनी है। कोई यादगार घटना है इस फिल्म से जुड़ी हुई?
1: तो वो सीन डिफिकल्ट था, हालांकि उसमें डायलॉग्स नहीं थे। जब राजेश खन्ना के साथ, राजेश खन्ना को इससे ज्यादा लगाव हो जाता है, पहले केस में इसको धर्मेंद्र के साथ लगाव होता है, तो वो चले जाते हैं शादी करके जब ठीक हो जाते हैं। तो फिर जब दोबारा ये रिपीटेशन होता है तो डॉक्टर कहते हैं कि हमारे प्रोफेशन में आपको ऐसा लगाव होना नहीं चाहिए, यू नो, ये मुश्किल बात है। तब इसको महसूस होता है कि अब ये कैरेक्टर को इससे लगाव हो गया है, अब कैसे बचे। तो वो उसको बड़ा समझाने की कोशिश करती, होता नहीं है, तो वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है। वो बड़ा कठिन सीन था क्योंकि वो दरवाज़ा ठोक रहा है, पीट रहा है, आवाज़ें दे रहा है, राधा राधा राधा, और वो कमरे से निकलती नहीं है। कैसे वो अपने आप को कंट्रोल करती है, और उसका स्ट्रेन उस पर इतना पड़ता है कि वो देन शी गोज मैड। तो वो बड़ा डिफ़िकल्ट सीन था। और एक डिफ़िकल्टी हो रही थी क्योंकि जैसे मैं राजेश को बोट राइड पर ले जाती हूँ, वो गाना गा रहे हैं और मैं उसके साथ हूँ एज ए नर्स, और वो इसको सोच रहा है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मुझे भी, मैं प्यार कर रहा हूँ तो ये भी शायद मुझे प्यार कर रही है। उसमें उस वक्त प्रॉब्लम क्या हुई थी, इट वाज वेरी कॉमिकल, इट वाज मेरे जो एक्सप्रेशन थे सीरियस थे, क्योंकि वो महसूस कर रही है ओह ये तो फिर से गड़बड़ हो रही है, अब इसको मेरे से लगाव होने लगा है। वो गाना गा रहे हैं और मैं सोच रही हूँ कि अब कैसे इसको मैं दूर करूँ और कैसे समझाऊँ। तो उस वक्त राजेश खन्ना नए नए थे तो वो लिप मूवमेंट नहीं कैच कर पाते थे, और जब ऐसे हम एम्ब्रेस कर रहे हैं तो कैमरा पीछे जाता था, तो मैं, राजेश कहते थे वहीदा जी प्लीज़ हेल्प मी, तो मेरा स्टार्टिंग दे दीजिए।

अब उनके गाना उनका है तो मैं कहती थी ये शाम कुछ अजीब है, फिर वो कैमरा आ जाता था, मैं फिर चुप उदास चेहरा लेके, बड़ी मुश्किल हुई, बड़ी मुश्किल हुई, और हंसते थे। मैंने कहा राज

0: नमस्कार। मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। अपनी सांध्यकालीन सभा का आरंभ हम कर रहे हैं न्यूज़ हेडलाइंस के साथ, जिसे हम अपने भोपाल केंद्र से रिले कर रहे हैं। उसके बाद आप सुनेंगे युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 दिन के दौरे पर फ्रांस के एवेन शहर पहुंच गए हैं। शिखर सम्मेलन कल शुरू हुआ। एवेन पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि वे विश्व नेताओं के साथ बातचीत करने और प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए उत्सुक हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि युवा संसद इस लोकतांत्रिक संस्कृति के लिए एक सशक्त मंच है। ये युवाओं में नेतृत्व, कर्तव्य बोध, तार्किक सोच और राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने से मूल्यों को विकसित करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 से 22 जून तक मध्य प्रदेश के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे इंदौर, बैतूल, ओमकारेश्वर, जबलपुर, ग्वालियर और कुनो अभयारण्य जाएंगी। वे 20 जून को शाम करीब 6 बजे जबलपुर पहुंचेंगी। इस दौरान वे 2 प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल होंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा 2026 के लिए प्रवेश पत्रक डाउनलोड करने की सुविधा शुरू होने के 24 घंटे के भीतर ही 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्रक डाउनलोड कर लिए हैं। और मौसम विभाग ने प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून के 18 से 19 जून के बीच प्रवेश करने की संभावना जताई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

महकती शाम का पैगाम लेकर आए हैं, कुछ नए ख्वाब और अरमान लेकर आए हैं। मुस्कुराइए, गुनगुनाइए और साथ रहिए, क्योंकि हम आपके लिए आपका पसंदीदा कार्यक्रम लेकर आए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम युवाओं की वाणी युववाणी में, और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त महिमा सक्सेना। तो आइए इस सुहानी शाम में संगीत के रंग घोलते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म तारा रंपम से। इस गीत के गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीतकार हैं विशाल शेखर, और इस गीत को अपनी आवाज से सजाया है के और श्रेया घोषाल ने।

दोस्तों कहते हैं घर से दूर जाना आसान नहीं होता, लेकिन कुछ सपने ऐसे होते हैं जो अपनों के लिए देखे जाते हैं। कोई शहर बदलता है तो कोई देश, पर हर महीने घर पहुंचने वाली मेहनत की कमाई कई बड़े सपनों को जिंदा रखती है। जी हाँ दोस्तों, दूरियां सिर्फ जगहों की होती है, दिलों की नहीं। घर से दूर रहकर काम करने वाला हर युवा अपने सपनों के साथ साथ अपने परिवार की उम्मीदों को भी साथ लेकर चलता है। उसकी कमाई जब घर पहुंचती है ना, तो वो सिर्फ पैसे नहीं होते, बल्कि माता पिता के चेहरे की मुस्कान, बच्चों की पढ़ाई और परिवार के बेहतर भविष्य का सहारा बन जाती है। इसी भावना को सम्मान देने के लिए हर वर्ष 16 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेक्षण दिवस, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस। रेमिटेंस यानी अपने परिवार के लिए पैसे भेजना। दुनिया भर में लाखों लोग रोजगार, शिक्षा और बेहतर अवसरों की तलाश में अपने घरों से दूर रहते हैं और अपनी मेहनत की कमाई का एक हिस्सा अपने परिवार तक पहुंचाते हैं। यही मदद किसी बच्चे की पढ़ाई, किसी बुजुर्ग के इलाज, किसी छोटे काम और परिवार की रोजमर्रा की जरूरतों का सहारा बनती है। साथियों, इस वर्ष की थीम है रिमिटेंसेस फॉर रूरल रिजिलियंस, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी पारिवारिक सहयोग के जरिए गाँव को मजबूत बनाना, नए कामों को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर बढ़ाना। आज का युवा सिर्फ अपना भविष्य नहीं बना रहे, बल्कि अपने परिवार और समाज की तरक्की में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। ये दिन हमें याद दिलाता है कि अपनों के लिए किया गया हर छोटा प्रयास कई बड़े सपनों को सच कर सकता है, क्योंकि अपनों के लिए भेजी गई हर छोटी सी मदद सिर्फ जरूरत ही पूरी नहीं करती, बल्कि सपनों को उड़ान भी देती है। इसी सोच और अपनेपन के साथ मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेक्षण दिवस। तो दोस्तों, बातों का यह सिलसिला थोड़ी देर के लिए यहीं थामते हैं और सुरों की दुनिया में एक बार फिर से दस्तक देते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला फिल्मी गीत फिल्म दे दनादन से, राहत फतेह अली खान की आवाज़ में।

दोस्तों कहते हैं सफर की असली खूबसूरती सिर्फ मंजिल तक पहुंचने में नहीं होती, बल्कि उस सफर को समझदारी से तय करने में होती है। जरा सी सावधानी जहां जीवन को सुरक्षित बनाती है, वहीं छोटी छोटी अच्छी आदतें समय पर पैसे और ईंधन तीनों की बचत कर सकती है। दोस्तों आज की तेज रफ्तार जिंदगी में वाहन हमारी रोजमर्रा की जरूरत बन चुके हैं, लेकिन बढ़ती ईंधन की खपत और प्रदूषण हमारे सामने एक बड़ी चुनौती भी है। ऐसे में स्मार्ट ड्राइविंग केवल एक अच्छी आदत नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है जो हमारी जेब, हमारे पर्यावरण और हमारे भविष्य तीनों से जुड़ी हुई है। स्मार्ट ड्राइविंग का मतलब है जल्दबाजी नहीं, समझदारी। अक्सर हम तेज रफ्तार, बार बार ब्रेक लगाने या बिना जरूरत वाहन चालू रखने जैसी आदतों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन यही छोटी छोटी बातें ईंधन की खपत बढ़ा देती हैं। वहीं अगर हम बात करें तो दोस्तों वाहन की समय पर सर्विस, सही हवा वाले टायर और संतुलित गति से चलने जैसी आदतें ईंधन की बचत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इतना ही नहीं, छोटी दूरी के लिए पैदल चलना या फिर साइकिल का उपयोग करना और एक ही दिशा में जाने पर कार पुलिंग या सार्वजनिक परिवहन को अपनाना भी एक समझदारी भरा कदम है। इससे न केवल ईंधन की बचत होती है बल्कि सड़क पर वाहनों की भीड़ और प्रदूषण भी कम होता है, क्योंकि दोस्तों आज का युवा बदलाव की ताकत रखता है और उसकी छोटी छोटी अच्छी आदतें समाज में बड़ा परिवर्तन ला सकती हैं। स्मार्ट ड्राइविंग अपनाकर हम न केवल अपने खर्च को कम कर सकते हैं बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, क्योंकि समझदारी से किया गया हर सफर सिर्फ ईंधन की बचत नहीं करता बल्कि एक सुरक्षित, स्वच्छ और बेहतर भविष्य की राह भी बनाता है। इसीलिए सुरक्षित चलें, स्मार्ट चलें और अपने साथ साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक बेहतर कल का निर्माण करें। तो चलिए दोस्तों अब सुनते हैं फिल्म संगीत में अगला फिल्मी गीत, फिल्म कलंक से। इस गीत में स्वर है अरिजीत सिंह के, इस गीत के संगीतकार हैं प्रीतम।

दोस्तों अब वक्त हो चला है आज की रोजगार सूचना का। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रेंटिस के 4,500 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रियाएं 12 जून 2026 से शुरू हो चुकी है, जिसकी अंतिम तिथि 22 जून 2026 है। योग्यता है उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी ग्रेजुएट

होना जरूरी है। आप और अधिक जानकारी के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट centralbankofindia.co.in पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की रोजगार सूचना। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं एक प्यारा सा गीत फिल्म बागी 2 से जुबिन नौटियाल की आवाज में।

दोस्तों, यूं ही मन में ख्याल आया कि जून के महीने के इस मौसम की थोड़ी सी बात कर ली जाए। जून के महीने की शामों का अपना ही रंग होता है। दिन भर की धूप के बाद चलती हल्की हवाएं और आसमान में बिखरे बादल मन को एक अलग सा सुकून दे जाते हैं। और साथियों, सच में ऐसे ही छोटे छोटे मौसमी रंग हमारी शामों को और भी खूबसूरत बना देते हैं। अब दोस्तों देखिए ना, आपसे बात करते करते वक्त का पता ही नहीं चला। हमें उम्मीद है आज के इस कार्यक्रम में आपको हमारी बातें पसंद आई होंगी। अब चलते चलते सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म मौसम से, राहत फतेह अली खान की आवाज़ में।

दोस्तों, इसी के साथ कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। अब मुझे अपनी रेडियो दोस्त महिमा सक्सेना को दीजिए इजाजत, और चलते चलते आपको एक आखिरी गीत सुनवाते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का कार्यक्रम युवावाणी, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं। लीजिए सुनते हैं फिल्म संगीत इन संदेश के बाद।

फिल्म संगीत का पहला गीत हमने लिया है फिल्म दिल तो पागल है। इस फिल्म से लता मंगेशकर के साथ उदित नारायण की आवाज़ है। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत की धुन बनाई है उत्तम सिंह ने और इस फिल्म के सितारे आपको याद होंगे। इसमें थे शाहरुख खान, करिश्मा कपूर और माधुरी दीक्षित।

फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से। धड़कन फिल्म का गीत अब आपको सुनवाते हैं नुसरत फतेह अली खां और साथियों का गाया। इस गीत को लिखा है समीर ने, संगीतबद्ध किया नदीम श्रवण ने। धड़कन फिल्म के गानों की यह खासियत है कि इसके सारे ही गीत सुपर डुपर हिट थे और धड़कन फिल्म के सितारे थे शिल्पा शेट्टी, सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में अगला गीत हमने लिया है फिल्म लम्हे से। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और ईला अरुण की, गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीत है शिव हरी का।

लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है फिल्म परिचय का यह गीत, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, माफ कीजिएगा, गीत को लिखा है गुलजार ने, संगीत दिया है आर डी बर्मन ने, आवाजें हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। कार्यक्रम विवरण।

अब से कुछ ही देर में यानी कि 6 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। यह कार्यक्रम NCERT द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। 6:30 का समय होगा लोक संगीत का। आज के कलाकार होंगे दीप चंद खातरकर।

0: रात 10 बजे शास्त्रीय संगीत में आप सुनेंगे पंडित शिव कुमार शर्मा का संतूर पर बजाया राग किरवानी। तबला पर संगत देंगे शफाकत अहमद खान। 8 बजे आप सुनेंगे सुर्खियों में स्पॉटलाइट, यह कार्यक्रम आप सुनेंगे 9:15 पर। यह कार्यक्रम दिल्ली से प्रस्तुत किया जाएगा। छह बजकर 45 मिनट का समय होगा सुगम संगीत का। आज के कलाकार होंगे प्रकाश तिवारी। मन भावन, यह कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 10:30 पर। अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 दिन के दौरे पर फ्रांस के एवियन शहर पहुंच गए हैं। शिखर सम्मेलन कल शुरू हुआ। एवियन पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि वे विश्व नेताओं के साथ बातचीत करने और प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए उत्सुक हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि युवा संसद इस लोकतांत्रिक संस्कृति के लिए एक सशक्त मंच है। ये युवाओं में नेतृत्व, कर्तव्य बोध, तार्किक सोच और राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने जैसे मूल्यों को विकसित करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 से 22 जून तक मध्य प्रदेश के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे इंदौर, बैतूल, ओंकारेश्वर, जबलपुर, ग्वालियर और कुनो अभयारण्य जाएंगे। वे 20 जून को शाम करीब 6 बजे जबलपुर पहुंचेंगे। इस दौरान वे 2 प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार

0: कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा 2026 के लिए प्रवेश पत्रक डाउनलोड करने की सुविधा शुरू होने के 24 घंटे के भीतर ही 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्रक डाउनलोड कर लिए हैं और मौसम विभाग ने प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून के 18 से 19 जून के बीच प्रवेश करने की संभावना जताई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: बदंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। आप सबको विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ जिसे हमें भेजा है
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल रंजीत कौर जयप्रकाश राहुल प्रियंका और मन्नत जी ने। लिखते हैं
3: मानव की इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती
2: जी।
3: एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जाग जाती है। हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए और जो मिल जाए उसी में संतोष करना चाहिए।
2: धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
3: तो पहला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी निगहत परवीन अब्बासी शाहनवाज अब्बासी सरफराज अब्बासी।
2: कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा जी।
3: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा प्रकाश अरोड़ा चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है
2: सप्रेम नमस्ते जी। गर्मी की छुट्टियों में बच्चे पेड़ पौधे लगाना पक्षियों को दाना खिलाना डायरी लिखना और दादा दादी नाना नानी के यहाँ जाना कार्य कर सकते हैं।
3: आगे आप लिखते हैं सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी उमंग कार्यक्रम में गर्मी से संबंधित विषय पर जानकारी एवं जो अन्य कार्यक्रम सुनाए जा रहे हैं बेहद पसंद आ रहे हैं। कार्यक्रम सुनकर गर्मी में भी दिल को ठंडक का एहसास हो रहा है
2: जी।
3: आपने यहीं पर विराम नहीं दिया, आपने आगे लिखा है
2: भारत के वीर सेनानियों पर आधारित कार्यक्रम की श्रृंखला वीर गाथा उमंग कार्यक्रम में सुनवाई जा रही है वो प्रशंसा योग्य है। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी एवं लांस नायक अलवर टिक्का जी पर केंद्रित कार्यक्रम सुनकर हमारी आंखें नम हो गईं। कार्यक्रम बेहद पसंद आया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए समस्त उमंग टीम का हम दिल से आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद आप सभी श्रोताओं को। और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए।
3: तो विमलेश जी अब ये बताइए कि ये भी जानिए श्रृंखला में आज हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा।
2: अजीत जी इस सप्ताह हम पूरे विश्व परिवार की अनेक रोचक परंपराओं की चर्चा करेंगे
3: जी।
2: आज की चर्चा का विषय होगा जापान का चाय समारोह, इसे टी सेरेमनी भी कहा जाता है और जापानी भाषा में इसे चानो यू कहते हैं। ये दुनिया की सबसे सुंदर और अनुशासित परंपराओं में से एक है
3: जी। हाँ श्रोताओ, जापान की चाय परंपरा केवल चाय पीना नहीं लेकिन सम्मान शांति अनुशासन और व्यवहार की सुंदरता का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो आइए जानते हैं विमलेश जी से कि ये परंपरा जापान में कब शुरू हुई।
2: जी अजीत जी, हम सब जानते हैं कि चाय की शुरुआत चीन से हुई है। 9वीं शताब्दी की बात है जब कुछ बौद्ध भिक्षु चीन से चाय की पौध लेकर जापान आए और तब चाय का प्रचलन जापान में भी शुरू हुआ।
3: लेकिन विमलेश जी, ऐसी कौन सी बातें हैं जो जापानी चाय समारोह को इतना विशेष बनाती हैं कि हम उसकी चर्चा कर रहे हैं।
2: जी अजीत जी, जापान में चाय पीना एक विशेष अर्थ रखता है।
3: जैसे?
2: जैसे कि वहाँ चाय पीना एक औपचारिक और सामान्य बात नहीं है। इस समारोह में बहुत सी बातों का खास ध्यान रखा जाता है। आइए अपने श्रोताओं को कुछ जापानी शब्दों से भी परिचित कराते हैं जो वहाँ की चाय परंपरा को खास बनाते हैं।
3: जी, सचमुच चाय पीने के संदर्भ में इन जापानी शब्दों को जानना बड़ा रोचक रहेगा।
2: अजीत जी, भिक्षुओं ने इसे आध्यात्मिकता से जोड़ दिया और इसके कुछ नियम बनाए।
3: तो क्या क्या नियम है इसके?
2: जापान का चाय समारोह चार मूल सिद्धांतों पर आधारित है। पहला सिद्धांत है वाह।
3: वाह यानी?
2: यानी हारमोनी या सामंजस्य।
3: और दूसरा शब्द क्या है?
2: दूसरा शब्द है केई।
3: जी,
2: यानी रिस्पेक्ट या सम्मान।
3: और श्रोताओ, तीसरा शब्द है सेई यानी पवित्रता या प्यूरिटी। और चौथा शब्द है याकू यानी आंतरिक शांति या इंटरनल पीस।

0: श्रोताओं, इन चार सिद्धांतों पर टिकी है जापानी चाय परंपरा, जिससे हम स्पष्ट अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितनी अर्थपूर्ण है। तो जी जी अब करते हैं साझा कुछ और रोचक बातें जो जापानी चाय परंपरा में अनिवार्य मानी जाती हैं।
1: जी हाँ, तो श्रोताओं, चाय समारोह में अतिथि सर झुकाकर अभिवादन करते हुए चाय का कटोरा दोनों हाथों से लेते हैं, ये सम्मान दर्शाने का प्रतीक है।
0: जी, एक और खास बात यह है कि इस परंपरा में अतिथि चाय का कटोरा लेकर कटोरे को मेजबान की तरफ देकर हाथ को हल्का सा घुमाता है। इस कार्यक्रम में इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता है कि अतिथि कहाँ बैठेंगे, उन्हें कैसे आराम दिया जाए, ये भी ध्यान दिया जाता है कि प्याला कैसा होगा।
1: जी, और अब एक जानकारी और आपको दे दें कि समारोह का आयोजन पारंपरिक तौर पर कहाँ होता है।
0: ये समारोह अक्सर एक शांत टी हाउस या चाय कक्ष में होता है जो लकड़ी और बांस से बना होता है। फर्श पर परंपरागत चटाई बिछी होती है, बाहर छोटा सा बागीचा भी हो सकता है। चाय घर या कक्ष को जापानी में चा शित्सु कहा जाता है। पारंपरिक रूप से चाय पार्टी में किमोना पहना जाता है। चाय कक्ष के मार्ग में रंगीन छोटे छोटे पत्थर मार्गदर्शक के रूप में लगाए जाते हैं।
1: यानी कुल मिलाकर ये चाय समारोह सादगी, विनम्रता और प्रकृति के सौंदर्य का मेल कहा जा सकता है।
0: जी
1: विमलेश जी, हमने ये तो बताया ही नहीं कि जापानी चाय समारोह में कौन सी चाय परोसी जाती है।
0: अरे हाँ, ये तो हम भूल ही गए थे श्रोताओं, इस समारोह में माचा चाय दी जाती है। ये चाय की हरी पत्तियों को पीसकर पाउडर की तरह बनाई जाती है। जहाँ तक इसके स्वाद की बात है, स्वाद थोड़ा कड़वा हो सकता है।
1: कड़वा हो सकता है, तो इसीलिए सबसे पहले एक जापानी मिठाई दी जाती है जिसे वागाशी के नाम से जाना जाता है। पूरे जापान में ये मिठाई बहुत ही लोकप्रिय है। और श्रोताओं, एक खास बात आपको बताएं, प्रत्येक मिठाई बिल्कुल कलात्मक दिखाई देती है।
0: जी, तो श्रोताओं, जापान की चाय परंपरा हमें सिखाती है कि चाय पीना मात्र चाय पीना ही नहीं है, बल्कि वर्तमान क्षण को पूरी शांति और सुंदरता के साथ जीना है।
1: तो ये चाय समारोह हमें संदेश देता है कि साधारण सी चीज यानी एक कप चाय भी सम्मान, परस्पर सामंजस्य और व्यस्त जीवन में गहरी शांति का अनुभव बन सकती है।
0: जी, तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी जानकारी, ये जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
1: चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
0: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in।
1: और हाँ,
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: जी, तो चलिए अब रुख करते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है संवदिया।
0: ये कार्यक्रम हमें उस समय की याद दिलाता है जब इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम नहीं थे। उन दिनों में संवाद या कोई सूचना लेकर जाने वाले को संवदिया कहा जाता था। संवदिया मात्र संदेश या पत्र वाहक ही नहीं थे, लेकिन समाज के महत्वपूर्ण सेतु थे जो एक दूसरे को जोड़ते थे। कार्यक्रम एक मार्मिक नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
2: आजकल तो घर बैठे ही कहीं से कहीं खबर भेज सकते हैं और वहां का कुशल संवाद मंगवा सकते हैं। फिर आज बड़ी हवेली से, बड़ी बहुरिया की ओर से हरगोबिंद संवदिया की बुलाहट क्यों हुई?
3: हाँ, लो आ गई बड़ी हवेली। निश्चय ही कोई गुप्त समाचार ले जाना है। चांद सूरज को भी ना मालूम हो, परेवा पंछी तक न जाने। हाँ। पाए लागू बड़ी बहुरिया।
4: आ गए भैया।
3: हाँ।
4: लो, ये पीढ़ी सरका लो, कुछ देर बैठ जाओ।
3: हाँ। बड़ी हवेली तो अब नाम मात्र की ही बड़ी हवेली है, जहां नौकर नौकरानियों की भीड़ लगी रहती थी। आज हवेली की बड़ी बहुरिया अपने हाथ से सूपा में अनाज लेकर भटक रही है। ओह, कहां गए वो दिन। बड़े भैया क्या गए, जैसे सब खेल खत्म।

0: तीनों भाई गांव छोड़कर शहर में जा बसे। रह गई बड़ी बहुरिया। कहां जाती बेचारी?
1: अरे ये मुदियाइन बूढ़ी काकी काहे बड़बड़ा रही है?
2: अरे देखो बड़ी बहुरिया, उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है, पर दाम देते समय कड़वा। मैं तो आज दाम लेकर ही उठूंगी यहाँ से। हाँ।
3: अरे मोदियाइन काकी, बाकी बकाया वसूलने का ये काबुली कायदा तो तुमने खूब सीखा है।
2: क्या कहा? काबुली कायदा? फिर काबुली का नाम लिया तो अच्छा ना होगा, कहे देती हूँ। हाँ
3: लो।
2: देखो जी, मैं फिर आऊंगी और अब की बार उधार लिए बिना हिलूंगी नहीं यहाँ से, कहे देती हूँ। बड़े आ जाते हैं उधार लेने, मांगने जाओ तो वापस नहीं करते।
3: और हाय
4: हर गोविंद भाई।
3: हाँ?
4: तुमको एक संवाद ले जाना है आज ही। बोलो चाहोगे ना?
3: कहाँ बड़ी बहुरिया?
4: मेरी माँ के पास।
3: माँ के पास? कहिए क्या संवाद है?
4: माँ से कहना मैं भाभी भाभियों की नौकरी कर अपना पेट पालूंगी, लेकिन यहाँ अब नहीं रह सकूंगी। बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं? किस लिए, किसके लिए?
3: बड़ी बहुरिया।

0: हर कोबिन भैया, ये 5 का नोट ही बचा है, अब पूरा राह खर्च भी नहीं जुटा सकी। आने का खर्च माँ से मांग लेना।
1: ना ना बड़ी बहुरिया, राह खर्च देने की जरूरत नहीं है, मैं इंतजाम कर लूंगा।
0: तुम कहाँ से इंतजाम करोगे? और सुनो, लगता है सुनते ही भैया तुम्हारे साथ आ जाएंगे।
1: अरे वो तो ठीक है, लेकिन मैं इंतजाम कर लूंगा बहुरिया, आप फिक्र मत करिए। ये नोट रखिए,
0: अरे
1: हारे गाढ़े काम आएंगे। अच्छा, मैं आज 10 बजे की गाड़ी से ही निकल जाऊंगा।
0: अच्छा, मैं तुम्हारी राह देखती रहूंगी।
1: अच्छा, चलता हूँ।
2: संवाद यानी संदेश पहुंचाने का काम सहज नहीं होता। प्रत्येक शब्द को याद रखना, जिस सुर और स्वर में संवाद सुनाया गया है ठीक उसी ढंग से सुनाना बहुत कठिन है। बिना मजदूरी लिए ही जो गांव-गांव संवाद पहुंचाए उसको और क्या कहेंगे, निठल्ला, कामचोर, पेटू और क्या क्या नहीं। पर सच ये भी है कि गांव में कौन ऐसा है जिसके घर की माँ बहु बेटी का संवाद हरगोबिंद ने नहीं पहुंचाया है।

0: भाई साहब,
1: हाँ
0: थाना बिहपुर में ये डाक गाड़ी रुकती है या नहीं?
1: अरे भैया, थाना बिहपुर में सभी गाड़ियाँ रुकती हैं।
0: अच्छा अच्छा
1: हाँ, और मैं भी वहीं पर उतरूंगा।
0: अच्छा,
1: घबराओ मत, बता दूंगा।
0: तो कितना समय और लगेगा?
1: अरे बस थोड़ी दूर है, आने वाला है। हाँ?

थाना बेहपुर पर गाड़ी पहुंची तो हरगोबिंद का जी भारी हो आया। बड़ी बहुरिया का संवाद सुनाते समय वो अपने कलेजे को कैसे

0: बड़ी बहुरिया के संवाद रह रहकर उसके कानों में गूंज रहे थे।
1: हर गोपिन भाई, मां से कहना भगवान ने आंखें फेर ली, लेकिन मेरी मां तो है, किस लिए, किसके लिए? मैं बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं, कब तक जीऊं?
2: बड़ी बहुरिया, हम क्या करें?
0: हरगोबिंद का मन कलपने लगा। गांव की लक्ष्मी ही गांव छोड़कर चली जाएगी तो गांव में क्या रह जाएगा? किस मुंह से वो ऐसा संवाद सुनाएगा? ये सोचते सोचते हरगोबिंद गांव पहुंच ही गया।
3: माँ, माँ देखो, हरगोबिंद काका आए हैं।
4: पाए लागू माँ जी।
5: जीते रहो हरगोबिंद बेटा, क्या समाचार है?
4: जी, आपके आशीर्वाद से सब ठीक है।
5: मेरी बेटी का कोई संवाद?
4: संवाद? जी संवाद तो कोई नहीं।
5: हाँ?
4: बस मैं कल सिरसिया गांव आया था तो सोचा कि चलकर आप लोगों के दर्शन कर लूं।
5: तो तुम कोई संवाद लेकर नहीं आए हो?
4: जी नहीं, कोई संवाद नहीं। ऐसे ही बड़ी बहुरिया ने कहा है कि हाँ, अगर छुट्टी हुई तो दशहरे के समय गंगा जी के मेले में आकर माँ से भेंट मुलाकात कर जाऊंगी।
5: सो तो है।
4: अरे छुट्टी मिलेगी तो कैसे, सारी गृहस्थी बड़ी बहुरिया के ऊपर ही तो है।
5: अरे हरगोबिंद, मैं तो बबुआ से कह रही थी कि जाकर अपनी दीदी को लिवा ला, यहीं रहेगी। अरे वहाँ अब क्या रह गया है उसका? जमीन जायदाद तो सब चली गई, तीनों देवर भी शहर जाकर बस गए, कोई खोज खबर भी नहीं लेता उसकी। अब तो मेरी बेटी अकेली रह गई है।
4: नहीं नहीं नहीं नहीं माँ जी, जमीन जायदाद अभी भी कुछ कम नहीं है। टूट फूट गई है तो भी है तो आखिर बड़ी हवेली, बड़ी बहुरिया का गांव ही परिवार है। हमारे गांव की लक्ष्मी है बड़ी बहुरिया, और गांव की लक्ष्मी गांव छोड़कर कैसे जाएगी माँ जी?
5: हाँ सो तो है। चलो अच्छा है बबुआ। हाँ? अब थोड़ा जलपान कर लो।
4: अच्छा अच्छा माँ जी।
5: हरगोबिंद, क्या सोच रहे हो? कुछ खाते क्यों नहीं बबुआ?
0: हरगोबिंद ने थाली की ओर देखा। थाली में दाल भात, तीन किस्म की भाजी, घी, पापड़, अचार, इतना सब कुछ। उधर बड़ी बहुरिया का बथुआ साग उबाल कर खाना। हरगोबिंद के मुंह में एक निवाला भी न जा सका। वो सोचने लगा, ये उसने क्या किया, वो किस लिए आया था, वो झूठ क्यों बोला? ये सोच सोचकर रात भर हरगोबिंद को नींद ही नहीं आई। उसकी आंखों के सामने बड़ी बहुरिया बैठी रही, सिसकती रही। उसने जी कड़ा किया, वो संवदिया है, उसका काम है सही सही संवाद पहुंचाना। उसने निर्णय लिया कि वो सुबह उठते ही बूढ़ी माता को बड़ी बहुरिया का सही संवाद अक्षर अक्षर सुना देगा। अगले दिन सुबह उठते ही वो माँ जी के पास जा पहुंचा।
4: माँ जी,

0: अब आज्ञा दीजिए।
1: अरे
0: मुझे पहली गाड़ी से वापस जाना होगा, कई दिन हो गए। अच्छा माँ जी, अब पैर लागू।
1: जीते रहो बेटा,
0: अब चलता हूँ।
2: क्यों भाई, रहा खर्च तो है?
0: अरे भैया जी, आपकी दया से किसी बात की कमी नहीं है।
2: अच्छा
0: अच्छा, राम राम
2: राम राम
0: राम, राम।

0: हरगोबिंद के पास तो बस कटिहार तक जाने के पैसे थे। गाड़ी में बैठते ही उसकी हालत अजीब हो गई। वो कहाँ आया था, क्या करके जा रहा है? बड़ी बहुरिया को क्या जवाब देगा?
1: कटिहार आ गया। उतर लो, जाना है जलालगढ़। टिकट कटिहार तक का ही है। जलालगढ़ है 20 कोस दूर। हाँ? अरे बड़ी बहुरिया राह देख रही होगी, पैदल ही चलता हूं। बीस कोस की मंजिल भी भला कोई दूर की मंजिल है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय।

0: one should not look upon them as useless parts of the earth.
1: आशा है कि यह कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अब इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम के समापन की आपसे आज्ञा चाहेंगे, तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इस वक्त 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं दीपचंद खातरकर।

मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज के कलाकार हैं प्रकाश तिवारी।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम, कलाकार थे प्रकाश तिवारी। मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। 7 बजने वाले हैं, समाचारों के लिए चलते हैं दिल्ली केंद्र।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 दिन की यात्रा पर फ्रांस के एवियां शहर पहुंच गए हैं। एवियां पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि वे विश्व नेताओं के साथ बातचीत करने और प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि पृथ्वी को अधिक सतत और समृद्ध बनाने के सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की ये लगातार 7वीं उपस्थिति है और इस मंच पर भारत की 13वीं भागीदारी है। एवियों में इस समय सम्मेलन का आउटरीच सत्र चल रहा है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी मुलाकात करेंगे। G7 शिखर सम्मेलन में आज अमरीका के सहयोगी देशों ने 4 साल से अधिक समय से चल रहे यूक्रेन युद्ध को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे में फिर से प्राथमिकता दिलाने का प्रयास किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि वे श्री ट्रंप को यूक्रेन का समर्थन जारी रखने और शांति समझौते तक पहुंचने में मदद के लिए रूस पर दबाव बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अमरीका द्वारा यूक्रेन को दी जा रही सहायता में कटौती के बाद फ्रांस और उसके यूरोपीय सहयोगी अब यूक्रेन को सैन्य और वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले सबसे बड़े देश हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि 21 जून को नीट UGC परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड किए हैं। इस बीच पारदर्शिता को बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर ऑनलाइन संदेशों को भेजने पर रोक लगा दी है। सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन को अधिसूचित कर दिया है। इसमें गांवों में अब कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट को वापस ले लिया गया है। अब गांवों में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हरलेकर ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करके राज्य में जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक और सांख्यिकी कार्य है जिसे ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि दार्जिलिंग में गोरखा समुदाय के दीर्घकाल से लंबित मुद्दों का समाधान भारत के संवैधानिक ढांचे के भीतर ही किया जाएगा। दार्जिलिंग के कुर्सियोंग में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन में कथित भ्रष्टाचार की जांच की जाएगी और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

0: provides a framework for collaboration on mitigation projects that reduce or remove greenhouse gas emissions while supporting sustainable development in India. West Bengal Chief Minister Shubhendu Odhikari today announced that the historic Eastern Frontier Rifles EFR will soon be revived, with more than 1,000 Gorkha youths to be recruited into the force. Addressing a public rally at Kursiong in Darjeeling, Mr. Odhikari paid tribute to the valour and sacrifices of Gorkha soldiers in defending the nation. Mr. Odhikari further announced that recruitment to the state police force would soon be opened, creating employment opportunities for a large number of Gorkha youths. He added that at least 30% of seats in state recruitment would be reserved for women. In the FIFA World Cup, France will take on Senegal in a Group I clash at New Jersey in the United States at 12:30 a.m. according to Indian Standard Time. In another fixture, Norway will face Iraq in a Group I encounter at the Boston Stadium. The match will kick off at 3:30 a.m. And that is the end of this news bulletin.
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
2: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
5: PLI है ना?
6: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा, और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
7: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में आज प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कल नशा मुक्त भारत सप्ताह का वर्चुअल माध्यम से करेंगे उद्घाटन। मध्यप्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से प्रारंभ होगा और प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून के 18 से 19 जून के बीच प्रवेश करने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप ने बताया कि प्रदेश के बुनियादी ढांचे और जन कल्याण को बड़ी रफ्तार देते हुए कुल 24,200 करोड़ रूपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के लिए अतिरिक्त वित्त पोषण सहित कुल 19,472,29,00,000 रूपये का पुनरीक्षित बजट स्वीकृत किया गया।
1: इंदौर की मेट्रो जिसकी लागत 2017 में 7,500 करोड़ का आकलन किया गया था, उसका पुनर्निरीक्षण अनुमान व कुछ क्षेत्रों में मेट्रो का अलाइनमेंट बदला गया, कहीं पर उसको अंडरग्राउंड भी किया गया, तो अब वह 12,889 करोड़, 12,900 के करीब उसकी लागत हो चुकी है। तो यह अतिरिक्त 5,388 करोड़ की लागत की स्वीकृति दी गई और अब यह इंदौर की मेट्रो 31 किलोमीटर की करीब 2030-31 तक पूर्ण रूप से वहां पर परिचालन में आ जाएगी।
0: मध्य परिषद ने ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए रीवा, देवास और गुना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को आउटसोर्स मॉडल पर चलाने का पायलट प्रोजेक्ट भी मंजूर किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 से 22 जून तक मध्य प्रदेश के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे इंदौर, बैतूल, ओमकारेश्वर, जबलपुर, ग्वालियर और कुनो अभ्यारण्य जाएंगी। वे 20 जून को शाम करीब 6 बजे जबलपुर पहुंचेंगे। इस दौरान वे दो प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल होंगे। श्रीमती मुर्मू 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शहर के गैरिसन ग्राउंड में आयोजित मुख्य योग कार्यक्रम में शामिल होंगी। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार कल नशा मुक्त भारत अभियान के

0: अंतर्गत नशा मुक्त भारत सप्ताह का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। इस पहल का उद्देश्य नागरिकों की भागीदारी को मजबूत करना, स्वयं सेवकों की सहभागिता बढ़ाना और देश भर में नशाखोरी के खिलाफ जागरूकता फैलाना है। कार्यक्रम के दौरान डॉ. वीरेंद्र कुमार नशा मुक्त मित्र के लिए पर्सनल डैशबोर्ड और NMBA पर आधारित एक लघु फिल्म सहित कई प्रमुख पहलों का भी अनावरण करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने कहा कि इस अभियान के दौरान देश भर में जागरूकता और सामुदायिक जन सहभागिता से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इनमें सामूहिक प्रतिज्ञा अभियान, जागरूकता रैलियां, साइकिल रैलियां, युवा नेतृत्व वाले अभियान, पोस्टर निर्माण, निबंध प्रतियोगिताएं, वेबिनार, विशेषज्ञों के साथ संवाद और नुक्कड़ नाटक शामिल है। प्रदेश के सभी शासकीय विद्यालयों और सांदीपनी विद्यालयों में आज से 30 जून तक स्कूल चलें अभियान के दूसरे चरण के अंतर्गत शाला प्रारंभोत्सव आयोजित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्री प्राइमरी से 8वीं तक के स्कूलों में बाल सभा का आयोजन होगा। इसके साथ ही शाला में शत प्रतिशत नामांकन, पुस्तक वितरण, शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार, क्रियाशील बालिका शौचालयों की उपलब्धता, पेयजल की उपलब्धता, अभिभावकों का शाला से जुड़ाव जैसे विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि नीट राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, इसके लिए सभी तैयारियां समय से पहले पूरी कर ली जाएं। आज मंत्रालय में नीट परीक्षा की तैयारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि परीक्षा आयोजन में किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी या त्रुटि न रहे। परीक्षा कराने में संलग्न सभी अधिकारी कर्मचारी पूरी मुस्तैदी से अपने कर्तव्यों का पालन करें। ये परीक्षा प्रदेश के 30 जिलों में 283 परीक्षा केंद्रों में सम्पन्न कराई जाएगी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से प्रारंभ होगा। विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ये सत्र 20 जुलाई से 24 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। 5 दिवसीय सत्र के दौरान सरकार विभिन्न विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों, नीतिगत निर्णयों और विकास कार्यों से संबंधित मुद्दों को सदन के पटल पर रख सकती है। वहीं विपक्ष भी प्रदेश में कानून व्यवस्था, किसानों, युवाओं, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जनहित के मुद्दों को कर सरकार को घेरने की तैयारी में रणनीति तैयार करेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में साप्ताहिक कृषि समीक्षा बैठक में खरीफ 2026 के लिए देशव्यापी तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में अल नीनो की संभावित स्थिति पर चर्चा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन जिलों में कम बारिश या वर्षा में असमानता की आशंका है वहां पहले से पूरी तैयारी की जाए ताकि किसी भी मौसमी चुनौती की स्थिति में किसानों को तुरंत विकल्प, सलाह और सहायता उपलब्ध कराई जा सके। खरीफ 2026 के लिए फसलवार लक्ष्य, बुआई की प्रगति और राज्यवार तैयारियों के समीक्षा करते हुए कपास उत्पादन बढ़ाने पर विशेष चर्चा की गई। साथ ही दलहन आत्मनिर्भरता मिशन पर भी विस्तृत विचार विमर्श हुआ। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस दौरान सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम आतंकवाद के खिलाफ सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति के बारे में जानकारी दे रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। सुपर्णा के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून के 18 से 19 जून के बीच प्रवेश करने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का मानना है कि मानसून के आने के बाद प्रदेश में बारिश की स्थिति में सुधार होगा। फिलहाल जून माह में प्रदेश में सामान्य से कम वर्षा दर्ज की गई है। प्री मानसूनी गतिविधियों के चलते आज भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, जबलपुर, सागर, शहडोल संभागों के 30 से अधिक जिलों में आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है।

अब कुछ समाचार संक्षेप में। खजुराहो लोकसभा सांसद और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने आज पन्ना जिले के पवई विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। झाबुआ में आज कलेक्टर ने जनसुनवाई से पहले राणापुर में ट्रेंचिंग ग्राउंड और सब्जी मंडी का निरीक्षण किया। राजगढ़ जनपद पंचायत नरसिंहगढ़ के अंतर्गत प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत कुकिंग कॉम्पिटिशन आयोजित किया गया। आगरमालवा में प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना और ई श्रम कार्ड योजना के प्रचार प्रसार हेतु विशेष शिविर आयोजित किए गए। देवास जिले में 15 अगस्त तक की अवधि में मत्स्या खेत करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। नर्मदापुरम जिले को मखाना उत्पादन के साथ साथ उसकी प्रोसेसिंग का केंद्र बनाने की तैयारी शुरू की गई है। मंदसौर में जिला स्तरीय जन सुनवाई में कलेक्टर ने 120 आवेदकों की समस्याएं सुनकर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पश्चिम मध्य रेलवे के तीनों मंडलों में जबलपुर रेल मंडल ने ऑरिजिनेटिंग रेवेन्यू अर्जित करने में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। सीहोर में कल 17 जून को राजपूत संगठनों द्वारा महाराणा प्रताप जयंती पर शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

कृषि जगत कार्यक्रम सुनवे वारे सवाई किसान भाजा भौजी हरो के गाजे आकांक्षा बिन्नू की राम राम। देखो संजा बिरिया हाथी रोजो जैसे हमारे ढोर बच्चू बांध रहे थे उत्त ही में रामू दिखानो। सो कक्का बोले काय रामू ई बेरे जल्दी गांव काया आ गए। सो रामू बोले कक्का का बताएं ई बेरे इतनी ज़्यादा मंदी है शहर में काम धंधो कछु दिखा नहीं रहो। जिते काम करा था ते उते फैक्ट्री सीधी सरीखी बंद हो गई का करते। फिर सोची चलो गांव में ही कछु काम धंधो शुरू कर ले भी। सो कक्का बोले हाओ सही है कह रहा है हमारे ते लल्लू सोई घरे आ गओ बता रहो हतो पहले जितो काम नहीं मिल रहो। अब उत्तो काम है ही नहीं है अब मंदी के टाइम पे अपन जैसे कई श्रमिकों को नौकरी से निकाल दो। सो रामू बोले कक्का सो जो बताओ कि खर्चा पानी कैसे चल रहा हो। फिर देखो भज्जा हम तो पहले ही से गांव में हैं। सो गांव में खेती पशुपालन और मुत के छोटे छोटे काम मिल जात कम से कम अपन को भूखो तो नहीं रहने पड़ा। रामू बोले कि कक्का जा बात तो बिल्कुल पते की कही अपनो गांव अपनी जगह अपनो खेत अपनो ही होते है। मानो कितौ साधन कम हो गए अकेले अपनेपन की और सहयोग की कमी होत नहीं है थे। अपने गांव की माटी से लो अपनेपन की खुशबू आउत। सो कक्का बोले रामू अबे भी टेम नहीं निकल गओ कछु नहीं मिल रो जो मान लो कि जो हो सो उमदा होत और हर रात के बाद सुबेरो भी हो तो पुरानो रास्ता बंद हो सो जब ही एक नई उम्मीद दिखात। और तुम्हारे तो अब नई उम्र के हो तुम्हारे दो चार जने मिलके कोनो नव व्यापार शुरू कर काय नहीं करें लेत। सो रामू बोले कक्का बात तो उमदा कही। उत्त ही में लल्लू और मोहन भी आ गए बोले कक्का जोन देना फैक्ट्री से निकारो उदना तो मानो ऐसो लग रहा हो तो कि कौन सो मोह लेके घरें जावे अकेले इतने आके पतो चलो कि अपने गांव की माटी की बातें ही अलग होते है। नदिया के पानी की छल छल आवाज़ मन में शांति भर देत। बुनसारे से अम्मा कक्का को अपनोपन देख के मन में उम्दा करवे को जुनून पैदा हो जात। सो लल्लू बोले रामू शहर की भीड़ में एन ठोकरे खाई हैं अकेले गांव की माटी ने फिर से अपनाओ है। जब थक हार के आ गए कठिन डगरियों से तब सुकून मिलो है अपने गांव की गलियों से।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: मनमोहन शर्मा भैया से लोकगीत सुन के कक्का बोले, रामू देखो ऐसो है, पानी और माटी दोनों जीवन को आधार गहाउत है। इन्हें बचावो भी अपनो ही काम होत है। जब इनको संरक्षण कर है जब ही अपन को भविष्य सुरक्षित रहे। यही से हमें पानी बचाओ, माटी बचाओ, भविष्य बचाओ, यही संदेश को अपनाओ चाहिए। और हम तो कह रहे हैं कि तुम्होरे यही पे काय नहीं कछु काम करें ले। सुरामू बोले, कक्का बता तो, बात तो तुमने उम्दा कह दई। और आज एक ही बात यह बता रहा है कि जाके पूरी जानकारी डॉक्टर श्रृंखला मिश्रा देवेवारी हैं, उमें वे जल और मिट्टी संरक्षण के बारे में पूरी जानकारी दें।
3: किसान भैया रो, आज हमने अपने कार्यक्रम में बुलाओ है डॉक्टर श्रृंखला मिश्रा जी के लाने। आप जल और भूमि संरक्षण की विशेषज्ञ हैं, उम्दा उम्दा बातें अपने लाने बताते हैं। तो मैडम, सबसे पहले तो हम अपने कार्यक्रम में आपको स्वागत कराते हैं। नमस्कार।
4: नमस्कार
3: मैडम। जैसे कि हमारे किसान भैया ने मिट्टी और जल दो चीजें, इनमें वे बिल्कुल 24 घंटा उपयोग कराते हैं और इन्हीं से उनको खेल वे को काम है, कहो चाहिए कि खेतों में पानी और माटी। तो हम आपसे जानबो चाहते हैं कि जल और मिट्टी को संरक्षण का कहावत है, आप हमारे किसानों के बताओ।
4: जी, जल ही जीवन है, धरती पर जल से ही सब है संभव, जल से ही सबका पोषण है, बिन जल जीवन हो जाता असंभव।
3: जी,
4: जल एवं मृदा संरक्षण ये वे गतिविधि है जो मिट्टी, पानी और वनस्पति की क्षमता को बनाए रखती है।
3: जी,
4: जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष वर्षा लगातार होती है और मिट्टी की उपजाऊ सतह को नदी और नाले में बहाकर ले जाती है। तो इन बिना आधुनिक उपायों को अपनाए मिट्टी की उत्पादकता को बनाए रखना बहुत ही असंभव प्रतीत होता है।
3: जी हाँ।
4: तो मेरा यही सुझाव रहेगा किसान भाई बहनों को कि जो आधुनिकताएं हैं, जैसे कि मेड़ का निर्माण करना, चेक बांध बनाना, सीढ़ी नुमा खेती करना, तालाब निर्माण करना, इन सब का पालन करें और जल और मृदा को संरक्षित करें।
3: जी
4: जी।
3: अब मिश्रा मैडम, तालाब निर्माण की मुख्य विशेषताएं जैसे कि आप बता रही हैं, तालाब निर्माण पे आपने बताई के तालाबों को निर्माण करो जा सकत है।
4: जी।
3: सो तालाब कैसे बनाएं, लेकिन मुख्य विशेषताएं का कहावत है।
4: जी, अभी हमारा एक विश्वविद्यालय है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय।
3: जी,
4: वहाँ पे कुछ वैज्ञानिकों द्वारा भूमि पे तालाब निर्माण करने का एक मापदंड बताया गया है। जैसे कि अगर हम तालाब की लंबाई को 100 मीटर, उसकी चौड़ाई को 100 मीटर और उसकी गहराई को 10 मीटर रखते हैं,
3: जी हाँ,
4: तो उसमें अधिक से अधिक पानी को इकट्ठा किया जा सकता है।
3: जी
4: जी। और इसमें एक नाली पे ड्रेनेज बनाई जाती है जो कि निचली जमीन के लिए बहुत उपयोगी है। जो किसान की जमीन निचले स्तर पे है वो इस मापदंड का तालाब बना के अपने पानी को संरक्षित कर सकता है। और उससे मिट्टी भी एक जगह पर संरक्षित रहेगी और पानी भी एक जगह पर संरक्षित रहेगा। उस तालाब में जैसे कि बतख हो गए, मछलियों का पालन हो गया, ये भी एक नया व्यवसाय है जो किसान इसको अपना के अपनी आय को बढ़ा सकता है।
3: जी
4: जी। और जो मेड़ होती है तालाब की, उसमें भी कई फसलों को वो उगा के और उस मेड़ को भी वो खेती के तौर पे ले सकता है। जी।
3: अब मैडम, जो तालाब को निर्माण तो हो गो, अब उके बाद में अभियांत्रिकी उपायों के कछु और भी ऐसे उपाय होत हुए हैं जे ऐसी जुड़ी भाई एक दूसरे से बातें हुई हैं, तो बे उनके बारे में बताओ।
4: जी, एक उपाय ये है कि हम कंटूर बंडिंग कर सकते हैं। कंटूर बंडिंग का मतलब वही है, मेड़ बनाना। लेकिन अभियांत्रिकी तौर पे कंटूर बंडिंग के कुछ मापदंड हैं जिससे हम बहुत ही अच्छे मात्रा में पानी को संरक्षित कर सकते हैं।
3: जी हाँ।
4: जैसे कि अगर भूमि की ढाल 1-2% है, जो ढाल का लंबवत है 1.3 मीटर होना चाहिए और समतल दूरी होनी चाहिए उसकी 55-75 मीटर की।
3: जी।
4: इसी प्रकार अगर भूमि का ढाल 3-4% का है तो लंबवत दूरी 1.6 मीटर, समतल दूरी 50-55 मीटर की होनी चाहिए।
3: जी हाँ।
4: और यह मापदंड अगर 660 मिलीमीटर वर्षा के जगह पे अगर हम प्रयोग करते हैं तो यह बहुत ही किसान के लिए कारगर होगा।
3: जी।
4: अब जैसे धान की खेती के बारे में
3: हाँ, वही हमें समझ में आ रहा था कि हम आपसे थोड़ी सी बात पूछें कि धान

0: की खेती में पानी की लागत ज्यादा लगत है, पानी को ज्यादा कछु उपयोग होत है, तो उके लाने का उपाय है हमारे किसानों के बताओ
1: जी। जैसे धान और गेहूं की जो खेती है उसमें पानी की आवश्यकता तो ज्यादा होती है
0: जी,
1: है ना। तो इसमें अगर हम एक आय को बढ़ाना चाहें तो अगर किसान सब्जी या फल का चक्र शुरू कर देता है, सब्जियों और फल के चक्र को अपने खेतों में लगाता है
0: जी हाँ,
1: तो उससे और ड्रिप जो बूंद बूंद पानी देने वाला जो सिस्टम है जिससे हमारा जो उपज है वो 80-85% तक ज्यादा होती है
0: जी।
1: अगर किसान नॉर्मल पानी देता है जिस तरीके से वो मतलब जो पाइपलाइन के थ्रू या ये स्प्रिंकलर के थ्रू जो फव्वारे वाली जो विधि होती है
0: जी हाँ,
1: उससे पानी की लागत ज्यादा होती है और उससे आय भी हमारा कम होता है। तो इस तरीके से बूंद बूंद सिंचाई जो ड्रिप इरिगेशन कहलाता है और धान और गेहूं को सब्जी और फलों के चक्र में परिवर्तित करके किसान जो है वो ज्यादा पानी भी बचा सकता है और अपनी आय को भी बढ़ा सकता है
0: जी हाँ
1: जी।
0: अब डॉक्टर मैडम भूजल रिचार्ज के बारे में सोई कभों कभों सुनबे में आउत है, तो ये में आप हमारे किसान भैया बिन्नहन के लाने का क्या वो चाहत हो, का बता रही हो
1: जी। जहाँ बूंद गिरे उसे वहीं समेट ली जाए, ये एक नारा दिया गया है
0: हाँ।
1: जी, जो खेत का पानी खेत में है वो खेत में ही रहे और गांव का पानी जो है वो गांव में ही रहे, इस नारे का मतलब ये है
0: हाँ हाँ।
1: जी जैसे हरियाणा का जो राज्य है हमारा
0: जी,
1: वहाँ पे लगभग जो भूजल का स्तर है उसमें गिरावट इतनी तेजी से है कि उसका दर 20-60 सेंटीमीटर तक आ गया है
0: जी
1: जी। तो इस गिरावट को रोकने के लिए वर्षा ऋतु का जो पानी है उसका बहाव रोकें, उसको इकट्ठा करें, जैसे कि पुराने तालाबों की खुदाई करके उनको रिचार्जेबल बनाएं ताकि उनका जो पानी है वो नीचे तक मिट्टी की सतह से होके मतलब पौधों की जड़ों तक पहुंच सके
0: हाँ हाँ।
1: जी
0: अब हम और जानना चाह रहे हैं आपसे
1: जी, मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि एक वर्षा के पानी को भूजल तक पहुंचाने के लिए एक साफ्ट हमारे अभियांत्रिकी में पाया जाता है जो साफ्ट की मदद से किसान भूजल को मतलब पानी को रिचार्ज कर सकता है जी।
0: हाँ मैडम, हम जो जानवो चाहते के मिट्टी को अपरदन का कहाउ थे, अपरदन की बात जहाँ आउ थे और इक कारण और इको उपाय का है
1: जी। अपरदन वायु और जल से मिट्टी का जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण होता है
0: जी,
1: वो अपरदन कहलाता है। अब इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे आजकल गांव में किसान जहाँ पे गैस की सुविधा नहीं है तो पेड़ों की कटाई करके लकड़ियों का इस्तेमाल करके चूल्हे में खाना बनाया जाता है, तो वृक्षों की अविवेकपूर्ण कटाई करते हैं, वनों में आग लगाना, भूमि को बंजर खाली छोड़ देते हैं, मतलब कई साल तक ऐसा होता है कि उस भूमि में खेती ही नहीं की गई है, सिंचाई को समय पे ना करना और फसल चक्र जो होता है उसको नियम के अनुसार नहीं उस तरीके से कर पाते हैं,
0: माने पूर्ण रूप से फसल चक्र अपनाओ नहीं जाते।
1: हाँ हाँ जी, हाँ, हाँ। कभी बंजर छोड़ देते हैं, कभी टाइम से पानी नहीं देते हैं, जमीन है हमारी, भूमि है, उसकी उर्वरता कम हो जाती है तो जी
0: जी। तो एक इलाने का उपाय तो बताओ आपके कैसे करो जा सकत है
1: जी। इसमें समोच्च एक जुताई की जा सकती है
0: जी,
1: पट्टीदार खेती की जा सकती है और विंड ब्रेक लगाया जा सकता है जी। समोच्च जुताई का मतलब है विभिन्न प्रकार के कृषि कार्य जैसे कि बुआई, जुताई और खरपतवार का नियंत्रण
0: जी हाँ।
1: जी और इसमें एक ये भी है कि जो भी हम ये काम कर रहे हैं वो ढाल की दिशा में नहीं करना चाहिए
0: हाँ, हाँ।
1: जिससे हम भू को संरक्षित कर सकते हैं
0: जी।
1: दूसरा हमारा जो पट्टीदार खेती है इसमें खेत में पट्टियां बनाकर और अवरोधक फसल उगाई जाती है
0: जी हाँ।
1: जो उस मिट्टी के बहाव को रोकती है, जिसकी जड़ें लंबी होती हैं और हाँ। वो मिट्टी के बहाव को रोकती हैं
0: जी
1: जी। और जैसे हम देखेंगे कि जहाँ पे जैसे ये सीढ़ी नुमा खेत है जो, तो जहाँ पे ज्यादा ढलान होती है वहाँ पे किसान सीढ़ियाँ बना बना के और उसमें खेती करते हैं, तो वो भी एक मिट्टी को संरक्षित करने का बहुत अच्छा तरीका है कि जो ढलाई वाले एरिया में हम सीढ़ी बना के उसमें खेती करें
0: जी। तो डॉक्टर श्रृंखला मिश्रा जी, आप हमारे कार्यक्रम में आई और आपने हमारे किसान भैया बिन्नहन के लाने जल और मिट्टी संरक्षण के बारे में

0: उम्दा उम्दा बातें बताई, आपके लाने बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जल और मिट्टी संरक्षण विषय पे अबे अपन ने डॉक्टर श्रृंखला मिश्रा से लई पूरी जानकारी और अपने लखन वैज्ञ ने अपने बतकाव से बहुत ही कछु उम्दा बातें उनसे पूछ लाई। सो बात हती ऐसी कि देश के लाने जिन्हें जीवन त्याग दो, त्याग और सेवा को उम्दा उपहार दो, ऐसे महान पुरुष के लाने शत शत नमन हमाओ, जिनने भारत खो स्वाभिमान को आधार बनाओ। कक्का बोले, रामू कौन महान पुरुष की बात यह कर रहे? रामू ने कही, कक्का आज महान पुरुष देश बंधु चिदरंजन दास जी की पुण्यतिथि है। वे महान स्वतंत्रता सेनानी, वकील और समाज सेवी के रूप में जाने जाते थे। संगे संगे देश की आज़ादी के लाने अपनों सभी कछु समर्पित कर दो। सो लल्लू बोलो, कक्का बताओ पहले के टाइम के लोगों ने इतिहास में अपने नाम के झंडा फहरा दाए, एक अपन हो रहे हैं, तनकसी मंदी बेरोजगारी का आ गई कि रोजी रोटी के काजे तरस गए, का हुज्जे देश को। कक्का बोले, लल्लू ऐसे कई टेम टेम पे महान पुरुषों के बारे में, उनके त्याग के बारे में बताओ जात के मुसीबतों को सामनो करो और डट के करो, उसे पीछे ना हटो। महान पुरुषों के दिखाए भाई रास्तों पे चल के अपनो जीवन निखारो। सो रामू कह लगे, कक्का जा बात तो बिल्कुल सही है कह रहे है। महान पुरुषों की देशभक्ति, त्याग और सेवा की भावना हमें जॉय शिक्षा देते हैं कि हमें अपने समाज और देश के लाने आगे बढ़ के काम करो जी। और जो सब कछु जब ही संभव हो सकत, जब हम अपने काम खोले के दृढ़ संकल्पित रहे हैं, अपने जुनून की जिद ऐसी होबे कि आलस भग जावे, हर सुबेरो ऐसो होबे कि अपनी मंजिल खुद मिल जावे। सो लल्लू बोले, काका जे देखो कैसी बातियां कर रहे, आलस भग जावे, सुबेरो होबे और खुद 9-10 बजे लो सो उतरात। काका आलस ना आवे, सही में भग जावे, सो कछु उपाय बताओ जिसे अपने शरीर को मन और आलस, बिल्कुल आलस तो कोसों दूर भग जावे और मन इतना चंगा रावे कि हर काम में मन लगो रावे। सो कक्का बोले, बस इतनी सी बात? देखो हम तुम्हें तनक से शब्दों में बड़ी बात बताएं दे। सो बात है ऐसी कि पीपल की छाँव, पक्षियों को मधुर राग, योग से दूर होत सबरे तनाव और रोग, गांव में भुंसारे को जोई है संदेश, योग अपनाओ और स्वस्थ बनाओ देश। लल्लू बोले, कक्का बात तो पते की कह दई, अब तो आलस गदवत दे के भग जाए। सो हम और उनको तनक हंसी सी आई। कक्का बोले, तुम तो अब ऐसे ख्याली पुलाओ बनाव लगे, खुली आंखों से सपनों ना देखो, खुली आंखों से जो कुछ सपनों देखा तो के सपने पूरे नहीं हो पाऊत। बरगद की छाँव में जब योग करो जात ना, सो थको भाव मन भी मुस्कुरा जात, न दवाई की चिंता न रोगों को भार, योग से बनत जीवन शानदार।

सुबह 11 अपन और सुन रहे थे वह चित्रा देवी बिन्नू से हैं जो उम्दा लोकगीत। और देखो किसान भाई 11 एक बात बता दे वे कि जो मानव जीवन है ना बहुत ही अनमोल है। जो जीवन हमें मिलो अच्छे कर्म करवे के काजें, दूसरों की सहायता करवे के काजें और भगवान को याद करवे के काजें। काय से देखो भाई 11 आज सभी जने अपने जीवन में इतने व्यस्त रात भागदौड़ भरी ज़िंदगी में धन कमावे में काम के पीछे सुविधाओं के पीछे इतने ज़्यादा व्यस्त हो जात कि अपन और अपने भगवान को याद करबो भूल जात। सो भैया किसान भैया रो जो जान लो कि समय है ना कोनू के लाने नहीं रुकत। अपनो बालपनो युवा अवस्था और कवे अपन और बूढ़े हो जात लठिया पकड़ ले तो जो फतोलो नहीं चलत। यही से कही गई कि उमरिया बीत जाए ऊके पहले भजन कर लो जीवन संवार लो। भजन केवल कही जाए तो गावे को नाम नहीं है, अकेले अपने अच्छे उम्दा विचार रखो, सच्चाई के मार्ग पर चलत रहो चाहिए और सबसे बड़ी बात कि माता पिता और अपने घर के बुजुर्गों को सम्मान करो चाहिए। जो ही भजन को एक सच्चाई रूप में सत्य कहाऊ थे कही जाए तो एक रूप है सच्चाई को कि भगवान को भजन करो उके संगे संगे अपने माता पिता और अपने घर के बुजुर्गों को भी सम्मान करो। जो जान लियो कि जो को भी नियमित रूप से भगवान को भजन करत उके मन में शांति संतोष और एक अच्छी ऊर्जा बनी रात। कठिन परिस्थितियों में भी वो आदमी अपनी दिशा में सच्चाई के मार्ग पे आगे बढ़त रात और उखो आगे बढ़वे की शक्ति भी मिलत। यही से हमें समय रहत भय अपने जीवन में भक्ति सेवा और सदकर्मों को स्थान दो चाहिए। और भैया रो उम्र या बीत जाए उके पहले ही भजन कर लो। हरि नाम की दौलत से जीवन भर लो। जब धन दौलत इतना ही रह जाना एक दिना प्रभु चरणों में मन लगा के अपनो जीवन सफल बना लो।

प्रकर्ष तिवारी भैया से, अब अपन और ना सुनो जो उम्दा लोकगीत। देखो भैया, उमरिया तो बीत ही रही और अपन और जो भी जानत के जीवन एक यात्रा है जी, में हर कदम पे नई चुनौतियाँ और परीक्षाएँ आती रहती, आती भी हैं और जाती भी रहती। सुबह जी अपन और खो घबराने नहीं आ, कैसे ऐसो दुनिया में कौनो व्यक्ति नहीं आ जी के जीवन में कठिनाई ना हो बे, या जो कोई कठिनाइयों को सामना ना कर रहा हो बे। चुनौतियाँ, एक बात जान लो कि जो जो चुनौतियाँ परेशानी कठिनाई हमारे जीवन में आती है ना, वे हमें रोकबे के काज नहीं आती, बल्कि हमारी क्षमता धैर्य और आत्मविश्वास को परखवे के काजे आती हैं। सो भैया रो, ऐसो है कि परिस्थितियाँ कितौ कठिन हो जाएं, अकेले जब अपन और देखें कि रास्ता बंद दिखाई दें कि रास्ता बंद हो रहा है, सो ऐसे टाइम पे अपन को निराश नहीं होने, उ टाइम पे अपन को खुद पे विश्वास रखने और जो भी याद रखें कि संघर्ष ही सफलता की नींव कहावत है। सोना भी आग में तपकर कई जात के कुंदन बनत, बिल्कुल उसे ही मनुष्य भी कठिनाइयों को सामना करके निखर जात है। सो भैया रो, जो जान लो कि जीवन में आवे वाली हर चुनौती हमें कछु ना कछु सिखा के जात है। ऐसी परिस्थिति होती कि हमें अनुभव दे देती, अनुभव भविष्य की सफलता को मार्ग दिखाऊत है। ऐसे हमें कठिन टेम पे या कठिन टेम खो बोझ नहीं समझना, बल्कि जब कठिनाई जब परिस्थिति हमारे जीवन में का रूप लेके आई, हमारे अंदर की कौन सी क्षमता को निखार भी आई, हमें ऊपर ध्यान केंद्रित करना है। कैसे कहीं भी जात कि आप जैसो सोचो आपके चारों तरफ ही उसे ही होने लगत। सो हमें स्थिति कोनो भी हो बे, अपनी सोच को उम्दा बना के रखने, उम्दा काम करने। और भैया देखो घड़ी ने इशारों कर दो, आप सबसे अनुमति ले भी गो। सो सभी के काजे आकांक्षा बिन्नू की राम राम, जय जवान जय किसान।

किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम कृषि जगत। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। रात के 8 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर्खियों में, जिसे हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 8 बज चुके हैं। लीजिए अब सुनिए समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष। आज का विषय है आतंकवाद।
1: ये आकाशवाणी है।

0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
1: नमस्कार। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार देश के नेतृत्व की जिम्मेदारी संभाली थी। तब से अब तक इन 12 सालों में भारत में कई बड़े बदलाव हुए हैं और हर क्षेत्र में अनगिनत उपलब्धियां हासिल की गई हैं। आकाशवाणी की इस विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के जन कल्याण के में आज हम पर्यावरण के क्षेत्र में हुई उपलब्धियों के बारे में बात कर रहे हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव। मंत्री जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: भूपेंद्र जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने हाल ही में 12 वर्ष पूरे किए हैं। इस पूरी यात्रा में, इन 12 सालों में आप किन बदलावों को सबसे ज्यादा परिवर्तनकारी मानते हैं जिन्होंने भारत में गुड गवर्नेंस की एक नई परिभाषा गढ़ी है?
2: आपने जो शुरुआत में दो शब्द कहे थे
1: जी,
2: विश्वास और जन कल्याण
1: जी,
2: मुझे लगता है 12 साल की कहानी विश्वास और जन कल्याण की है। विश्वास इस बात का कि सरकार ऊपर से जो 100 रुपये भेजेगी वो जनधन खाते में पूरा 100 रुपया जाएगा, ये पहली बार हुआ है। वरना खुद देश के प्रधानमंत्री कहा करते थे कि हम 100 रुपया भेजते हैं 85 रुपया गायब हो जाता है। विश्वास इस बात का कि सरकार जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेगी उसका उद्घाटन भी यही सरकार करेगी। 12 साल पहले जब प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने एक प्रगति नाम का कार्य शुरू किया तो कई सौ समय से पड़े हुए प्रोजेक्ट नहीं पूरे हुए
1: जी।
2: मध्य प्रदेश बुंदेलखंड में केन बेतवा प्रधानमंत्री जी के समय में पूरा हुआ, राजस्थान में ERCP प्रधानमंत्री जी के समय में प्रारंभ हुआ, या आपके ऊपर पुल बनाने का विषय हो या गुवाहाटी के पुल बनाने का विषय हो। तो दूसरा विश्वास कि सरकार जिसका उद्घाटन करेगी उसको जनता को समर्पित भी करेगी। तीसरा, जो लोगों का विश्वास है कि भारत का आत्मसम्मान और गौरव दुनिया में बड़ा है। फिर ऐसा जब अच्छा समय होता है तो आपकी परीक्षा भी ली जाती है।
1: बिल्कुल।
2: तो दुनिया में जब कोरोना की महामारी का संकट आया तो इस बात का विश्वास कि हम अपनी दवाई भी खुद ढूंढ सकते हैं और अपना रास्ता भी खुद तय कर सकते हैं। फिर भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनी तो इस बात का विश्वास कि हम जिस रास्ते पे चले हैं वह रास्ता विकसित भारत की ओर जा रहा है। और दूसरा जो शब्द आपने कल्याण कहा था, कल्याण
1: जी,
2: गरीब कल्याण, 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी के खाते से निकाला, 80 करोड़ लोगों को समय पर राशन पहुंचाने का काम किया, किसानों को सम्मान निधि देने का काम किया। और कल्याण के इस कार्य में जो कभी लोहिया जी 60 के दशक में कहा करते थे कि पानी और पखाना, ये भारत के महिलाओं की इतनी बड़ी त्रासदी रही है कि उनको मीलों दूर से पानी लाना पड़ता है और अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपने नेचुरल क्रिया को रोकना पड़ता है, घर घर शौचालय बनाने जैसा छोटा लेकिन एक लंबा कार्य, और जल जीवन मिशन को पहुंचाना। और इसलिए विश्वास और जन कल्याण ये 12 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और सफलता को बताता है।
1: भूपेंद्र जी, जलवायु संरक्षण के प्रयास के क्षेत्र में भारत एक बहुत बड़ी वैश्विक आवाज बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री मोदी खुद भी इसके बहुत बड़े पक्षधर हैं। तो आपके मुताबिक भारत ने विकास की अपनी जरूरतों और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी के बीच संतुलन कैसे बनाया है?
2: विषय यह उठता है कि हम वैश्विक आवाज किसकी बने? हम वैश्विक आवाज ग्लोबल साउथ की बने
1: जी।
2: तो जलवायु परिवर्तन के संकट की असमानता और असंतुलन क्या है? जलवायु परिवर्तन संकट की असमानता ये है कि जो विकसित देश हैं उन्होंने अपने स्पेस से ज्यादा धरती का कार्बन स्पेस घेरा हुआ है, और आज अगर वो पर्यावरणीय विषयों में विकासशील देशों को कुछ निर्देशित करना चाहते हैं तो पहले उनको जो उनका हिस्टोरिकल रॉन्ग है वो देना पड़ेगा
1: जी।
2: और भारत ने इसलिए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ग्लोबल साउथ की आवाज को प्रखरता के साथ उठाया है, लेकिन हमने ग्लोबल साउथ की आवाज को केवल लड़ने के लिए नहीं उठाया। प्रधानमंत्री जी हमेशा हमें निर्देशित करते हैं कि भारत दुनिया की जलवायु परिवर्तन वार्ताओं में समाधान का मार्ग प्रशस्त करे, समस्या ना बने
1: जी।
2: और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम, चाहे कोलेशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अकाल, सूखे और बाढ़ के कारण होने वाले दुष्परिणामों के कारण दुनिया में कैपेसिटी बिल्डिंग और नॉलेज

0: शेयरिंग का विषय हो, चाहे इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक वैकल्पिक ऊर्जा जिसको नवकरणीय ऊर्जा कहते हैं उसका विषय हो, चाहे जो कार्बन एमिशन जिन इंडस्ट्रीज से निकलता है उनके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लीडरशिप फॉर इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन जैसा विषय हो, और चाहे बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जैसा विषय हो, तो भारत ने दुनिया में ग्लोबल साउथ की आवाज बन करके उनके हकों की बात करी है, क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम का हिस्सा बनकर उसका नेतृत्व करके समाधान, नॉलेज शेयरिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग का विषय अपनाया है, और मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम जैसे अभियान चलाकर ये समस्या हम सबकी समस्या है और अपनी अंतरचेतना को जगाकर अपना व्यक्तिगत योगदान क्या दे सकते हैं उसमें एक बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निभाने का कार्य किया है।
1: आपने अभी जो कुछ पॉइंट्स कहे हैं, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन की बात की, आपने नेट जीरो एमिशंस की बात की, इन पर एक एक करके हम चर्चा करेंगे, पर उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि प्रदूषण आज एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, खासकर कि दिल्ली जैसे महानगरों में, और ये जो है वो हमारे पर्यावरण पर बहुत इसका बुरा असर पड़ रहा है। सरकार अपनी तरफ से इसके लिए कई प्रयास कर रही है, जैसे भी हमने हाल ही में देखा कि यूनियन कैबिनेट ने दिल्ली NCR में पुराने ट्रकों और बसों को फेज आउट करने के लिए एक स्कीम जो है अप्रूव की है, साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स EVs को बहुत बड़े पैमाने पर प्रमोट किया जा रहा है, आप खुद भी EV में ट्रैवल करते हैं, तो इन प्रयासों को आप कैसे देखते हैं?
0: नहीं, ये सकारात्मक प्रयास है, जनसंख्या के बढ़ते हुए दबाव, भौगोलिक परिस्थिति के कारण पर्टिकुलर समय में दिल्ली में वातावरण में प्रदूषण फैलता है जी। अभी तो आपको अच्छा लगा होगा कि मई तो हमारा क्लीनेस्ट डे रहा है, अखबारों में भी आया है जी। लेकिन जहां पर मनुष्य आधारित गतिविधियां होती हैं वहां PM2.5 और PM10 ये दो जो तत्व है, मतलब PM2.5 में कार्बन, ओजोन, बाकी जो गैसेस निकलती हैं उद्योगों से, व्हीकल से, और PM10 में जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उसके कारण ये प्रदूषण फैलता है। और जब मौसम में ऐसी स्थिति आती है, विशेष रूप से दिल्ली में जब हवाएं चलनी बंद होती है और सर्दी होती है, और सर्दी भी हो हवा भी ना चले, तो वो जो वायु में जो तत्व है इसको एयर पार्टिकल कहते हैं, वो जम जाता है, और जमने के कारण वो एक वातावरण का जो AQI है उसको खराब करता है। तो इसका उपाय विभिन्न क्षेत्रों में है, व्हीकल पॉल्यूशन के स्तर पर क्लीन और फ्यूल की बात कही गई है, पुराने व्हीकल्स को समाप्त किया गया है, स्मार्ट ट्रैफिकिंग की ओर सरकार का ध्यान गया है, दिल्ली से कमर्शियल व्हीकल के लिए ईस्टर्न और वेस्टर्न पैरेलल एक हाईवे बना करके बड़ा ट्रैफिक वहां से निकालने की बात की गई है, मेट्रो का विस्तार करके सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने का काम किया गया है, इंडस्ट्री के मॉनिटरिंग के लिए हर इंडस्ट्री में OCM लगाने की बात की गई है, और उसके साथ ही साथ जो ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो अनधिकृत क्षेत्र में हैं उनको सख्ती से बंद करने की बात की गई है। उसके साथ ही दिल्ली के ग्रीनिंग के अभियान को चलाया गया है, डस्ट के लिए जो मैकेनाइज मशीन की जो सफाई है उसके लिए लगभग 100 से ज़्यादा मशीनें मंगाई गई हैं, फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम किया है, फिर आर्टिकल जो P10 है इसका बड़ा कारण डस्ट है, तो कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन के लिए साइट्स को बनाने का काम किया गया है। इन सारे विषयों को करते हुए आज शाम को ही कृषि मंत्रालय में हमारी बैठक है कि पराली के बारे में अभी से प्रबंधन के विषयों के लिए बाकी राज्यों से बात करने की बात की गई है। दिल्ली के आसपास जो कॉरपोरेशंस हैं, चाहे गाजियाबाद हो, नोएडा हो, फरीदाबाद हो, सोनीपत हो, मानेसर हो, गुड़गावा हो या फिर अलवर हो, वहाँ के जो हमारे कॉरपोरेशंस हैं उनको अपना एडवांस में प्लानिंग बनाने को कहा है, व्हीकल पॉल्यूशन, इंडस्ट्री पॉल्यूशन, डस्ट कंट्रोल, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, इन सब विषयों में एक अच्छे तरीके की नीति बनाने की बात की गई है, और पब्लिक के सहयोग के लिए भी इस कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है
1: जी। प्रधानमंत्री का एक संकल्प है भारत को विकसित भारत बनाना 2047 तक, इस विजन में सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक महत्वपूर्ण पिलर है, तो भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में आपकी मिनिस्ट्री यानी कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मिनिस्ट्री जो है, मैं कहूंगी कि सबसे अहम है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
0: सबसे पहले तो सतत विकास का अर्थ है कि विकास की धारा निरंतर चलती रहे, इसमें इम्बैलेंस ना है, कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी रहे। लेकिन हम धरती से जो संसाधन निकालते हैं उन संसाधनों का हमें वापस से पुनः उपयोग करना चाहिए, इसलिए हमारा मंत्रालय जो है सर्कुलर इकोनॉमी पे बल देता है। सर्कुलर इकोनॉमी में चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से निकलने वाला पदार्थ हो, चाहे यूज्ड ऑयल से निकलने वाला पदार्थ हो, चाहे फ्लाई ऐश जो होती हैं उनके साथ बेकार फ्लाई ऐश का विषय हो, और ऐसे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र जो कि हम पहले क्या करते थे, मेक टेक एंड वेस्ट, वो क्या करते थे। अब जो सर्कुलर इकोनॉमी है वो एक नए कंसेप्ट को लेकर चलती है, रिसाइकल रीयूज एंड रिप्रोड्यूस, है ना। तो उसके लिए रेगुलेशन के लिए हमारे मंत्रालय ने रेगुलेटरी मिनिस्ट्री के नाते सारे रूल्स के फ्रेमिंग करने का काम किया। दूसरा, जो एक लंबे समय से इंडस्ट्री में बात की जा रही थी कि भाई आप इंडस्ट्री चला रहे हैं, आपकी मॉनिटरिंग कौन करेगा, तो जैसे आपको अपना अकाउंट्स का ऑडिट देना पड़ता है, अब एनवायरमेंट ऑडिट की भी बात करी है और उनके ऑडिटर वो ऑडिट देंगे, ताकि हम जैसे आजकल रोज सुबह उठकर अपना इंसुलिन नाप लेते हैं ना कि हमारा आज कितना इंसुलिन है, हमारा आज कितना बीपी है, तो ये जो पर्यावरण का प्रदूषण भी एक किस्म का डायबिटीज ही है, इसके लिए अपना आपको एनवायरमेंट ऑडिट कराना चाहिए। और हमारे मंत्रालय ने रिफॉर्म्स के मानकों को काफी सरल करने का काम किया है, ताकि लोग नियम कठिन होने के कारण नियम को तोड़ते हैं। नियम जब सरल होते हैं और कॉन्शियसनेस होती है, उसके प्रति अवेयरनेस होती है, तो लोग उसको अपनाने का काम करते हैं। तो सर्कुलर इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी का उपयोग, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, देश के इको सेंसिटिव जोन का संवर्धन, देश में जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है उनका प्रोटेक्शन, एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाकर धरती को हरा भरा बनाने का विषय, उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन और कॉरपोरेट पार्टिसिपेशन को लेने के लिए ग्रीन क्रेडिट फंड जैसा प्रोग्राम, कैंपा के माध्यम से ग्रीन इंडिया मिशन पे कार्य, बायोडायवर्सिटी संरक्षण के लिए गांव गांव में बायोडायवर्सिटी रजिस्टर बनाने का कार्य, इन सब विषयों को लेकर के हम कार्य कर रहे हैं।
1: शुरू में आपने बात की इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में फ्रांस के साथ मिलकर इसकी शुरुआत की थी और ये आज दुनिया की सबसे बड़ी क्लाइमेट इनिशिएटिव्स में से एक है। तो वैश्विक जलवायु संरक्षण के प्रयास और भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को मजबूत करने में इस तरह के पहल के बारे में आप क्या कहेंगे?
0: ऐसा है कि दुनिया भर में ये कहा जाता है कि भाई आप दुनिया में अगर आपको कार्बन एमिशन कम करना है तो आपको फॉसिल फ्यूल जो है वो कम उपयोग करना पड़ेगा। भारत ने जो अपने एनडीसी टारगेट दिए थे उसमें हमने कहा था कि हमारी जो ऊर्जा की कैपेसिटी है उसका 50% हम रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त करेंगे, और रिन्यूएबल एनर्जी से हमने ये प्राप्त करने के लिए सोलर के क्षेत्र को हमने आगे बढ़ाने का काम किया। भारत ने सोलर के क्षेत्र में अपने 53% जो है ग्रोथ किया है। मैं जब G20 में केपटाउन में गया था तो UNFCCC के माध्यम से एक प्रेजेंटेशन किया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पेरिस एग्रीमेंट के 10 साल बाद दुनिया में कहां पर नया और अच्छा नवाचार हुआ, और उसमें भारत की इस बात की प्रशंसा की गई कि भारत ने दुनिया को सोलर क्षेत्र में अपनी उपलब्धि से बताया है कि जिसको रिन्यूएबल एनर्जी या नवीनकरणीय ऊर्जा कहते हैं उसमें भारत ने अच्छा कार्य किया है। और अभी तो जो इरना की जो रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी की, वो भी ये बताता है कि भारत दूसरे नंबर पे पहुंचा है। तो हम भी मानते हैं कि कार्बन एमिशन कम होना चाहिए, रिन्यूएबल के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, और इसलिए जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया है जिसका अब तो हेडक्वार्टर भी गुड़गांव है। एक समय होता था कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के हेडक्वार्टर हमें दुनिया के दूसरे देशों में दिखते थे। 12 साल में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उपलब्धि हुई है तो इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर भी अब भारत में बनने लगे हैं। और रिन्यूएबल के क्षेत्र में भारत ने विशेष रूप से सोलर के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 12 साल में एक अच्छे मुकाम को हासिल किया है।
1: अगले सवाल के लिए मैं आपसे कुछ आंकड़े शेयर करना चाहूंगी कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक देश में फॉरेस्ट और ट्री कवर यानी कि वन क्षेत्र और वृक्षों का दायरा बढ़कर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% हो गया है और पिछली रिपोर्ट की तुलना में इसमें लगभग 1425 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, और साथ ही फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक जो है उसमें भी 8 करोड़ 10 लाख टन से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। बहुत बड़े बड़े आंकड़े हैं, लेकिन अगर हम इसको समग्र रूप में देखें और अगर हम पर्यावरण की सुरक्षा और के रूप में देखें, तो इन उपलब्धियों के पीछे आप कौन सी प्रमुख नीतियों और पहल की बात मानते हैं, कि कौन सी पहल और उपलब्धियां रही हैं?
0: ऐसा है कि सतत विकास के साथ समग्र विकास भी होना चाहिए
1: जी।
0: और नेचर का ये नियम होता है कि जहाँ प्योरेस्ट नेचर होती है वहां पर जो अपेक्स प्रेडेटर है वो सर्वाइव करते हैं
1: जी।
0: नेचर जो है उसमें जैसे एक छोटा माइक्रो जो स्पीशीज है उससे लेकर और जो अपेक्स प्रेडेटर है, तो इसमें 7 बिग कैट्स हैं। तो भारत ने पिछले 12 साल में दिखाया है कि हमारे टाइगर की संख्या में वृद्धि हुई है, लेपर्ड की संख्या में वृद्धि हुई है, स्नो लेपर्ड का एस्टिमेशन हम लोगों ने कराया है, लॉयन जो है पूरे अफ्रीका में कम हो रहे हैं, भारत में उसकी संख्या में वृद्धि हुई है, और एक स्पीशीज जो हमारे यहाँ से एक्सटिंक्ट हो गई थी चीता, उसका भी हमने वापस से रीइंट्रोडक्शन किया है। तो हमने ये जो फॉरेस्ट कवर बढ़ा है ये इस बात को दर्शाता है कि हमने अपने यहाँ ये अभियान चला करके वो नेचर के बैलेंस को बनाने का काम किया है। यही कारण है कि आप ये देखोगे कि 2014 के पहले कांग्रेस के समय में ये इको सेंसिटिव जोन का नोटिफिकेशन ही नहीं करते थे, पड़ा रहता था मामला। अभी अगर 2014 से और 2026-12 साल में देखेंगे तो उनकी संख्या बढ़कर 391 हो गई है, प्रोटेक्शन एरियाज की संख्या बढ़कर 509 हो गई है, जो टाइगर रिजर्व्स हैं उनकी संख्या 47 थी वो बढ़कर के 58 हो गई है, जो एलिफेंट रिजर्व हैं उनकी संख्या बढ़कर के 33 हो गई है, जो हमारी एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं चाहे एलिफेंट हो, टाइगर हो, लॉयन हो, डॉल्फिन हो, पहली बार डॉल्फिन का एस्टिमेशन किया गया, मोर देन 6500 डॉल्फिन का हमने एस्टिमेशन किया है, उसके साथ ही साथ घड़ियाल हो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो, तो ये सारी एंडेंजर्ड स्पीशीज को बचाने का, इनके प्रोटेक्शन का, प्रिजर्वेशन का काम हम लोग कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ जो हमारी लोकल ट्राइब्स हैं उनके जो राइट्स हैं उसके लिए भी हम पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत पट्टों के वितरण का कार्य किया गया है। ये इस बात को पूरी तरीके से दर्शाने का काम करते हैं कि हम अपने इकोलॉजी के क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
1: आपने डॉल्फिन्स की बात की तो नमामि गंगे मिशन की बात करना जाहिर हो जाता है। तो जब नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी तो उसका मकसद था गंगा को स्वच्छ करना, लेकिन समय के साथ ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के एक बहुत बड़े और अहम मॉडल के रूप में उभरा है। हाल ही में अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भी इसका मेंशन किया था। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे मिशन के तहत देश की पहली डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस द्वारा एक गंगा डॉल्फिन के सफल बचाव किया गया, और उन्होंने इसे आशा की किरण बताया और कहा कि गंगा डॉल्फिन की रक्षा गंगा के पूरे इकोसिस्टम की रक्षा है। तो नदी की स्वच्छता से लेकर उसके बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम के संरक्षण तक की इस यात्रा के बारे में आप क्या कहेंगे, और नमामि गंगे मिशन की सफलता को आप किस तरह देखते हैं, कितनी इम्पोर्टेंट है ये?
0: देखिए, सरकार ने तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट भी फाइल किया है कि जो गंगा का जो अपर एरिया है जहाँ ओरिजिनल गंगा बनने की शुरुआत होती है उनकी ट्रिब्यूटरी पे अब कोई फर्दर और कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। हम ये मानते हैं कि गंगा की सेंटिटी, गंगा के जल की शुद्धता, ये तो हमारा लक्ष्य रहा ही है, और इसलिए नमामि गंगे मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, और प्रोजेक्ट डॉल्फिन को भी हम इसीलिए चला रहे हैं क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि धरती पे भी अपेक्स प्रेडेटर तभी रहता है जब बाकी जो माइक्रो से लेकर के और मैक्रो सब सारा जो सिस्टम नेचर का सुरक्षित होता है, सेम डॉल्फिन के बारे में भी है, और इसलिए हमने डॉल्फिन मित्र बनाने का भी काम किया। सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो एक संस्थान है ICFR, उसने अभी एक पिछले तीन चार साल से एक रिपोर्ट पे हम काम कर रहे हैं कि हमारे नदियों के किनारे जो पेड़ लगाने के विषय हैं उस पर उन्होंने एक पूरी DPR तैयार करी है, और हम नदियों के किनारे भी वृक्षों के संरक्षण को लेकर के काम कर रहे हैं। मैं कुछ दिनों पहले जो पीलीभीत से ऊपर एक जगह है कतरनिया घाट, वहाँ पे सबसे अच्छी डॉल्फिन साइटिंग भी है, और हमारे घड़ियाल के लिए भी मैं गया था। तो ये वाटर कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं, और जो अमृत सरोवर तो प्रधानमंत्री जी के हृदय के बड़ा नज़दीक है। अगर आप एटलस भी देखेंगे तो जो छोटे सरोवर हैं उनकी संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन बड़े सरोवर भी, जो बड़ी झीलें भी हैं उनके प्रति जागरूकता के लिए हमको रामसर साइट का दर्जा दिला रहे हैं, और 2014 में जहां देश में 24 रामसर साइट्स थी अब उनकी संख्या बढ़कर 100 हो गई।
1: मंत्री जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था एक पेड़ माँ के नाम अभियान, आपने भी बात की, और वो आज एक जन आंदोलन बन गया है, इसे भी हम सब जानते हैं। तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस अभियान के तहत 140 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं। बेशक ये संख्या बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हम इसे सिर्फ संख्या के नजरिए से ना देखें तो जन भागीदारी, एफॉरेस्ट

0: डिफॉरेस्टेशन और पर्यावरण जागरूकता के संदर्भ में इसके प्रभाव को आप कैसे देखते हैं?
1: मैं हमेशा अपने अधिकारियों को कहता हूं कि देखिए, जो हरित क्षेत्र का विस्तार है ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये पैशन का विषय है
0: जी।
1: और ये नेचर के साथ आपके कंपैशन का विषय है। अगर आपके साथ नेचर के साथ अगर आपका भाव होगा तो आप लगाओगे। पेड़ लगाना ये फोटो खिंचाने के लिए नहीं होना चाहिए, पेड़ लगाना ये प्रकृति को बचाने के लिए होना चाहिए। और एक पेड़ माँ के नाम अभियान जब प्रधानमंत्री जी ने शुरू भी किया था तो प्रधानमंत्री जी का एक संदेश था और जिसको हम लोगों तक पहुँचाते हैं कि हमारे पे दो लोगों का बहुत एहसान है, एक हमारी माँ का जिसने हमें जन्म दिया और दूसरा धरती माँ का जिसने हमारा भरण पोषण किया। और इसके प्रति कृतज्ञता अर्पित करने का यही तरीका है कि हम वहाँ पर एक पेड़ कम से कम माँ के नाम लगाएं। देखिए, आप बहुत बड़ी किसी भी बड़े ब्रांड की गाड़ी खरीद सकती हैं लेकिन वो गाड़ी ऑक्सीजन नहीं दे सकती। आप 10 मंजिल का मकान बना सकते हैं लेकिन वो चिड़िया के लिए एक दाना नहीं बना सकता, है ना, पक्षियों को छाव नहीं दे सकता। तो पेड़ तो नैसर्गिक रूप से प्रकृति का दिया हुआ उपहार होता है। और मैं कई बार ये भी कहता हूँ कि केवल पेड़ लगाना मतलब हॉर्टिकल्चर का विषय हो जाता है। जब हम वन की बात करते हैं, हम इकोलॉजी की बात करते हैं, तो पेड़ लगाना मतलब वुडलैंड तैयार करना। लेकिन जितना वुडलैंड का महत्व होता है उतना ही वेटलैंड का महत्व होता है पक्षियों के लिए
0: जी।
1: और उतना ही ग्रासलैंड का महत्व होता है। और ग्रासलैंड का जो हमारा एक बड़ा स्पीशीज था चीता, वो तो भारत से एक्सटिंक्ट हो गया था। तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने चीते के भी ट्रांसलोकेशन का कार्य किया है। तो एक पेड़ माँ का नाम अभियान प्रधानमंत्री जी का इस धरती की हरियाली से जुड़ने का अभियान है और धरती की हरियाली वुडलैंड, ग्रासलैंड और वेटलैंड तीनों बायोडायवर्सिटी के समान रूप से संरक्षण में होगी और हम तीनों के लिए कार्य कर रहे हैं।
0: भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और अक्सर ऐसा माना जाता है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण एक दूसरे के विपरीत हैं, दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। ऐसे में जब हरित विकास भारत की स्ट्रैटेजी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गया है, तब सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार आर्थिक प्रगति, औद्योगिक विकास और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बीच संतुलन कैसे सुनिश्चित कर रही है?
1: देखो, विकास तभी समृद्ध होता है जब नेचर समृद्ध होता है। मान लो आप पानी से बिजली बनाते हो
0: जी,
1: पानी नहीं होगा तो बिजली कहाँ से बनाओगे? आप कोयले से बिजली बनाते हो, कोयला ही नहीं होगा तो बिजली कहाँ से बनाओगे
0: जी?
1: दुनिया की कौन सी ऐसी दवाई है जिसका लास्ट सोर्स नेचर ना होता हो? आप फैक्ट्री में ब्रेड बना सकते हो लेकिन गेहूं तो पैदा नहीं कर सकते हो। कोई ऐसी फैक्ट्री थोड़ी होती है कि जिसमें गेहूं बनता है। गेहूं से आटा बनता है लेकिन वो तो नेचर से आता है। तो हमारा फूड, हमारा एनर्जी रिसोर्स, हमारी औषधि, ये तो नेचर से आती है। तो नेचर सुरक्षित और संरक्षित होगी तो विकास भी होगा
0: जी।
1: आप एक बात बताइए
0: जी,
1: कि जैसे आप सड़क बना रहे हैं या आप मकान बना रहे हैं, तो मकान में जो भी चीज लगा रहे हैं आप, दरवाजा है तो लकड़ी तो नेचर से आती है, ये कहाँ से आती है
0: जी।
1: तो विकास भी तभी होगा जब हम संसाधनों का बुद्धिमता तरीके से उपयोग करेंगे। सर्कुलर इकोनॉमी क्या है
0: जी?
1: कि कितना लंबे समय तक आप धरती को से खोद खोद कर केवल खनिज का उपयोग करोगे? कभी तो ऐसा समय आएगा कि इस खनिज का पुनर्उपयोग करने का काम आप करोगे। तो मेरा मानना है, जिसको आजकल कहते हैं नेचर बेस्ड सॉल्यूशन
0: जी,
1: नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, नेचर बेस्ड लाइफस्टाइल और नेचर के साथ विकास करने का काम हम लोग करेंगे। और इसलिए इकोलॉजी और इकोनॉमी ये एक दूसरे की विरोधी नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक है
0: जी। हम बात कर रहे थे शुरू में नेट जीरो एमिशंस की, तो जो भारत ने वर्ष 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य तक लाने की यानी कि नेट जीरो एमिशंस के लक्ष्य सहित कई महत्वाकांक्षी क्लाइमेट गोल्स को निर्धारित किया है खुद के लिए, सो इस दिशा में अब तक कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई हैं और आगे के क्या हमारे लक्ष्य हैं?
1: देखो, जो रिन्यूएबल एनर्जी में हमारी क्षमता है ये नेट जीरो के है
0: जी।
1: जो ग्रीन सिटीज की बात है ये नेट जीरो की है। जो मेट्रो का विस्तार है ये नेट जीरो के लिए है। जो ईवी का विस्तार है वो नेट जीरो के लिए है। जो ग्रीन हाइड्रोजन नए एनर्जी रिसोर्स को ढूंढ रहा है वो नेट जीरो के लिए है। जो बायोफ्यूल अलायंस कर रहे हैं वो नेट जीरो के लिए है। जो सोलार की कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं वो नेट जीरो के लिए है। नेट जीरो का अर्थ है कि हम एक ऐसे अर्थव्यवस्था के मुकाम पे पहुंचे जो कार्बन एमिशन और कार्बन उत्सर्जन कम हो, हमारी जीवन शैली और हमारे विकास का आधार पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली हो। और इसलिए जैसा आपने बताया कि 1477 किलोमीटर वन क्षेत्र बढ़ा है, तो वो नेट जीरो के लिए है।
0: पर्यावरण लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सरकार अपनी तरफ से पूरा काम कर रही है, लेकिन इसके साथ ही जो हम जब पर्यावरण की बात करते हैं, उसकी सुरक्षा की बात करते हैं, तो उसमें इंडस्ट्री का, कॉरपोरेट जगत का कितना इंपॉर्टेंट आप एक रोल देखते हैं?
1: अभी हमने ग्रीन क्रेडिट फंड में कॉरपोरेट को लगाया है, उनके जो ESG है वो भी है। कॉरपोरेट जगत में बात होती है, भारत में कॉरपोरेट जगत में एक उत्साह का भाव बना है कि वो ग्रीन ट्रांजिशन की ओर जाएं, अपनी इंडस्ट्री को ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाएं। पर मैं उम्मीद करता हूं कि विकास ऐसा होना चाहिए जो लंबे समय तक चले और धरती को बचाने के लिए हो। इसलिए कई बार ये कहते हैं ना कि ये ग्रह हमें अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में नहीं मिला है, अपने बच्चों से उधार में मिला है
0: जी।
1: तो ये हरा भरा ग्रह छोड़ के जाए
0: जी।
1: वरना एक दिन, जैसे आप ये कहते हैं ना कि मनुष्य ये सोचता है कि मंगल पे कभी जीवन था, तो ऐसा नहीं हो कि दूसरे ग्रह के लोग कहें कि पृथ्वी पे भी कभी जीवन था।
0: क्योंकि आपने बच्चों की बात की, तो आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है कि आम नागरिक और आज खासकर की जो देश के युवा हैं, जो देश का भविष्य है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इस अभियान में क्या योगदान दे सकते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है?
1: पहला तो एक पेड़ माँ के नाम अभियान से जुड़े, और दूसरा प्रधानमंत्री जी ने मिशन लाइफ में जो आयाम दिए हैं, सेव फूड, सेव वाटर, सेव एनर्जी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बैन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक, हेल्दी लाइफ स्टाइल, ऐसे विषयों पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, इसको अपनी जीवन पद्धति पे अपनाएं। तो मिशन लाइफ को अपना जीवन का आधार बनाएं, एक पेड़ माँ के नाम लगाएं और ग्रीन टेक्नोलॉजी के विकास में अपना योगदान करें।
0: मंत्री जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और पर्यावरण के क्षेत्र में पिछले 12 साल में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुई उपलब्धियों के बारे में और लक्ष्यों के बारे में बातचीत की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आकाशवाणी में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ विशेष साक्षात्कार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।

ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलो हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। आइए सुनते हैं आरती मुखर्जी की आवाज में मासूम फिल्म का गीत। शब्द रचना है गुलजार की और संगीत है आर डी बर्मन का।

आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आइए सुनते हैं राहत फतेह अली खान और प्रतिभा सिंह बघेल की आवाज में ये गीत, जिसे सुरों में ढाला है सुहेल सेन ने और फिल्म का नाम है बाजार।

मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ में पेश है ये गीत। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीत है शंकर जयकिशन का और फिल्म है ब्रह्मचारी।

आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। रात के 8:45 होने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। कल अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात होगी।

0: होगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चालू खरीफ सीजन की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं की भर्ती की घोषणा की। भारत और जापान ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी और सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के लिए नियम अपनाए। ईरान ने कहा अमेरिका के साथ युद्ध विराम समझौते के लिए इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। उत्तर भारत में कल बिजली कड़कने और तेज आंधी का अनुमान। और 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियां में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग ले रहे हैं। नई साझेदारियां बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनः निर्माण विषय पर आधारित इस सत्र में G7 देशों के नेता, सहयोगी देशों के नेता और विश्व बैंक तथा अफ्रीकी विकास बैंक के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। बैठक की शुरुआत फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी और अन्य भागीदार देशों के नेताओं का औपचारिक स्वागत करने के बाद हुई। शिखर सम्मेलन के बारे में अधिक जानकारी के लिए चलते हैं एवियां में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। अंकित, भारत के लिए सम्मेलन का रणनीतिक महत्व क्या है?
1: जी प्रियंका, देखिए भारत इस G7 शिखर सम्मेलन को केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ संवाद के मंच के रूप में ही नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से रखने के अवसर के रूप में भी देख रहा है। भारत की अपेक्षा है कि व्यापार, प्रौद्योगिकी, नवाचार और भरोसेमंद सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाया जाए। खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों के क्षेत्र में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है और इस दिशा में भारत ठोस साझेदारियों की उम्मीद कर रहा है। इसके साथ ही इस बात की भी उम्मीद है कि भारत विकासशील देशों से जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाएगा। इनमें सतत विकास, जलवायु, वित्त, ऊर्जा सुरक्षा और समावेशी आर्थिक विकास जैसे विषय शामिल है। भारत लगातार ये कह रहा है कि वैश्विक नीतियों और निर्णयों में विकासशील देशों की चिंताओं को पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए। जी प्रियंका,
0: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का राजनयिक कार्यक्रम भी व्यस्त है। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने ये बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

0: डेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। एक रिपोर्ट।
2: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट संदेश दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में किसानों के हितों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किया गया कि फसल के मौसम के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रतिकूल मौसम स्थिति से कृषि और किसानों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम पहले से ही उठाए जाएं। श्री चौहान ने निर्देश दिए कि

0: जिन जिलों में कम वर्षा या असमान वर्षा की संभावना है वहाँ पहले से ही पूरी तैयारी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे जिलों की स्पष्ट पहचान की जानी चाहिए और राज्य सरकारों के समन्वय से फसलवार आकस्मिक योजनाएं तैयार की जानी चाहिए, जिससे मौसम संबंधी किसी भी चुनौती की स्थिति में किसानों को तत्काल विकल्प, सलाह और सहायता प्रदान की जा सके। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि जल संरक्षण, नमी प्रबंधन, अंतर फसल खेती और वैकल्पिक फसल पैटर्न पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच श्री चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के करसियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने आज स्वास्थ्य सेवा, पेयजल, तकनीक, डिजिटल कनेक्टिविटी और सुशासन से जुड़े कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी। इसके अंतर्गत नागपुर में हाई एनर्जी मेडिकल साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। मध्य भारत की ये पहली परियोजना है जिससे अलग अलग बीमारियों की जाँच और उपचार बेहतर होने की उम्मीद है। मंत्रिमंडल ने ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिए महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल नीति तथा नवाचार और नई प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र अनमैन्ड सिस्टम पॉलिसी को मंजूरी दी। महाराष्ट्र में जून के पहले चरण में सामान्य से 26% ही बारिश हुई है। राज्य सरकार ने किसानों को सलाह दी है कि वे जल्दबाजी में बुआई न करें। सरकार ने किसानों से आग्रह किया है कि वे बुआई का काम शुरू करने से पहले बारिश की स्थिति पर ध्यान दें। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला अधिकारियों के साथ पेयजल संवाद का आयोजन किया। इसमें वरिष्ठ अधिकारी, जिला अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के जल जीवन मिशन के डायरेक्टर शामिल हुए। इसका उद्देश्य जल के जीवन मिशन 2.0 के लागू होने की रफ्तार बढ़ाने और बेहतरीन तौर तरीकों पर चर्चा करना था। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करके जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक तथा सांख्यिकी कार्य है, जिसे पूरी तरह से ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि संघ लोक सेवा आयोग UPSC प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने कहा है कि ये दावा निराधार है। इकाई ने कहा है कि परीक्षा के प्रश्न पत्र देश भर से चयनित संबंधित विषयों के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
2: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियाद

0: सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
1: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण न केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इल्लीगल ट्रेड्स होता था वो भी बंद हुआ है।
0: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना कर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया जाना देश के लिए अत्यंत गौरव की बात है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ये देश में प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्यों को मान्यता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और जापान ने जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्रवाई, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी तथा सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के कार्यान्वयन नियमों को अपनाया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार JCM के लिए पिछले वर्ष दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित सहयोग ज्ञापन के बाद इस वर्ष 8 जून को कार्यान्वयन नियमों को अपनाया गया। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराखची ने आज कहा कि दक्षिणी लेबनान पर इसराइल का निरंतर कब्जा अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उल्लंघन है। अमेरिका ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि लेबनान अंतिम समझौते का हिस्सा है या नहीं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश करता है तो भयानक तबाही मच जाएगी। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन से इतर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री ट्रंप ने कहा कि प्रस्तावित समझौते में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। मौसम विभाग ने कल उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में उत्तर पूर्वी भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा हो सकती है। अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान है। भारतीय तलवारबाजी संघ ने 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। भारत पहली बार इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। 19 से 24 जून तक दिल्ली में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में 30 से अधिक देशों के शामिल होने की उम्मीद है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियॉन में G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग लिया। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार की घोषणा की। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi participates in G7 summit in Evian, France, also to hold bilateral meetings tonight with heads of Canada, UK and UAE to meet US President tomorrow. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan holds high-level meeting to review preparations for this Kharif season. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari announces Eastern Frontier Rifles will soon be revived and over 1,000 Gorkha youths to be recruited. India and Japan adopt rule of implementation for joint crediting mechanism under Paris Agreement to boost cooperation on greenhouse gas emission reduction and sustainable development initiatives. Iran says deal to end war with US would also require Israel to withdraw from Lebanon. IMD forecasts thunderstorms accompanied by lightning and gusty

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ, नाम बताएं,
1: खुशबू कटिया, देवरी
0: कहाँ से बोल रही हैं?
1: कला से पढ़ते
0: करती क्या है, अपने बारे में बताइए आप।
1: हैं।
0: अच्छा जी, किस क्लास में पढ़ रही हैं आप?
1: हमको गाना सुना है, एक
0: हाँ, फिल्म का नाम बताइए और गाने के बोल।
1: बाजीगर फिल्म का गाना, मेरा दिल था अकेला।
0: सुनवाते हैं फिल्म बाजीगर से ये गीत।

0: हेलो,
1: नमस्ते जी। मुरादाबाद
0: नमस्ते। नाम बताएं,
1: से रणबीर सिंह सर।
0: करते क्या हैं सर? आप अपने बारे में बताइए।
1: जी सर, हम कॉपी किताबों काम करते हैं सर।
0: हमारे आकाशवाणी के कार्यक्रमों से कितने वर्षों से जुड़े हैं आप?
1: जी हम तो कई वर्षों से जुड़े हैं, मगर हम आपसे आपको 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं सर।
0: हम आपकी शुभकामनाएं स्वीकार करते हैं और हम भी बधाइयां देते हैं कि आप हमारे कार्यक्रमों से काफी वर्षों से जुड़े हैं। कौन सा गीत सुनना चाह रहे हैं, किस फिल्म से, बताइए।
1: जी सिर्फ तुमका गाना है, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम।
0: जसपिंदर नरूला साबरी बंधुओं ने गाया, सुनवाते हैं आपकी पसंद
1: जी
0: पर
1: कुछ
0: ये
1: कहना चाहते
0: गीत।
1: हैं सर, एक मिनट सर, कुछ कहना चाहते हैं।
0: हाँ बोलिए
1: जिंदगी में कुछ दोस्त खास बन गए,
0: जी।
1: मिले तो मुलाकात, बिछड़े तो याद बन गए, कुछ
0: बहुत बढ़िया।
1: दोस्त धीरे धीरे फिसल गए,
0: अच्छा जी,
1: पर जो दिल से न गए वो जबलपुर के दोस्त सब आप बन गए।
0: चलिए सुनवाते हैं आपकी पसंद पर ये गीत।

0: हाँ सर, परसों फोन करें किसी ने।
1: हाँ, कौन साहब बोल रहे हैं?
0: सर रविंद्र जी बोल रहे हैं।
1: हाँ बोल रहा हूँ।
0: सर राजेश बोल रहा हूँ सर, गद्रे।
1: कहाँ से बोल रहे हैं राजेश जी?
0: सर फिलहाल मैं बरियागा से बोल रहा हूँ, आज बरियागा गया हूँ सर, बरियागा से बात कर रहा हूँ आपसे।
1: अच्छा जी, कौन कौन से कार्यक्रमों को खूब सुन रहे हैं आप?
0: सर आपके यहाँ सभी कार्यक्रम लाजवाब पर सर, बहुत अच्छे बेहतरीन कार्यक्रम होते हैं सर, कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम होते हैं सर,
1: जी
0: पुराने गीत सर,
1: जी
0: बहुत
1: जी
0: अच्छे कार्यक्रम अच्छे होते हैं। और
1: कौन सा
0: सोनी
1: गीत,
0: कार्यक्रम
1: कौन सा गीत इस समय सुनना चाह रहे बताएं आप।
0: सर, फिल्म का नाम है सर बदलते रिश्ते,
1: हाँ
0: मोहम्मद रफ़ी किशोर और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में है, टाइटल सॉन्ग है, मैं गाने
1: सुनवाते
0: के पास
1: हैं
0: बदल
1: आपकी
0: जाते हैं।
1: पसंद पर ये शानदार गीत।

0: हेलो
1: हाँ
0: हेलो
1: नाम
0: फरमाई, आकाशवाणी जबलपुर।
1: जबलपुर से चल रहे इस कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। नाम बताएं आप।
0: सर नमस्कार, मैं आपका नियमित रेडियो श्रोता अस्पताल लोक केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गौर बोल रहा हूँ। सर
1: गौहर साहब, क्या चल रहा है इन दिनों आपका?
0: बस सर बढ़िया है, और आप लोगों के द्वारा जो कार्यक्रम पेश किए जा रहे हैं सर,
1: जी
0: उनका भरपूर आनंद ले रहे हैं सर, और स्वस्थ मनोरंजन प्रदान कर रहे हैं सर हम लोग।
1: गौर साहब, कौन सा नंबर मिला है इस समय आपने?
0: सर ये 93 है सर लास्ट में।
1: 240-2093 हमारा एक नंबर और है, 266-445 है ना,
0: जी
1: आगे
0: सर जी सर
1: 0761 कोड लगता है। कौन
0: जी
1: सा
0: सर
1: गीत सुनना चाह रहे बताएं आप।
0: सर सर फिल्म का नाम है आए दिन बहार, सुनो सजना पपी ने कहा पुकार गई।

0: उद्घोषक और श्रोता एक सिक्के के दो पहलू होते हैं
1: जी सर। जी हाँ हाँ
0: तो हमारा अस्तित्व आप लोगों के बगैर अधूरा है
1: जी,
0: और एक उद्घोषक का जो है वो श्रोता के बिना अधूरा।

0: कार्यक्रम भिलाई में करवाना करवा
1: बहुत हमारी अग्रिम
0: मतलब
1: शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं हैं आपको।
0: तो सर मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से उस कार्यक्रम में आपको आमंत्रित करना
1: हम
0: चाहूंगा सर।
1: सभी आने की कोशिश करेंगे। सुनवाते हैं आपकी पसंद पर ये गीत।

आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम। आज का यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया रविंद्र दुबे ने। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए पंडित शिव कुमार शर्मा का संतूर पर बजाया राग किरवानी। तबले पर संगति की है शफात अहमद खान ने।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित शिव कुमार शर्मा का संतूर पर बजाया राग किरवानी। तबले पर संगति की थी शफात अहमद खाने। मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन।
1: टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री।
0: मन भावन कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को आपकी अपनी रेडियो दोस्त सावनी राजू का नमस्कार। हम आपके हैं कौन, ये नाम है उस फिल्म का जो है आज के इस कार्यक्रम की पहली फिल्म। लता मंगेशकर के साथ एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज, रविंद्र रावल के शब्द, राम लक्ष्मण का संगीत। इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी श्रोताओं ने। नर्मदा कॉलोनी मंडला से प्रोफेसर सिया शरण ज्योतिषी, पुष्पा ज्योतिषी, गोल्डी लकी रोली, श्वेता और परु। घंटागढ़ चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। इसी गीत के लिए हमें चिट्ठी लिखी है जिला नीमच से गोविंद पाटीदार, ममता पाटीदार, पूजा पाटीदार, मधुसूदन यशस्वी पाटीदार और हंसवी पाटीदार ने। आप सभी की पसंद पर कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म है हम आपके हैं कौन।

लीजिए, अब आपको सुनवाते हैं फिल्म जख्म का गीत। इस गीत में आवाज है अलका याग्निक की। गीत को लिखा है नीलेश मिश्रा ने और संगीतबद्ध किया है MM करीम ने। सुनना चाहा आप सभी श्रोताओं ने। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जयतेक विरक और मीका विरक। आजाद नगर बक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां। बरगी नगर जबलपुर से रविंद्र गत्रे, दिगंबर गत्रे, सुभाष गत्रे, राजेश गत्रे, शिवम शुभांग और सृष्टि गत्रे। और बेमेतरा से सुरेश कुमार सारथी, पूर्णिमा, हेमलता सारथी, कमलकांत सारथी, वीरेंद्र और व्रजकांत सारथी। आप सभी के अनुरोध पर फिल्म जख्म का ये गीत आप तक। तेरा चुपके से आना खटखटाना दिल का दरवाज़ा, तेरा चुपके से आना खटखटाना दिल का दरवाज़ा, मेरा आवाज़ देना और तेरा खामोश हो जाना।

फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मनभावन आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से आपकी अपनी रेडियो दोस्त सावनी राजू के साथ। श्रोताओं, आप चाहें तो समय मिला सकते हैं, इस वक्त रात के ठीक 10:45 हुए हैं। अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म एतबार से, आशा भोसले के साथ भूपेंद्र की आवाज, पप्पी लहरी का संगीत। इस फिल्म के मुख्य सितारे थे राज बब्बर, डिंपल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय। एतबार, जैसा कि नाम है, एतबार विश्वास भरोसे पर ही टिकी थी इस फिल्म की कहानी। मिलो एक बार को तुम की शिद्दत से एक बात करनी है, मिलो एक बार को तुम की तुमसे शिद्दत से बात करनी है, तुझसे गले लगकर तेरी ही शिकायतें हजार करनी है।

जाल फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना साहिर लुधियानवी के शब्द थे। आवाज़ और संगीत हेमंत कुमार की थी। इस गीत को पसंद किया था आप सभी श्रोताओं ने। कवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति शिवानी और मीनू राजेश श्रीमाली, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा, नेपाल पहले सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर और ऋषिका के साथ रॉबिन ने भी इसी गीत को सुनने के लिए चिट्ठी लिखी थी। जय बजरंग रेडियो श्रोता संघ बस स्टैंड बंडा बेलई से लक्ष्मण रैकवार, विनीता रैकवार, वैशाली वैष्णवी, दीपेश लल्लू हल्ले और ऋषि रैकवार ने भी इसी गीत को सुनना चाहा था। फरमाइशी फिल्मी गीतों का यह कार्यक्रम मन भावन आप सुन रहे थे आपकी अपनी रेडियो दोस्त सावनी राजू के साथ आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से। मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। रात के 11 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। पहले 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे। पहले हिंदी समाचार, आइए दिल्ली चलें।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के एक उच्च स्तरीय कार्य सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा मानवता पहले के सिद्धांत पर चलता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम जैसे भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की सोच वसुधा कुटुंबकम यानी विश्व एक परिवार है पर आधारित है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भारत हमेशा जरूरतमंद देशों की सहायता के लिए आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए संवाद, कूटनीति तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान पर जोर दिया। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का व्यस्त राजनयिक कार्यक्रम भी है। वो कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी, जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने ये बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले

0: जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। श्री चौहान ने कहा कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र पुलिस की कानून प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाने और उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए 733 करोड़ रुपए से अधिक की आधुनिकीकरण योजना को मंजूरी दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये परियोजना संयुक्त वित्त पोषण मॉडल के माध्यम से लागू की जाएगी। इसमें केंद्र सरकार कुल लागत का 60% और राज्य सरकार 40% वहन करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट परीक्षा से पहले अभिभावकों और उम्मीदवारों को जालसाजों से सावधान रहने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एनटीए ने कहा कि टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जालसाज पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र साझा करने का दावा करके रुपयों की मांग कर रहे हैं। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर शुक्रवार को लुसेन शहर के पास स्थित बर्गेनस्टॉक रिजॉर्ट में किए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि वो दोनों देशों के साथ इस संभावित समझौते पर हस्ताक्षर के संबंध में लगातार संपर्क में है, जिसकी घोषणा अमरीकी और ईरानी अधिकारियों ने सप्ताहांत में की थी। मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi today addressed the outreach session on forging new partnerships and rebuilding international solidarity at the G7 summit in Avignon, France. Ministry of External Affairs informed that during the session, the Prime Minister underscored the importance of trust in building international partnerships, especially in an increasingly interconnected world. During the meeting, the Prime Minister also highlighted that India has always followed a humanity-first approach. He said this is reflected in India-led initiatives such as the International Solar Alliance, the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, the Global Biofuel Alliance, Mission Life, and the Ek Ped Mark in Arm campaign. He further said that India's vision of international partnership is rooted in the timeless philosophy of Vasudeva Kutumbakam, the world is one family. The Prime Minister further added that this inclusive approach has also led India to be the first responder when natural disasters have struck various parts of the world, be it a cyclone in Sri Lanka, earthquake in Afghanistan, floods in Mozambique, or hurricane in Jamaica. Speaking about India's inclusive and sustainable growth, Mr. Modi elaborated that its mantra of Sarvajan Hitai, Sarvajan Sukhai has led to appreciable results in fostering financial inclusion, health security, digital identity, technology-led empowerment of people and women-led development. The Prime Minister also noted that international partnerships should move beyond the donor-recipient paradigm to one of solidarity and equal ownership. He also stated that lack of respect for international law was the biggest hurdle to building international solidarity and needed to be addressed as a priority. He emphasized that for international partnerships, needed to prioritize dialogue and diplomacy for ensuring peace and stability. Meanwhile, Prime Minister Narendra Modi held bilateral meetings with Canadian Prime Minister Mark Carney, United Kingdom Prime Minister Keir Starmer,

प्राइमरी स्टूडियो, प्राइमरी स्टूडियो की घड़ी में अभी 5:20:28:29:30 हो रहे हैं। कंसोल की घड़ी में 5:20:1,2,3,4 हो रहे हैं। ऑन एयर मिल रहा है। ओके okay।

0: वर्क स्टेशन नंबर 1। वर्क स्टेशन नंबर 2।
1: और भारतीयता का यही जज्बा हमारी सबसे बड़ी ताकत।